ये वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रि जगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़िया नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे।
गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं।

0: इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषादुतारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूर्गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधिवद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बर वधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं,
1: दिन जो होते
0: में
1: हैं।
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है।
0: वो उसी समय से है, पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद त्वम्। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है, ना उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
3: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल। और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
4: जी।
5: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
4: बिल्कुल।
5: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है एफर्ट्स वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
4: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण, जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी, जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
4: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
3: जी,
4: आपको बदलना पड़ेगा
3: जी।
4: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है।

0: तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो, इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं

0: कि सिर्फ दो दिन और। बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगी यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा हाँ. में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
0: उन्हें
1: नरिश. और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think हम मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में stress कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: Stress के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी थी. Stress, this is more the solution. ये solution है, because a lot of people go to work very unwillingly. I have to go to work.
0: Work is a stress. इतनी बार ये कहा जाता है कि my work area is a stress area. The most stressing part of my life is my work.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलती है. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल, यू नो, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. They can be part of your flow.
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को nourish करें. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके
1: आई फील ब्यूटीफुल.
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग.
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग. और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने. कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि. लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ. ये जो बार बार अपनी अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं.
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो. तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस. साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर. तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड. कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन. अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे. That's good for me, and I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come, and listen inside.
0: Okay.
1: Simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल, नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल.
0: हाँ, और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट.
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं. बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा. इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे. लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति. लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं. तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है. लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है.
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या. गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए. मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता. और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया. तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है. बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवर सेल्व्स. तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है. क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता, और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता. सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय
2: इरिटेशन,
1: या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
2: वॉचिंग इट एंड सी इट।
1: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी, सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस चाहिएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो, एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
2: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर देंगे, यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो, सो इट इज जस्ट बिकम वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग के, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज, यू नो, ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा. एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
1: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए.
1: Absolutely.
2: है ना, लेकिन मेरे अगर, मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
1: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
1: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना, यानी कि संडे मैं रहती तो हूँ, आज संडे का दिन है, और मंडे टू संडे हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। आज जो कि संडे का दिन है भाई, थोड़ा रिलैक्स रहता है आज के दिन, क्योंकि जब वीकेंड आता है ना तो कहीं ना कहीं ना हमारा मन भी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, हमें लगता है अरे कोई काम नहीं करने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एनर्जेटिक होते हैं आज के दिन, क्योंकि घर के सारे काम करने होते हैं, किसी को कुछ कपड़े धोने हैं, तो कभी कोई कहता है कि आज कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना लेते हैं जिसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। आज के आपके क्या प्लान्स हैं, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए इसी के साथ मैं आपके साथ आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात एक करने वाली हूँ, बहुत ही खास टॉपिक के साथ आपके पास आ गई हूँ। अपना सेगमेंट लेकर के दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, ये हमारा सेगमेंट है जिसे मैं लेकर के आती हूँ, और उसमें आपके साथ हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें करती हूँ। चलिए इस पर बातें होंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ हफ्ते के सातों दिन। और आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आई हूँ। सेगमेंट हमारा चल रहा है दिल धड़कने दो, जिसमें एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करी, और वो है देखिए बच्चे। और बच्चों में जब डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो जाते हैं ना, मतलब ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है आज के टाइम में ना, ये डिप्रेशन बोलना बहुत ही आसान लगता है, डिप्रेशन के शिकार हो गए, एंजाइटी हो रही है, आजकल हर कोई यूं ही कह देता है। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है, जिन्हें सच में जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं या इस अवसाद से जुड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं, उनके बारे में लोग बात नहीं करते या वो खुद बात नहीं कर पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों में अगर बात करें, छोटे बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। बच्चे अक्सर पेरेंट्स से कहने में थोड़ा सा झिझकते ज़रूर हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझनी है। आज उन्हीं के लिए ये खास टॉपिक लेकर के आई हूँ, किस तरह से आज के समय में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और आमतौर पर आपने देखा ही होगा या सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों को डिप्रेशन हुआ करता था, कि हमारे जो बड़े होते थे वो कहते थे कि हाँ भाई इतना स्ट्रेस है, उम्र के इस एक पड़ाव के बाद जो है वो डिप्रेशन हुआ। लेकिन आजकल के इस टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जो एज है ना, वो अब ऐसी रही नहीं है, मतलब कोई भी एज ग्रुप का हो उनको डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर आपके घर का बच्चा भी अगर डिप्रेशन का शिकार जो है ये हो जाए, तो क्या करना सही रहेगा, किस तरह से डील करना है, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनसे पूछते ही नहीं हैं। हमें यह पता ही नहीं है कि अगर बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो इस स्थिति में बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए, और सिर्फ एक पेरेंट ही है जो बच्चे को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, इसका एक ही कारण है। देखिए आज के टाइम में जो माता पिता है वो दोनों वर्किंग हो, और जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे में बच्चों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। कई बार इस वजह से बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस में बिल्कुल रहते हैं, घेर लेते हैं खुद को, अपने आप को जो है स्ट्रेस घेर लेता है उनको। और आपको मैं बता दूं कि डिप्रेशन होने पर आपका बच्चा बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुस्त और गुमसुम हो जाता है। ऐसे कोई भी मतलब काम में उनको जो है वो मज़ा नहीं आएगा, कोई भी ऐसा काम करें आप देखेंगे बाकी बच्चे जो खेल रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा गुमसुम बैठा हुआ है, आपका बच्चा यूं ही बैठा है, वो लोगों से बात करने में कतराने लगा है। जब बच्चा चुपचाप या अकेला रहने लग जाए तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये उनकी आदत है, या बच्चा घुलना मिलना नहीं चाहता, तो ऐसे में पेरेंट्स जो है बच्चों को ना डांट देते हैं, डांट डपड़ के वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, जाओ जाके बात करो, जाओ जाके दोस्त बनाओ, जाओ जाके ये काम करो या वो काम करो। लेकिन उस टाइम बच्चे की क्या मेंटल कंडीशन है, इस बारे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स बात करना जो है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अब बात आती है कि किस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि हफ्ते के सातों दिन मंडे टू संडे आपके साथ 2 घंटे का सफर रहता है, जो रहता है बहुत ही कमाल का। एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आपके पास आ गई हूँ। टॉपिक जो है वो है बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत है, जिससे कैसे डील करना चाहिए वो आपको बताऊंगी। हमारा सेगमेंट अभी चल रहा है, सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। जी हाँ, देखिए बच्चे जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ लक्षण जरूर नजर आते हैं। इन्हें माता पिता को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में टाइम पर पेरेंट्स को बच्चे के समय देना उनको बिल्कुल चाहिए। बच्चों को टाइम टाइम पर देखिए उनको देखना चाहिए, उनको बात करनी उनसे चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है पेरेंट्स, चाहे आप वर्किंग है, देखिए वर्कहॉलिक जब पेरेंट्स होते हैं नहीं दे पाते टाइम, लेकिन ऑफिस के बीच में आपने 2 फोन कर लिए, कॉल कर ली, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या जब आप घर आते हैं तो बच्चे से आप पूछने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन कैसा रहा, उनसे बात करते रहिए। जब आपको लग रहा है कि अर्ली स्टेज जो सिम्टम्स हैं वो नजर आ रहे हैं, तो क्यों जो अवसाद है उसे बढ़ने दें, क्यों डिप्रेशन बढ़ने दें, क्यों एंजाइटी उनको हो रही है, क्यों आप उनके पास नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब जो है आपको खुद से लेने और आज ही लेने। आज का ये जो मेरा आज प्रोग्राम है, ये जो मेरा सेगमेंट है दिल धड़कने दो, इसमें यही कुछ खास बातें होने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, जब बच्चों में डिप्रेशन का कारण जो है इसमें होता है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हो सकता है किसी पेरेंट को या उनके भी जो अभी पहले के जो लोग हैं, यानी कि जो हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री देखे जाओ वहाँ किसी को रही हो, और डिलीवरी के टाइम हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहा हो। और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, अगर घर में आपके लड़ाई झगड़े का माहौल है, मतलब हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों से बैठ कर बात करनी ज़रूरी है। मन किसी बात से अगर उनका डरा हुआ है, हो सकता है कि स्कूल में कोई ऐसी बात हुई हो, ट्यूशन में ऐसी कोई बात हुई हो, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ ये बच्चों के लिए, मतलब आपके बच्चे अगर कॉलेज में हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी बात हुई हो, किसी चीज़ से वो डर रहे हैं, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के अगर वो शिकार हुए हैं, तो देखिए ये सारी बातें जो हैं बच्चों में जो है वो डर का एक माहौल पैदा करती है, डर बैठा देती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बात नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चा बात नहीं कर पाएगा, बच्चा अंदर अंदर घुटता रहेगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। चलिए बात करेंगे कि अब ये जो लक्षण है वो किस तरह से आते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, आपको मैं बता रही हूं एक बहुत ही खास जानकारी आप तक लेकर के आई हूं। जानकारी आपको दे रही हूं आज मैं बहुत ही जरूर, वो है बच्चों के

डिप्रेशन के सेगमेंट दिल धड़कने दो में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के डिप्रेशन की। और यहाँ पर आपको बता दूं, जब बच्चा आपका बहुत ज्यादा उदास रहने लगे, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई चुपचाप है, शांत है, उदास बैठा हुआ है, किसी से मतलब कोई भी बात है किसी से भी या कोई किसी बात से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर एक्साइटेड जो है वो नहीं हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बच रही है, तो आपका बच्चा जरूर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। या अगर आपके बच्चे ने खुद से बात करना शुरू कर दिया है तो आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये अब ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन होने पर बच्चे अकेले बैठ के खुद से सवाल जवाब करने लगते हैं, उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और ये डिप्रेशन के लक्षणों में आता है। इसी के साथ आता है चिड़चिड़ापन, यानी कि डिप्रेशन होने पर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा करने लगेगा, और अगर अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी छूट चुकी है और आपका बच्चा जो है अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और ऐसे में देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से गाड़ी को पकड़ा नहीं जा सकता है, यानी कि डिप्रेशन से निजात नहीं पाया जा सकता, पाया जा सकता है लेकिन तभी जब पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा हो। ये नहीं कि आप उन्हें डांट डपट रहे हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, आप उन पे और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पे और गुस्सा कर रहे हैं। असल में ये बात बहुत सच है कि गुस्सा आ जाता है कई बार, क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं। तो होता ये है कि जब हम किसी चीज़ से परेशान हैं, आप भी बाहर से आए हैं, आप किसी चीज़ पे परेशान हैं, आपका बच्चा जो है वो बैठा हुआ है डिप्रेशन में है, और आपने उन्हें डांट दिया और ज़्यादा, तो देखिए कहीं ना कहीं कहानी उल्टी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाएगा उनके साथ। आप सोचेंगे कि डांट से उनको आप ठीक करा सकते हैं, लेकिन डांट से वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को काबू ज़रूर करना है और बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चे जब डिप्रेशन का शिकार होने लगता है तो उनकी रोज़ाना की आदतें बदल जाती हैं, खाना ठीक से नहीं खा पाता है और कई बार खाना जो है वो स्किप कर देता है या फिर बहुत कम खाना खाएगा। अगर बच्चे की आपकी डाइट है कि वो चार रोटी खाते हैं, वो दो रोटी कर देंगे, यानी कि 50% आपका जो है खाना बच्चा खा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बच्चा मन ही मन बहुत विचलित है, वो ठीक नहीं सोच समझ पा रहा है। अब ऐसे में पेरेंट्स को ये करना है कि बच्चे के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी है, बच्चे से खुलकर बात करनी है और उनके साथ कोई गेम खेलनी है, और साथ ही बच्चों को बाहर घुमाने लेकर के जाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब प्लेस चेंज होती है, जब लोकेशन चेंज होती है, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बच्चा अपने आप ही थोड़ा अच्छा महसूस करता है। और जब उसके आसपास अच्छे देखिए हंसमुख लोग हों या ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पर उन्हें अच्छा लग रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे उस साथ से बाहर निकलने लगता है। तो चलिए, अब और भी होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन, और संडे वाले दिन हम बातें तो करते ही हैं। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ, और अभी सेगमेंट चल रहा है हमारा स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में आपके लिए भाई योगा के बारे में आपसे बातें करती हूँ, मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि योग, प्राणायाम, ध्यान, या फिर इन सब में जो है वो डिफरेंस क्या है, ये क्या है। बड़ी बहुत बड़ी बड़ी टर्म सुनाई देती हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है। आज आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताती हूँ मैं योग से जुड़ी। जी हाँ, सबसे पहले आसन। देखिए, आसन जो है वो एक हमारी शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को मजबूत, फ्लेक्सिबल और साथ ही बैलेंस बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। ये हो गए हमारे आसन। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए, आसन होता है जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे उसी तरह से आसन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपने सुना ही होगा कि भुजंग आसन हो गया, ताड़ा आसन हो गया, ये सारे आसन हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर प्राणायाम की। प्राणायाम में ये होता है कि देखिए, श्वास को, यानी कि आपकी सांसों को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, यानी कि श्वासों को नियंत्रण करने का तरीका जो है, ये बॉडी में ऊर्जा को जो है वो बनाता है, और साथ ही मन को शांत करने में मदद करता है। तो प्राणायाम जो है ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सांसें जो है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जो हम करते हैं ये है प्राणायाम। अब बात आती है ध्यान की। मन को एकाग्र करने और साथ ही विचारों को शांत करने का एक प्रक्रिया जो कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है, और यही है ध्यान। और ध्यान जो है, जब हम फोकस की बात करते हैं कि आपका ध्यान, कभी होता है ना कि जब हम कुछ भी, हम आसन कर रहे हैं या हम प्राणायाम कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है, हम एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हमारा कभी ध्यान इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी कोई बात, कभी कोई ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो बस इन्हीं को जब आप ध्यान एक जगह लगाएंगे तो वहां पर आप योग के ध्यान को अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ आता है यम और नियम, नैतिक सिद्धांत जो कि योग अभ्यास के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, यही है यम नियम। चलिए, इसी के साथ और भी कुछ बातें करूंगी, कुछ और भी विशेष यहाँ पर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, योग से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम सुनते हैं लेकिन इनके बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो यही बात आपको बता रही हूँ, लेकिन फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती है बातें। फिलहाल आज है संडे का दिन, संडे वाले दिन आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे, देखिए जो हम टर्म्स की हम बात करें, कुछ ऐसे कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो हम सुनते तो हैं लेकिन हम ढंग से उन्हें समझ नहीं पाते कि इसका मतलब है क्या। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। देखिए, योग तनाव चिंता डिप्रेशन यानी कि अवसाद, इसको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है मानसिक स्वास्थ्य। इसी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो योग मांसपेशियों को मजबूत करता है, लचीलापन बढ़ाता है और मुद्रा में सुधार लाता है, और साथ ही आपके हार्ट हेल्थ यानी कि हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं योग के प्रकार की। योग के कई सारे अलग अलग प्रकार हैं यूँ तो, जिनमें हठ योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग शामिल, ये सभी चीज़ शामिल है। प्रत्येक प्रकार योग के अलग अलग पहलू और साथ ही उनके जो है सेंटर है, उनके केंद्र है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि योग के प्रकार की बात करें, अब बात करते हैं इसके महत्व की। योग का अभ्यास एक प्राचीन परंपरा से जिगे चला आ रहा है, जिसने सदियों में लोगों को जो है वो सदियों से बहुत टाइम पहले से लोगों के स्वास्थ्य और उनके खुशहाल जीवन जीने में काफ़ी मदद करी है। आज योग दुनिया भर में लोकप्रिय है और लाखों लोग इससे जो है लाभों से इनके जो है वो अनुभव भी कर रहे हैं। पहले सिर्फ इंडिया में योग जो है किया जाता था, बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी पुरानी मैं बात कर रही हूँ, और ये जो है भाई कहा जाता है महादेव काल से जो है चल रहा है। इनफैक्ट हमारे जो इंडियन स्कल्पचर्स हैं या फिर इंडियन जो मूर्तियाँ आप देखिए कि वहाँ पर योग जो है महर्षि मुनि के टाइम से आप देखिए मिल जाएंगे आपको, अलग अलग योगासन करते हुए कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। और उसके बाद 1900 में जाके धीरे धीरे योग का प्रचलन जो है वो वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे होने लगा, और आज के टाइम में आप देखिए योग कितना ज़्यादा फैल चुका है और कितनी ज़्यादा लोगों की मदद कर रहा है। योग एक शक्तिशाली अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं को अनुभव और साथ ही खोज के माध्यम से योग के लाभों का अनुभव कर सकता है। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं योग से जुड़ी हुई। योग जो है वो हमारे जीवन शैली के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, देखिए बात चल रही है रेगुलर योग अगर आप करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्रेन की मेमोरी जो है ये इसका कार्ड जो है वो बढ़ जाता है, साथ ही मेमोरी शार्प होती है, नए न्यूरॉन्स कनेक्शन जो है ये बनते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन 28% तक कम हो जाता है अगर आप योग करते हैं, साथ ही डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या इन सभी ऐसी कुछ बीमारियों का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कई हद तक कम हो जाता है। अब योग, कई सारे फायदे योग के हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है, आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मेंटल बैलेंस मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, इसी के साथ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, फेफड़े आपके स्वस्थ रहते हैं और साथ ही बेहतर नींद, जिसको नहीं आती है ना उनको बेहतर नींद भी मिलती है। तो देखिए योग के इतने सारे फायदे हैं तो योग जरूर कीजिए। इनफैक्ट आज बात करेंगे वज्रासन के फायदे की, तो जल्दी से झटपट से आपको बताती हूँ वज्रासन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खाना खाने के बाद ये जरूर करना चाहिए, इससे गठिया रोग, पीलिया, सफेद बाल, कमर दर्द, साइटिका, पेट के में गैस, पीठ में दर्द, पाचन शक्ति, फेफड़ों को के जो रोग होते हैं, या फिर इसमें कोई भी अगर आपको इररेगुलर पीरियड्स की समस्या है, हड्डियों में अगर आपको कमजोरी है और साथ ही मन के एकाग्र में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको अगर कोई भी परेशानी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वज्रासन कीजिए, इससे बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो योग का जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है, तो योग जो है ज़रूर कीजिए। शरीर को जो है ये आपके एक बैलेंस बनाए रखेगा और आपके मेंटली भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। अब बात मैं कर रही हूँ, बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ आज एथलीट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और इनकी जर्नी के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही खास, एक ऐसी महिला की जिन्होंने हैंड साइकिलिंग में भाई कमाल कर दिया, ज्योति गावटे। और ज्योति गावटे जो है ये पैरा साइकिलिंग में इन्होंने कमाल कर दिया, चल नहीं सकती थी इसीलिए साइकिल उठा ली। महाराष्ट्र से हैं, पैरा जो है इन्होंने साइकिलिंग करी और उसमें सबको हैरान कर दिया। जिंदगी कभी कभी ना रास्ते जो है वो छीनती है, जहाँ पर चलना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर भी मंजिल ढूंढ लेते हैं, अपनी रफ्तार से जो है वो चलते हैं लेकिन हासिल ज़रूर करते हैं अपनी मंजिल को। आज की कहानी ज्योति गावटे की है, जो कि महाराष्ट्र की एक ऐसे पैरा एथलेटिक्स, मैं बोलूँगी कि है ये एक खिलाड़ी हैं, पैरा साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी सपने जीतना बिल्कुल नहीं छोड़ा। ज्योति की मैं बात कर रही हूँ, ज्योति एक छोटी सी लड़की थी फुल ऑफ एनर्जी, जब एक एक्सीडेंट ने उनको दोनों पैरों से उन्होंने चलना जो है उनकी ताकत बिल्कुल छीन ली, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिसेबल कहना कभी नहीं चाहा। व्हीलचेयर पर जिंदगी बिताते हुए एक दिन उन्होंने टीवी पर एक हैंड साइकिलिंग रेस देखी और तब उन्होंने सोचा मुझे भी साइकिलिंग करनी है और मैं अब रुकूंगी नहीं। पर घर में पैसे नहीं थे, पापा टेलर थे, तब ज्योति ने खुद सिलाई का काम शुरू किया, पैसे जोड़े और एक सेकेंड हैंड साइकिल उन्होंने खरीद ली, जिसके बाद ज्योति ने बिना किसी कोच के ट्रेनिंग के अपनी जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल शुरू कर दी। और सुबह 5 बजे ज्योति उठा करती थी, खुद को जो है वो एकदम तैयार करती थी और खुद रूट मैप भी तय करती थी। लोग मजाक बनाते थे पर उन्होंने किसी की बिल्कुल नहीं सुनी। 2018 में उन्होंने पहली बार स्टेट पैरा साइकिलिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और सबको चौंका दिया, क्योंकि चौंके इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। फिर नेशनल कैंप में सिलेक्ट वो हुई, 2021 में रिप्रेजेंट किया इंडिया को एशियन पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में। आगे क्या हुआ बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: आज़ाद हूँ मिर्जा।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये चीज?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, और आपको बता दूँ अभी अब एक बहुत ही खास कहानी आपको एक बता रही हूँ, और वो है ज्योति गावटे की कहानी, जो कि एक पैरासाइक्लिस्ट है। जी हाँ, अब देखिए बात करते हैं। ज्योति ने सिर्फ मेडल्स के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट भी रेस जीती। मैं बताती हूँ वो कैसे, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं मिलती थी। उन्होंने लोकल डोनर्स और एनजीओ से सपोर्ट मांगा। मीडिया ने कभी उन्हें हाईलाइट नहीं किया, पर उन्होंने बोला, मैं मेडल के लिए नहीं, मिशन के लिए साइकिल चला रही हूँ। आज वो महाराष्ट्र की फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल पैरा साइक्लिस्ट बन चुकी हैं। जी हाँ, और देखिए उनकी कहानी आज सभी को इंस्पायर कर रही है। कभी कभी जो पैर नहीं चलते थे, उनके सपने दुनिया से तेज दौड़ते हैं। ज्योति गावटे ने साबित किया कि साइकिल की स्पीड नहीं, बल्कि राइडर का इरादा जीत दिलाता है। ये कहानी उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं जिंदगी से हार गए हैं, क्योंकि ज्योति जैसे लोग दिखते हैं जीतने के लिए, पैर नहीं। उनके देखिए जज्बात जो है वो काफ़ी है, उनका पैशन जो है होना चाहिए। तो वो यही कहती हैं कि जीतने के लिए मुझे पैरों की ज़रूरत नहीं है, मेडल के लिए मुझे पैरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जज्बातों की, मुझे जज्बे की, और मुझे पैशन की ज़रूरत है, और वो मैं है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल मैं आपको कहानी जो है सुना रही हूँ। अगर आप ये एपिसोड मिस कर जाते हैं तो कोई गल नहीं जी, अब आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। और वो कैसे, आपको बस क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या iOS मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है और डाउनलोड कर लेनी है हमारी इंटरनेट ऐप। और उसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और साथ ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रेडियो मानव रचना के ऐप पर। तो चलिए आप करिए इंटरनेट ऐप तब तक के लिए डाउनलोड, और आप वर्ल्ड में कहीं भी आप सुन सकते हैं कभी भी। अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम तो शहर से बाहर जा रहे हैं, साक्षी अब कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं और कभी भी कहीं भी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, हफ्ते के सातों दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ पावर प्ले विद आरजे साक्षी, हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे एथलीट्स की कहानियाँ जिन्होंने सभी को चौंका दिया। बात अब करते हैं बहुत ही कमाल एक ओशियन जो है ब्रीज काम साउथ इंडियन स्ट्रिंग्स की। जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही ख़ास एक एथलीट की। एक वक्त था जब मुरली श्री शंकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थे, सिर्फ एक ही चीज़ सोचते थे, क्या मैं फिर से कभी दौड़ पाऊँगा। और आज वही लड़का लॉन्ग जंप के देसी चैम्पियन जो है वो कहलाते हैं। मैं बात आज कर रही हूँ सन्नाटे से सितारे तक की कहानी की, मुरली श्री शंकर की। जी हाँ, देखिए श्री शंकर की बात करें तो केरला के जो है एक छोटे से गांव में ये पैदा हुए। मुरली के ब्लड में, खून में उनके स्पोर्ट्स था। पापा भी एक ट्रिपल जंपर इनके रहे और मम्मी साउथ इंडिया की बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर। मुरली ने 6 साल की एज से ही, 6 साल की उम्र से ही एथलेटिक्स खेलना जो है वो शुरू किया। लेकिन उनका दिल था कि स्पीड और हवा उन्हें जो है वो बड़ा उनको अच्छा लगता है और उन्हें उड़ने का मन करता है, इसीलिए उन्होंने लॉन्ग जंप चूज किया। सुबह 5 बजे उठना, खुद को घर के आंगन में दौड़ लगाना और साथ ही पिताजी के, उनके अपने पापा के हाथ से कोचिंग लेना, ये भाई सुबह सुबह का रूटीन हुआ करता था। और ये सब रूटीन जो था उनकी मम्मी ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया। पर सपना बड़ा था कि इंडिया के लिए मेडल जीतना है। अब 2018 में जब वो एशियन गेम्स के लिए फाइनल सिलेक्शन के एज पर थे तो प्रैक्टिस के दौरान एक जंप में उनका राइट फुट जो है वो फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा रनिंग करियर मुश्किल है, जंपिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुरली ने हॉस्पिटल के बेड

पे सिर्फ एक ही बात बोली, मैं कम बैक करूंगा और मेडल लेकर आऊंगा। और एक साल के इंटेंस रिहाब और साथ ही फिजियोथेरेपी और साथ ही उनके शीर डेडिकेशन के बाद 2019 में नेशनल लेवल पे कम बैक उन्होंने किया, 8.20 मीटर्स का जंप मार दिया। लोगों ने कहा इस लड़के में ओलंपिक मेडल का दम है। इसके बाद 2022 में उन्होंने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने खेला, पार्टिसिपेट किया। इसके बाद मुरली श्रीशंकर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और जीता सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। ये पहला इंडियन लॉन्ग जंपर बन गए जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम मिला। और उसके बाद उनके वर्ड्स ये रहे कि मैं हर जंप में इंडिया का झंडा देखता हूँ और उसी के लिए उड़ता हूँ। देखिए कभी कभी हमारे सपने ना पूरी जमीन के भरोसे होते हैं और कभी एक जंप पूरे देश का सफर जो है वो मतलब तय करती है और उनका सर जो है वो सभी जो देशवासी हैं उनका सर फक्र से ऊंचा कर देती हैं। मुरली श्रीशंकर एक अनसंग हीरो हैं जो दिखाते हैं कि अगर इरादे हो तो फ्रैक्चर भी उड़ने से नहीं रोक सकता। तो ये कहानी थी मुरली श्रीशंकर की। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ, लेकिन इसके पहले और भी बातें होंगी क्योंकि अब हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाली हैं क्योंकि सेगमेंट शुरू होने वाला है। सेगमेंट का नाम है रिचार्ज स्पॉटलाइट। बात करेंगे आज कौन है हमारे साथ, जानेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: especially that's very clumsy. Mm. They don't want to participate in anything. And then what's happening is our DCD children not participating is starting to get overweight or obese, and then they start to get very unhealthy, and it's a downward spiral all the way. So that's why we work with them to make sure that we do improve their motor skills for further improvement, social skill development, brain development, cognitive development in the future, as well as to make sure that they stay healthy.
1: Bilkul. Yes. Stay healthy. देखिए बच्चों को हेल्दी रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ के देखिए हाथ का खाना ही नहीं, बल्कि सारी की सारी स्किल्स की, एक्टिविटी की, ब्रेन डेवलपमेंट की, या फिर कह सकते हैं कि उन सभी एक्सरसाइजेस की, स्किल्स की, मोटर स्किल की जरूरत है जो कि उनको आगे ले जाएगी. प्रोफेसर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज वॉट रोल कैन स्कूल्स प्ले इन प्रमोटिंग मोटर डेवलपमेंट?
0: ओह, दैट्स अ गुड वन. I don't know in your school setting, in India, how they go about physical education and physical activity, but this week that I felt it's very hot outside. I'm not used to this temperature and this humidity.
1: Yes,
0: so I do understand that it's hard for the children to play outside in this weather. But to just bring in more physical activity, for instance, in the classroom.
1: Yes.
0: Do a short 5-minute, 3-minute brain break with them, that they stand up and be a little bit active, dance a little bit, have a little bit of a routine that they need to move. You don't always have to go for hours and hours outside. Just break it up, make it fun. Make sure that when, for instance, when the children have to go from the classroom to the playroom, and it's possible, let them do maybe monkey walks for the little ones, and let them do two-legged jumps. So, but it's very important for the school to bring in physical activity, motor development, motor skills within the school setting. And the easiest way, that's not going to take a lot of time and a lot of time away from academic, is, for instance, the brain breaks.
1: Exactly.
0: And the other thing is, if we're not going to be active, our children will not perform academically.
1: Yes. तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब जैसे हम देखते हैं बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इंडिया की बात हो रही है, और अभी मॉनसून सीजन जो है वो शुरू अभी तक होने वाला है या नहीं होने वाला, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप जो स्कूल्स हैं वो क्लासरूम में ही ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं. देखिए हमारे टाइम में होता था अप डाउन, वो जो एक सिटिंग और स्टैंडिंग एक एक्टिविटी हुआ करती थी, ये सब भी हुआ करता था. लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर मंकी जंप्स कराए जाएं, थोड़ा सा क्लासरूम को ऐसे एक्टिविटी, ऐसे फन लर्निंग क्लास बनाई जाए जिससे ना सिर्फ उनका ब्रेन डेवलप हो, ना सिर्फ वो थोड़ा खेल कूद में आगे बढ़े, बल्कि अकेडमिकली भी आगे बढ़ें. क्योंकि जितनी एक्सरसाइज वो करेंगे, जितना फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अकेडमिक में भी आगे बढ़ते रहेंगे. चलिए इसके आगे बात कर रहे हैं हम. प्रोफेसर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर टुडेज बिगेस्ट कंसर्न इन चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ?
0: Definitely, in the South African population, it's definitely our children that's getting more overweight and obese. And I think the trend in India, as I read, is also starting to go in the wrong direction. We don't want it that way. So with that is the biggest issue. Our children's getting unhealthier, doesn't exercise anymore, so they get overweight and obese. And with that is more and more children is getting type 1 and type 2 diabetes.
1: Correct.
0: And we don't want that. So with exercise, we can improve the health of our children.
1: बिल्कुल. आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं. ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बैठते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं. और ऐसे में होता ये है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है. आप बच्चे जो हैं वो खाए जा रहे हैं. पेरेंट्स को ये लगता है कि जो बच्चा खा रहा है, इनटेक कर रहा है, एटलीस्ट ही इज़ ईटिंग. बट द रीज़न इसके पीछे का जो, देखिए मैं कहूँगी कि अगर वो कुछ भी खा रहा है और उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये उनकी हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ ख़राब कर रहा है, विच इज़ अ बिग नो फॉर द किड्स नाउअडेज. इसके बाद आगे चलते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर, डज योर, बिकॉज आई कैन सी यू आर वेरी फिट एंड योर फिटनेस बैकग्राउंड हेल्प्स इन योर रिसर्च और टीचिंग, इज देयर एनी थिंग?
0: Yes, so I practice what I preach. I do love to train and I try to eat healthy, but it's not always working because I also like my burgers and pizza at some times. But I'm also I'm privileged to also be able to be teaching indoor cycling at two local gyms in Potchefstroom, as well as hit the floor training and body conditioning training. So myself do believe, and you need to do cardio and strength training to to be there for your peers and for the students that we teach.
1: Correct. देखो कहते हैं ना कि एक टीचर को भी उतना ही ज्यादा फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी फिट रख सकें. तो यही एक तरीका है बच्चों को थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव रखने का. With this, professor, I would like to ask you one last question. What's the special message for our listener, or a go-to message would be?
0: Go-to message will be, if you have to start. I know it's not easy to be healthy all the time, but start. If you even start with 7 minutes a day for activation, doing core activities, a little bit of walking, just start. You have to start. You have to be active and always try to be mindful what you eat. Yes, you can eat unhealthy food sometimes, but if you eat unhealthy, you need to exercise to get that calorie deficits in. So enjoy life to fullest, but exercise is medicine.
1: बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है वो मेडिसिन है. एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना एंड हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनसाइटफुल चैट विद अस.
0: थैंक यू संक्षी, इट वाज सच अ प्रिविलेज बीइंग हियर.
1: थैंक यू सो मच.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में आज हमने करी हैं बहुत सारी बातें, और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, यानी कि वक्त कहता है कि अब मुलाकात होगी आपसे, कल होंगी बहुत सारी बातें। तो चलिए अब कहीं मत जाइए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम फील गुड फील लाइव। शो बहुत खास है हर बार आपको नई जानकारी मिलती है एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आए हूँ लेकर के एक और शो तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है कौन सी कंपनी क्या करती है इंडस्ट्री क्या करती है सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का। सो स्टे ट्यून्ड फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योरटेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं, ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में, कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी को अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या क्यूआर बेस्ड यूपीआई। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैग होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव।
1: Thank you.

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस ही इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है, जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वॉन्ट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूँ, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूँ। तो जार ने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं ही हो जाना चाहता हूँ, लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपने बूम पर आ रहे थे, यूपीआई बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए, यार तुम ना एसआईपी किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी एसआईपी हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि हैं 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। सो इन फाउंडर्स ने खुद से सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार से या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार, डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन। एंड सो अमेजिंग यार, आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया, और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसे नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है. मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखे हुए हैं. आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन के रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया है. स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है. एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है. एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिवली डीपली इन्वॉल्व थे. तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं. सो ये एक कोई स्ट्रेट स्टोरी नहीं हो सकती है. ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के, मुश्किलों के बाद, काफ़ी सारे हालातों के बाद जाकर के एक ऐसे मुकाम पर ये पहुंचे जिसके बाद इनको जो है फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में भी इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस कंपनी जार. तो ये कहानी है मिसबाह अशरफ की. सेकेंड को फाउंडर इज निश्चय जी, ठीक है. निश्चय ने एक कन्वेंशनल रूट फॉलो किया. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, देन बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट था उसके थ्रू. उसके बाद फिर कुछ सालों तक काम किया. उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई, लेकिन उसके पहले मल्टीपल डोमेन्स इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया. इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है. प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें, आईटी एंड कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ठीक है. लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है. जैसे कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है. तो ये हैं जी दो लोग. एक है मिसबाह जो प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, स्टार्टअप ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने अनुभव लिया अच्छा खासा, अपने परिवार की दिक्कतों को भी देखा और फिर बाकी परिवारों की दिक्कतों को देख करके उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा. दूसरे हैं निश्चय, प्रोसेस फोकस्ड, ऑपरेशनल थिंकर. ऐसे करके ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्टार्टअप है इतना पावरफुल बन पाया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक. आप बताइए आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर. 8017 8107 पे फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़ रही हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए, शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितना आपने केस स्टडी सुनी है, जितना आपने पूरी इस कंपनी को समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड। पर अभी जानकारी के लिए बता दें कि जार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल्ड नहीं है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, माइक्रो सेविंग थ्रू ऑटोमेशन। अगर किसी इंसान ने 98 रुपीज पे किए हैं रिचार्ज के लिए, तो वहां पर जार ये कर सकता है कि 2 रुपए ऑटोमेटिकली काट ले, उस फिगर को राउंड अप कर दिया और 2 रुपए डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में डाल दिया। और सोचिए कितना इजी आ रही है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर आपको किसी कंपनी का रिचार्ज करना है और आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, तो 2-3 रुपए तो वो भी अपनी फीस लेता है। एग्जैक्टली यहां पर एक कंपनी बोल रही है कि काम करो, 2 रुपए हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना ही ईजी है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है भाई, लेकिन बेयरली नोटिस होता है। बट कितना बड़ा, कितना इंटरेस्टिंग मूव है। दैट इज द बिगेस्ट USP ऑफ दिस कंपनी। सो फार अबाउट दिस, आई मीन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग USP आई हैव एवर हर्ड ऑफ। या मैंने कभी इस शो में बताई होगी कि ड्राइवर से थोड़ी बात करते हैं। इंडिया का इमोशनल कनेक्शन विद गोल्ड, आपको पता है बहुत अच्छे से, गोल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी प्लस कल्चर। हमारे परिवारों में इसलिए गोल्ड को ज्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि इंडियंस जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जार को ये साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, लो एंट्री बैरियर। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर 500 रुपए 1000 रुपए आपको लेकर के आने होते हैं। जार बोलता है 10 रुपए ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, लाओ भाई 10 रुपए लाओ, 15 रुपए लाओ। कितना इजी एंट्री पॉइंट मिल गया है कंज्यूमर को। उसको थर्ड पॉइंट आता है UPI इकोसिस्टम ग्रोथ। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया, बट अगर वो ग्रो ना करता तो डेफिनेटली ये कंपनी स्ट्रगल कर रही होती। और इस कंपनी के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही होती, लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, UPI ने बहुत सारी ट्रांजेक्शंस को पॉसिबल कर दिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिला डेफिनेटली। दैट इज अनदर की ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिकल वाइब। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जार की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जार एक बहुत प्यारी सी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और किस तरीके से एक आदत को इन्होंने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लेसन हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए कि इस कंपनी ने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बट लोगों को ऑलरेडी पता था कि उन्हें सेव करना चाहिए। जार ने सिंपली उस ऑब्स्टेकल को, उस फ्रिक्शन को हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया जो उनके अंदर था, जो उनको रोक रहा था। अगला पॉइंट है कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टार्टअप जो है वो हर बार उसको बड़ा बनाने के लिए नए बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स कुछ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रीडिजाइन करना होता है। ऊबर ने टैक्सीज इन्वेंट नहीं करी थी, जोमैटो ने फूड इन्वेंट नहीं किया था, सिमिलरली जार ने सेविंग्स इन्वेंट नहीं करी, आदत बदली, बैरियर्स को हटाया, एक्सेसिबिलिटी दे दी, एंट्री बैरियर को हटा दिया। सो दीज आर द थिंग्स जिसका फल जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का नाम है जार। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइफ। तो भाई देखिए, आज अब इस शो को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। जार की स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए। हर स्टार्टअप को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं करना होता है बाबू मोशाय। कभी कभी एक स्टार्टअप सिर्फ एक आदत को समझने से स्टार्ट हो सकता है। तो छोटा सा सवाल उठा कि लोग पैसे बचाना क्यों नहीं शुरू कर पाते। उस सवाल ने एक डिजिटल पिगी बैंक बना दिया, जिसका नाम दिया गया जार। और शायद जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन छोटी छोटी आदतों से एक दिन फर्क जरूर आता है। फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज में लागू होता है। थ्योरी है, आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप एक दिन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बस आपको छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाने की आदतें, सोने की आदतें, तो वो जो छोटी छोटी आदतें आपके अंदर चेंज ला रही होंगी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी होगी जो भी आपने ख्वाब देखा है उस तरफ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। आज आपको शो कैसा लगा मुझे बताइए जरा 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कुछ स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, किसी बड़े मूवमेंट का वेट मत करिए। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए एंड सिंपल गो फॉर इट। चलता हूं, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक बार फिर से प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका शब्द आपने शायद कभी कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल शायद आप नहीं जानते। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस चीज से सफर करते हैं या फिर उनके आसपास के लोग। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पैरों की तरफ नजर दौड़ाएं, खास तौर पर से अपनी काफ मसल्स या अपने पैरों की तरफ, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी नसें विजिबल होती हैं। जी हाँ, ये जो नसें होती हैं ये वैसे तो हमें फिट रखने के लिए ही होती हैं, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही से इनसे चलता रहता है। लेकिन कई बार अगर ये ज्यादा विजिबल हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक ही बता सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत सारी बात वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई कि आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या। आज हमारे कार्यक्रम ऑल इज वेल में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक लेजर और जनरल सर्जरीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
3: धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया
2: जी।
3: और आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक तो कर रहे थे पिछले 20 साल से, रिसेंटली 5 years back लेजर इंक्लूड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में
2: जी,
3: और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस के आ रहे हैं। तो आपने आज जो इंट्रोड्यूस किया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में
2: जी, तो
3: वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस में होता है, क्यों होता है और इसका क्या करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा प्रॉब्लम।
2: जी बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ये खांसी जुकाम की तरह नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। सो बेसिकली वेरिकोज वेन्स है क्या?
3: जैसे कि आपने कहा कि पैरों में नसें होती हैं, तो नसें तो चाहिए, आर्टरीज हैं जो आर्टरीज हैं जो ले जाते हैं खून को आगे दूर की तरफ, और उस तरफ से फिर रिटर्न के लिए जो नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू दिखते हैं आपको कई बार पैरों में
2: जी।
3: तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वॉल होती है और वॉल में कुछ वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। तो कई कारणों से इनका बैक फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वेन्स डायलेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेन्स। तो फिर वो डायलेट होने से जो मोटे मोटे वेन्स दिखने लगते हैं लोगों को, या कई तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के हैं, और उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
2: जी। यानी ये जो नसें विजिबल हो जाती हैं, एक जाल की तरह हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाई जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स होने से प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर किन लोगों को हो सकती है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में ये खास जानकारी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ये सारी जानकारी वेरिकोज वेन से जुड़ी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में, एक ऐसी समस्या जो काफी आम नहीं है लेकिन फिर भी जिसको होती है वो ही इसकी तकलीफ समझ सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद है जो कि जाने माने सर्जन है, और इनसे हम जानने की कोशिश करें वेरिकोज वेन्स से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवाल। सर आपसे अब मैं जानना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में हम बात करें। आपने बताया कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं वेन्स वापस लेकर आती हैं, और इस वेन्स का जो एक जाल बन जाता है वो वेरिकोज वेन्स कहलाया जाता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किन लोगों को इफेक्ट कर सकता है, किस एज में कर सकता है, क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है, यंगस्टर्स को हो सकता है?
1: एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जैसे आपने बोला ना जाल हो जाते हैं, तो कई तरह के वेरिकोज वेन्स के कई टाइप्स हैं
0: जी।
1: जैसे कुछ वेरिकोज वेन्स जो स्पेसिफिक बोलते हैं उसमें जो खून की नसें डायलेट हो जाती हैं मोर देन 3 mm साइज अगर हो जाए
0: अच्छा।
1: तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: okay।
1: अगर 1 mm से कम है तो फिर वो टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं
0: okay।
1: और अगर उससे थोड़े बड़े हों 1 to 2.9 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स
0: okay।
1: जैसे आप बोलती हैं जाल, जाल इज रेटिकुलर
0: okay।
1: तो जाल की तरह होते हैं। और वेरिकोज वेन जो 3 mm से बड़े होते हैं वो आप देखेंगे टॉर्सुअस हो जाते हैं और एकदम लंबे लंबे से सांप की तरह आपको पैर के ऊपर दिखेंगे,
0: स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाते हैं।
1: तो वो वेरिकोज वेन्स है बेसिकली 3 mm से बड़े साइज के, तो ये होते हैं। और उसका कारण क्या होता है मेनली कि सारे जगह वॉल्व्स होते हैं पैर में, दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं, टू डीप है और एक सुपरफिशियल है, उस दोनों के बीच में वॉल्व होता है। तो जब हम खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, मतलब मोर देन 100 mm ऑफ एचजी तक हो जाता है वेन में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हम रहते हैं खड़े तो उसको सस्टेन करने के लिए वॉल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। क्योंकि पैर से जब ब्लड निकलता है, पैर में आपने सुना हो एक पेरिफेरल हार्ट भी होता है, सोलियस मसल होता है, तो जब हम चलते हैं काफ मूव करता है तो फिर वो वेन ब्लड जो है ऊपर पंप होता है हार्ट की तरफ, फिर और सांस भी लेते हैं लंबी, तो वहाँ निगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में, तो वेन ब्लड को सक करता है ऊपर तब ब्लड जो है पेरिफेरी से हार्ट में आता है तो इस तरह से उस प्रोसेस में हिंड्रेंस हो जाता है, वाल्व खराब होने से बैक फ्लो हो जाता है, ब्लड का पुलिंग होने लगता है, पैर में ब्लड जमा होने लगता है तो इसको इससे ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज ये हो जाता है कि हार्ट को कम ब्लड जाता है, पैरों में ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है
0: यानी वो नसें जो है वो इतनी स्वेलिंग सी हो जाती है कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। ये तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को अंदाजा ही नहीं है कि पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने से आपके दिल पे असर पड़ता है। और डॉक्टर साहब उम्र क्या होती है जिसको ये इफेक्ट करता है, क्या किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चे जनरली इतना ज्यादा
1: बच्चों में नॉर्मली ये नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत कम चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एजेनेसिस ऑफ वाल्व होता है, वाल्व बनते ही नहीं है
0: अच्छा।
1: तो उनको अर्ली स्टेज में हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये एक्वायर्ड रहते हैं। और जो यंग एज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में जब लेडीज जो यंग एज में प्रेगनेंसी है जैसे 20s-30s में शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से कई बार वाल्व खराब होते हैं
0: okay।
1: तो प्रेगनेंट लेडी में थोड़े कॉमन होते हैं ये वेरिकोज वेन्स, बनना शुरू हो जाता उसी समय से
0: okay।
1: बट मैनिफेस्ट होते होते कई साल लग जाते हैं
0: okay। यानी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बाद में ओके okay। और बुजुर्गों में काफी देखे गए
1: जैसे जैसे एज बढ़ता है वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है
0: ओके okay।
1: तो ये एज से रिलेटेड है, कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ फैमिली में भी चलते हैं ये
0: अच्छा यानी हेरिडिटरी भी हो सकता
1: है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिलियल बोलते हैं
0: ओके।
1: तो ये हो जाता है। और कुछ मोटे मोटापा हो, वेट गेन हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो प्रोफेशन हैं उसमें भी होता है ये, जैसे टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या फिर सर्जन जो लॉन्ग आवर ऑफ सर्जरी करते हैं, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस थोड़े रहते हैं
0: जी। यानी अगर आप 6-7 घंटे के आसपास खड़े हो रहे हैं डेली नॉन स्टॉप
1: जी,
0: जैसे मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर गार्ड्स बहुत सारे होते हैं,
1: टीचर्स गार्ड हैं, उन लोगों में सबके चांसेस रहते हैं।
0: सो अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 6-7 घंटे-8 घंटे अगर खड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ तो एक अलग लेवल पर हो रही है, बाकी चीजें भी आपकी बढ़ सकती हैं, जैसे आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन वेरिकोज वेन्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर की वजह से आपको परेशान कर सकती है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और साथ ही जानेंगे कि पहचाने कैसे इस प्रॉब्लम को। लेकिन अभी वक्त एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का, इसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी। तब तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप शायद उन्हें ना जानते हुए या आपसे कभी उन्होंने डिस्कस ही ना किया हो, लेकिन अगर उनकी बहुत लंबे समय तक खड़े होने की जॉब है, जैसे बहुत सारे टीचर्स या फिर सर्जन या फिर गार्ड्स या फिर मॉल में खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में काफी परेशानी भी झेल रहे होते हैं क्योंकि वेरिकोज वेन्स उन तक पहुंच रही होती हैं। शुरुआत में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम कुमार, जाने माने सर्जन, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं वेरिकोज वेन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब। सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे?
1: बहुत अच्छी बात है कि पहले तो प्रॉब्लम है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है वो जानना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है, पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, पैरों में?
1: जैसे आपने बोला, बहुत से लोगों को स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम में 50% लोगों को है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेनस डिजीज। तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आप देखते होंगे, सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
0: एक दो साल का समय लग जाता है।
1: हाँ जी, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है, वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्चुअस हो जाता है,
0: जैसे आपने कहा वो स्नेक वाला वैसा दिखने
1: टाइप के दिखेंगे आपको। तो ये सेकंड उसके बाद का स्टेज है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है। जी हाँ, तो वो एक उसके बाद का स्टेज है जिसपे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ उसमें फैट डिपोजिट होने लगता है। और फिर उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा। तो कई बार आप देखते होंगे लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ, पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता,
0: दर्द बहुत होता है, खुजली बहुत होती है,
1: तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में काफ में क्रैम्प्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको भी अभी इग्नोर करते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, कुछ केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर अल्सर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इचिंग के बाद छोटे छोटे घाव बनेंगे और वो ग्रेजुअली डीप हो जाते हैं और उनको वेनस अल्सर कहते हैं। ये फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हील, किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होता है। कुछ भी आप एंटीबायोटिक देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, उससे ठीक नहीं होगा जब तक कि हम उसके कॉज को खत्म नहीं करेंगे। लाइक जब तक वेरिकोज वेन को एबलेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं, ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक घाव बंद नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप सर्जन हों, चाहे आप गार्ड हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और आप खड़े बहुत देर तक रहते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, सो आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। पैरों में होने वाली स्वेलिंग, साथ ही पैरों में होने वाली इचिंग जो होती है, आपकी टांगों में अगर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और नसें जो हैं वो अब विजिबली दिखाई दे रही हैं, थोड़ी मोटी हो गई हैं और आपको तकलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर वेरिकोज वेन्स में तब्दील हो सकती है। ये अभी शुरुआत है, इसलिए ये सिम्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती है। इसलिए अभी अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बिना देर करें डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फिलहाल बहुत सारी बातें और भी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं आप इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या जो आपकी टांगों में होने वाली प्रॉब्लम है, नसों का बहुत ज्यादा विजिबल होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होना, इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर में सिम्टम्स के तौर पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे ये घाव यानी चोट सी भी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये शुरुआती दौर के सिम्टम्स आपने समझ लिए तो फिर क्या इलाज होगा और डॉक्टर कैसे आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार से जो कि जाने माने सर्जन हैं, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट भी। सो डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब एक व्यक्ति है, कोई टीचर है सपोज, और 36-37 साल की उम्र है, उनको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके पैरों में वेरिकोज वेन्स की हल्की हल्की समस्या आने लगी है, जैसे आपने कहा कि वेट की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, सो अब उनको क्या ट्रीटमेंट आप दें?
1: बहुत अच्छी बात। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो कितना समस्या कितनी गहरी है, कितना कहां से शुरू है, ये पता करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो हम देख के आंख से और डिफरेंट मेथड से ये पता करें कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं
0: जी।
1: तो नॉर्मली पैर में ना दो वेन सिस्टम है, एक तो डीप और सुपरफिशियल बताया। सुपरफिशियल में भी एक ग्रेट सेफेनस वेन है, लंबी वाली, जो जांग के पास से थाइक्स के से शुरू होके और फुट तक जाती है।
0: ओके।
1: तो उसको ग्रेट सेफेनस वेन बोलते हैं। और एक नी के पीछे से
0: काफ मसल्स,
1: फुट, काफ मसल्स के थ्रू फुट में जाती है, उसको शॉर्ट सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं जिसमें वेरिकोज वेन्स होते हैं नॉर्मली। तो उनको हम लोग पहले इवेलुएट करते हैं, क्लिनिकल मेथड से देखते हैं कि किस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज होता है जो डॉपलर बोलते हैं।
0: ओके।
1: वेनस
0: कलर डॉपलर वगैरह,
1: कलर डॉपलर
0: जी।
1: तो वेन्स का भी करते हैं, आर्टरी का भी करते हैं। इसमें वेनस डॉपलर करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा रियल वाल्व कौन सा खराब है, किस लेवल पे खराब है, और फिर उसके नीचे डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो परफोरेटर है उसमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व कहाँ पे खराब है। तो जहां जहां होता है उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं स्किन पेंसिल से ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉपलर के टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं
0: जी। जी जी तो यानी पहले आप उस चीज को समझेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात मैं करूँ तो ट्रीटमेंट क्या खाली ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी या किसी तरीके की और कुछ आप चीजें करते हैं?
1: कई स्टेज है ट्रीटमेंट के। अगर बहुत अर्ली है तो मेडिसिन भी है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, और उनको बड़े लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है विद मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे वेट लॉस करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे पेरिफेरल हार्ट, जो सोलियस मसल के अंदर जो पंप है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वेनस फ्लो को बढ़ा देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो स्ट्रेसिस कम हो जाता है। तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉकिंग सुना होगा आपने, कंप्रेशन स्टॉकिंग होता है, तो उसमें कई टाइप के हैं, ग्रेड 1, 2, 3 करके। तो उस स्टॉकिंग को आप पहन सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब आप वॉक करते हैं या लॉन्ग खड़े रहते हैं तो उस समय आप पहन के उसको यूज करके अपने वेनस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इससे फायदा भी हो सकता है।
0: ओके, यानी चीजें बेटर हो सकती हैं सिर्फ ओरल मेडिकेशन से,
1: ओरल मेडिकेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जो बड़ी सारे दिन खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पैर में सूजन आना शुरू हो गया तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना शुरू करना चाहिए।
0: जी जी। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से होती है? लेजर होती है या जैसे आप करते हैं नॉर्मल सर्जरीज वैसे होती है, और कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है इसमें?
1: शुरू में जब हम लोग पढ़े कॉलेज में थे तो उस समय तो ओपन सर्जरी ज्यादा होता था, स्ट्रिपिंग करते थे वेन के अंदर, एक तार डाल के उसको खींच के निकाल देते थे। थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी उसके होते थे, नर्व इंजरी वगैरह हो जाता था। धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट सा हो गया है, और आज के दिन में जैसे एडवांसमेंट हुआ सर्जरी में, बहुत सा चीज आ गए, तो लेजर के आने से एकदम से रिवोल्यूशनाइज हो गया। पिछले 10-15 साल से लेजर वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: जी। और उसमें बहुत कम तकलीफ होता है, बस एक नीडल प्रिक करते हैं वेन में और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और फिर एक सीथ डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर जाता है, और ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ठंडा पानी या उसमें विथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, सो दैट की पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो. तो उसमें फिर लेजर फाइबर से मतलब 60 जूल पर सेंटीमीटर एनर्जी डिलीवर करते हैं, सो दैट कि वो बर्न हो जाए, कोलैप्स हो जाए वेन्स. फिर वेन धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, वो बंद होता जाता है.
0: जी, और इसमें रिकवरी कितने समय में हो जाती है? क्या व्यक्ति दोबारा वही जो जॉब है अपनी कर सकता है? सपोज कोई टीचर है तो वो टीचिंग प्रोफेशन वापस अपना शुरू कर सकती हैं?
1: कब से रिज्यूम करें अपना जी? तो मैं आपको ये बता था कि पहले तो एक लेजर था, फिर उसके बाद थोड़ा आरएफए आया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन बोलते हैं वो. फिर कुछ हाल के दिनों में कुछ ग्लू भी आए हैं, तो उससे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ज्यादा, बट और बिकम पेन और फास्टर रिकवरी जो आप बोलिए कब ज्वाइन कर सकता. तो नॉर्मली ये सारे जो भी कोई प्रोसीजर करते हैं हम लोग 24 आवर में सारे पेशेंट घर चले जाते हैं. मतलब कैन डू इन डे केयर आल्सो, बट एहतियातन उनको रख लेना, थोड़ा रेस्ट देना अच्छा रहता है. तो 24 घंटे में तो 99% लोग घर चले जाते हैं.
0: अच्छा, और उसके बाद 2-3 हफ्ते में काम शुरू कर सकते हैं?
1: मतलब 1 week के बाद भी अगर शॉर्ट स्टैंडिंग का काम है तो जा सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग पहनना बड़ा जरूरी रहता है. 1.5-2 महीने तक स्टॉकिंग दिन में पहनना चाहिए, रात को सोते वक्त में उतार
0: देना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वेरिकोज वेन्स की समस्या ये ट्रीटमेंट सारे होने के बाद दोबारा भी आ सकती है?
1: बड़ा इम्पोर्टेंट है और सब लोग ये पूछते हैं, जानना भी चाहिए कि रिकरेंस के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं. मतलब 5-10% लोगों को 5 years डाउन द लाइन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बॉडी में एक बड़ा मतलब फैंटास्टिक फीचर बोले कि हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, रिपेयर करते रहता है. तो जिस वेन को हम लोग बर्न कर देते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे रीकैनलाइज हो जाते हैं.
0: अच्छा,
1: जैसे कई बार आपने सुना होगा पैर के नसों में ब्लड जमा हो गया, थ्रोम्बस बन गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो 4-6 महीने में आप देखेंगे वो रीकैनलाइज हो जाते हैं, फिर से उसमें नए वेन्स पेटेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं. तो वैसे ही बॉडी अपने को रिपेयर करता है और वो वेन फिर से पैदा हो जाते हैं, और लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में, 5-10% बहुत ज्यादा नंबर नहीं है. तो ऐसे लोगों को होने की संभावना है 5 years के बाद.
0: सो वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया है, सर्जरी से या फिर ओरल मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज से या फिर ग्लू से. जी हाँ, ग्लू से भी वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है. लेकिन आगे हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, रीअकरेंस ना हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी चीजें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानवराज 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें चल रही हैं आज वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अक्सर आपने बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, पर बात करना जरूरी है. अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप काफी घंटों तक नॉनस्टॉप खड़े रहते हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है और नसें जो हैं आपकी वो विजिबल हो रही हैं, थोड़ी मोटी दिख रही हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या आप क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं. वेरिकोज वेन्स खतरनाक क्यों है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि भाई ये हार्ट पर भी असर डालती हैं. अगर नसों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सीधा दिल पर असर पड़ेगा, और दिल पर असर पड़ेगा तो आपकी पूरी हेल्थ खराब हो सकती है. इसलिए वेरिकोज वेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लू हो या फिर सर्जरी हो या फिर ओरल मेडिकेशन. लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. सो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने सर्जन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर साहब, अब जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, उसके लिए अपना ख्याल क्या रखें, क्या डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दिया जाता है.
1: मैडम, इसमें ना दो पार्ट हैं. एक तो ये कि जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ चीजें जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एजेनेसिस ऑफ वाल्व है या फैमिलियल ट्रेट्स हैं, तो ये इतनी ग्रुप है, किसी किसी देश में किसी किसी रीजन में ज्यादा होता है, तो ये सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनको, लेकिन इनका रोल बहुत कम है
0: जी,
1: बहुत रेयर है ये सब, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. बट जो कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं उस पर हम लोगों को थोड़ा कॉन्शस रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेट गेन को रोकना, तो उसमें आपको डाइटरी मोडिफिकेशंस और फिजिकली एक्टिव रहना, ताकि आपके जो पेरिफेरल हार्ट हैं, सोलियस मसल्स का मूवमेंट हो, काफ का मूवमेंट ज़्यादा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वेन डेवलप नहीं होंगे. या जैसे आपका, आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब हैं, तो वो भी बीच में थोड़ा ब्रेक लें और पैर को मजबूत रखें विद गुड एक्सरसाइज. वॉक करके बीच बीच में आप काफ को मूव करें, फुट को मूव करते रहें, सो दैट कि आपका काफ रिलैक्स रहे, मसल्स को. जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो वो उसमें लिखा रहता है प्लेन में कि पंजे को चलाते रहें, बीच बीच में पैर को उठाएं, ताकि आपका ब्लड का फ्लो बना रहे. तो ये एक्सरसाइज, ये मॉडिफिकेशंस आप अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में भी डाल सकते हैं, जो आपके वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकता है.
0: ओके जी जी, यानी अपना जो है फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को लिमिटेड ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है अगर हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं. सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: तो वेरिकोज वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं, बस हमारा तात्पर्य या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना ख्याल रखें और फिट रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सब कुछ कमा सकते हैं, बस सेहत नहीं कमा सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे. फिलहाल प्रोग्राम में आज बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक से जुड़ी हुई बातचीत पर. तब तक मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त. फील गुड, फील लाइव. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था, और साथ ही PCOD, हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
1: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
0: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
1: जी,
0: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
1: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपनी हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
0: जी।
1: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
0: जी।
1: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
0: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
1: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4-4.5 साल।
0: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही है मतलब बहुत उम्दा, मैं कहूंगी आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या, कितना वेट था?
1: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो. तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर, और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई. तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे. तो वो 78 kg का मार्क मुझे याद है. और एट दी एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 kg पे थी.
2: वाओ, सुपर. सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफर, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ. सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
1: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी. जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई. डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है. और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए. तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है. तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज़ में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गोंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज खराब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा. लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक जिद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया 1.5 साल के बाद, तो 10 किलोमीटर पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
2: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज के लिए भी उतनी जरूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
1: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरनी देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5-6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया, और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं। ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अच्छा। तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं। अगर आप 20s 30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है। तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है। मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है। जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया। लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है। तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है। मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है। पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ। तो वुमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है।
2: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है। हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ एक घंटा। और वहां पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग। सो

0: मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की.
1: बिल्कुल.
0: बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे. सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इनटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ। मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइफ्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया। हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन कोचेस।
0: हमने आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखी हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करेंगे, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 to 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है। और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है। सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं। तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोज़ भी होती हैं, तो वो वीडियोज़ के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल वाइज, वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन। तो वहाँ प्लान्स होता है, एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज में गुरु होना तो बहुत जरूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत जरूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो है NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर के काम, उनके बच्चे, और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ, मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपीनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%, या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा वुमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ये इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारी वुमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते, फिर भी वही हैं जो स्ट्रेंथ लूज कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए, रोज मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं, तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा। तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें। ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की ज़रूरत है। अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहाँ फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी।
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें। जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी।
1: धन्यवाद।
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसी जर्नी पर हैं। तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक, जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं एक घंटे से डेढ़ घंटा या दो घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने ढाई घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपने वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए, कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे एक डेढ़ घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड हैं।
0: अच्छा
1: जी। और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनीमोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो, बट ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर, और जो आज भी हैं।

0: लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो पांच चीजें हम अभी बात कर रहे थे, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहां अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं पीसीओडी थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलेड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा, ना दूध, ना चावल, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन पीसीओडी आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
1: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
0: देखो, मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से, और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना, हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत,
1: मतलब चीजें वही है, बस तरीका बदल गया,
0: स्ट्रक्चर आ गया, जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो आरडीए रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है, ये सर्वाइवल नंबर है, कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
1: हाँ जी।
0: तो कैसे हम कहें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा है, घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं, तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशन, और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है, अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है, आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के,
1: थायराइड,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी पीसीओडी के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया, जहां मैं 125 mg की पिल ले रही थी, लेकिन देखिए यही लाइफस्टाइल, यही पांच चीजें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
1: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत, मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का।
0: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है, तो जहां हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहां हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं।
1: जी, और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
0: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएँ। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है, ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मिनटीज 120 मिनटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
1: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद ज़रूरी है।
0: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है, एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए, और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे 2 पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है, क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
1: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, और काफी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
0: थैंक यू गौरी।
1: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड, और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज या फिर मिथ है?
0: नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज के साथ काम कर रही हूँ, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
1: जी,
0: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है। तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
1: जी।
0: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जांच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए। जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, तो टाइम जरूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है। डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है।
1: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सो टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे। तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं, और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही, तो वही तो गड़बड़ है। वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है. आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है. तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का. तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं. जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं.
1: जी, मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
0: बच हैं. तो सकते हैं 100%. तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया. तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग. मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है. एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं. और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है. घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स.
1: जी, और साथियों अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे बट डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ। लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका बीएमआर, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है। तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से बीएमआर थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूं, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है. और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैटियो हिट करेंगे. फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं.
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है.
1: बिल्कुल होगी अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे. तो वो बहुत जरूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें.
0: जी, तो सिमरन हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी सुनी और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल.
0: ओके, तो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड.
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म.
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी.
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए.
0: नाइस. एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा.
0: वाओ, ये तो सुपर. थैंक यू सो मच. तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है. सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं. तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, जी बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल.
0: जी,
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं. और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए. और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए, ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है. बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं.
0: जी, थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर. मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच. आई एम ऑल देयर टू गाइड देम, एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए. ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा.
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच. एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे. सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
2: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना. टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइव. Bye.
3: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main RJ Sagar, I am lekar ke show, Voice of Youth. Ab log is time jude hue hain Radio Manorama 107.8 FM ke saath, ye show hamara bahut khas hota hai, wo kya hai na ki, is show mein hum log baat karte hain expertise ki, is show mein hum log baat karte hain skills ki, moreover, yahan par hum har baar ek expert ko bulate hain, jo किसी भी डोमेन से हो सकते हैं बट हमारी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर इस शो के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें कुछ अच्छी बातें हम बता सकें। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यम। सत्यम एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, साथ साथ उन्होंने हाल फिलहाल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। तो सत्यम से हम लोग बात करेंगे थिएटर के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, मुंबई की कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सत्यम से आज जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सत्यम का। सत्यम स्वागत है।
4: हेलो भैया, थैंक यू भैया मुझे बुलाने के लिए।
3: सत्यम, मैं सबसे पहले आपके डोमेन के बारे में जानना चाहूंगा, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं अपने शब्दों में, एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल क्या है।
4: ओके, सो अभी मैं 2024 में मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा था थिएटर आर्ट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद मैंने अपना नाटक करने के लिए एक थिएटर ग्रुप खोला है जिसका नाम है रंगरेस। तो उसमें मैं नाटक लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ और उनमें एक्टिंग भी करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल और नए नए मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू किया, तो मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ।
3: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा ये अभिनय का कीड़ा, थिएटर का कीड़ा, ये उपजा कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
4: स्कूल में क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं तो वो थिएटर करते थे, जब मैं 10th में था तो वो कॉलेज आ गए थे मानव रचना से ही। तो उनको देख के कि उन्होंने थिएटर शुरू किया तो साथ में मुझे लगा कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। और ये वो टाइम है जब यूट्यूब और नेट काफ़ी आ गया था, जियो रेवोल्यूशन जब हो रहा था, तो उस वजह से मैंने गुफ्तगू के एपिसोड देखे यूट्यूब पे, तो समझ में आया कि मंडी हाउस एक जगह होती है तो वहाँ पे जाके आप थिएटर कर सकते हो। तो बस वहीं से था, मैं 10th में था तो मुझे था कि किसी तरह मुझे पढ़ाई करके अच्छी सी मुझे डीयू में जाना ताकि मैं थिएटर कर सकूं। तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे और मैं डीयू जा सका, तो वहां से मैंने थिएटर शुरू कर दिया। फिर चीजें अपने आप धीरे धीरे खुलती गई।
3: बिल्कुल,
4: तो मतलब मेनली भैया को देख। हाँ सॉरी,
3: हाँ मैं ये अब जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा ये बताइए कि थिएटर ने आपके अंदर क्या बदलाव दिए, क्या चेंजेस आपके अंदर आए थिएटर करने के बाद जो आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली थिएटर से होता क्या है।
4: बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं 17 साल का था जब मैं कॉलेज गया डीयू में, आचार्य नरेंद्र करके कॉलेज है साउथ कैंपस में, वो क्या कहते हैं गोविंदपुरी में है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ की थिएटर सोसाइटी में मैंने आपको एनरोल कर लिया, किससे मैंने ऑडिशन दिया और मेरा हो गया था ऑडिशन। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में और देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत ही इग्नोरेंट तरीके से मैं अपनी जिंदगी चला रहा था और मेरी लगभग 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं था मेरे को। तो जब मैं वहाँ गया और हम वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाटक भी होते थे, पॉलिटिकल नाटक भी होते थे, नाटकों की रीडिंग्स होती थी जो सीनियर्स लोग करते थे, तो वहाँ की सीटिंग में बैठ बैठ के मुझे काफ़ी अवेयरनेस हो, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया दुनिया के बारे में। और कहानियाँ हम पढ़ते थे बड़े बड़े राइटर्स की, मंटो की, भीष्म साहनी की, तो उससे बहुत कुछ समझ में आया जो मेरी लाइफ नहीं है उनके बारे में जानना। तो उससे वो एक फिर जर्नी शुरू होगी मेरी इस तरफ। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो हाँ थिएटर, हाँ या
3: ओके तो आपका आपकी सराउंडिंग के बारे में पता लगा एंड समाज में क्या चल रहा है, एक तरीके से आप एक जागरूक इंसान बन गए।
4: हाँ, हाँ.
3: इट हैज टू बी देयर। अगर कोई भी इंसान जिस समाज में जी रहा है अपने समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकली आपको अवेयर होना चाहिए, आप भले कोई मूवमेंट चलाएं ना चलाएं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू शुड नो कि आपकी आसपास क्या हो रहा है, इनजस्टिस क्या है, सोशली आप कहां पर स्टैंड करते हो एज अ कंट्री, क्या इश्यूज आपके सामने, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थिएटर जरूरी है, आप अपने बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो, दुनिया में जो चीजें हुई हैं, इनजस्टिस हुए हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आप रूबरू होते हो। दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। अब इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: कहता है तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: वेलकम बैक गाइस, तो आपको मजा आ रहा है गानों के साथ साथ आपको इस शो पसंद आ रहा है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सत्यम। यहाँ पर रंगमंच के एक अभिनेता हैं, अपना एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, और अभी तक हमने जाना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चेंजेस इनके अंदर थिएटर जो है वो लेकर के आए। आइए शो को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और सत्यम से बात करना चाहेंगे स्किल्स के बारे में। सत्यम, मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि थिएटर में कौन कौन सी स्किल्स की हमें जरूरत होती है, क्या वो स्किल्स हैं जिन्हें हमें चाहिए और कैसे उनको अपने अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है?
1: ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमने शुरू किया था तो या जो भी थिएटर की हिस्ट्री भी रही है, तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपको कम्युनिकेट करना, जो मतलब आपको एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन बेसिक नीड फॉर द थिएटर। तो वो आपने जब ऑब्जर्व किया होगा तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो सबसे बेसिक नीड है मुझे लगता है थिएटर की, वो ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे जैसे आप आपकी लाइफ बढ़ती रहती है, आप चीज़ों को समझते रहते हो और पढ़ते हो, देखते हो, लाइफ में आप ग्रो करते हो, इवॉल्व होते हो, तो वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन भी और सटीक होती जाती है। बाकी सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, अपने आसपास को देखना, ऑब्जर्व करना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किल्स की भी बात करना चाहूंगा सत्यम, ऑब्जर्वेशन के अलावा कौन कौन से टूल्स एक एक्टर के पास होते हैं जो थिएटर में जाकर के पॉलिश करने होते हैं, या कोई प्रॉपर थिएटर में नहीं जा पा रहा है, अपने घर पर पॉलिश करना चाह रहा है, तो कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हमें जिनके ऊपर काम करना चाहिए
1: एक एक्टर को?
0: हाँ, एक एक्टर को
1: समझ गया मैं। टूल्स जैसे चार चीजों के बारे में बात होती है एक्टिंग में, तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो उसको अगर हम बेसिक डोमेन में कवर करने की कोशिश करें तो आप अपने बॉडी को फिट रखें, योगा जो भी आपको सही लगता है, और आपको वॉइस ट्रेनिंग के लिए आप अगर कुछ म्यूजिक करते हैं, आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने आप से भी कुछ नॉर्मल, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, नॉर्मल सुर लगा सकते हैं ताकि आपकी वॉइस की क्लैरिटी सही रहे। और बाकी अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आप हमेशा, मतलब वो हमेशा ओपन है, आप कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। और कॉस्ट्यूम, जैसे कि मैंने बात बोली थी पहले कि ऑब्जर्वेशन, तो फिजिकल अपीयरेंस हर कैरेक्टर का, मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैसे कपड़े क्यों पहनता है, कहीं कहीं पे कपड़े फिक्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में आप धोती और कुर्ता नहीं पहन सकते, आपको वहाँ पे शर्ट और पैंट ही पहनना पड़ेगा। तो ये इसको आहार्य में आता है, ये फिजिकल अपीयरेंस में आता है ये। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन ने, कुछ सोसाइटी ने बनाया और कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से, स्पेस के, एटमॉस्फेयर के। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन का कैसे कपड़े, कौन सा कैरेक्टर क्या कपड़े पहन रहा है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं। और सात्विक जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, वो ट्रेनिंग से आता है, वो जो हम ट्रुथ की बात करते हैं परफॉर्मेंस में ढूंढने की, वो समय के साथ आता है, इसमें काफ़ी समय देने के बाद आता है। तो ये चार चीजें पर अगर ध्यान दें तो मतलब एक जर्नी में आप जा सकते हो।
0: बिल्कुल, काफी सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग हैं जहां तक आपकी आवाज जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभिनेता बनना होगा। जिसको अभिनेता बनना है उसकी शुरुआत कैसे की जाए अभिनेता बनने की, बिल्कुल बेसिक से रोड मैप क्या बना के आप देना चाहेंगे?
1: जैसे मैं कल ही इंटरव्यू देखा था प्रसन्ना साहब का, तो उसमें उन्होंने बहुत कमाल की बात बोली कि हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो आदमी बस देखता है कि जैसे जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं थिएटर देखने गया था, तो मैंने थिएटर देखा, फिर एक मन में एक सवाल आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अभी आज का ज़माना जैसा हो गया है, इंस्टाग्राम बूम जब से किया है तब से अब लोग रील्स देख रहे हैं, तो काफ़ी कम्फर्टेबल हो गया है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आपके फ़ोन में आपको दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप देख के ही करने लग जाएंगे, करने के लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज जो है, अब और चीजें आसान हो गई आपके लिए, तो आप बस फोन उठाएं और करें। एक्टिंग में ही एक्ट एक शब्द है, तो एक्ट करना जरूरी है, आप बस करें और चीजें वैसे ही इतनी ईजी हो गई हैं, तो बस आपको एक्शन लेना है। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, विजुअली बम्बार्डमेंट हो रखा है, तो बेस्ट ये है कि आप बस शुरू करें, बस एक स्टेप लें, फिर चीजें अपने आप हो जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्यम ने अभी तक हमें बताया कि थिएटर की शुरुआत कैसे होती है, अभिनेता बनने की शुरुआत कैसे होती है, तो देखने से अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखिए, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, अच्छी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या अच्छा इसमें किया गया है, किन किन नुआंसेस को उठाया गया है, बॉडी, आवाज़, आहार, जो सत्यम ने भी बताया हमें कि चार भागों में इसको मेनली बांटा जाता है, तात्विक, वाचिक, आहारिक और आंकिक। उनको अलग से अगर आप डिकोड करके देख पाते हैं क्या अभिनेता क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, तो शायद थोड़ा आप अच्छे से टेक्निकल वे में उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक एक मैकेनिक की तरह हम इसको देख सकते हैं। जब एक गाड़ी एक मैकेनिक के पास जाती है तो वो कभी नहीं बोलता है कि ये गाड़ी खराब हो गई है, वो हमेशा एक पुर्जा देखता है। उसके लिए वो गाड़ी नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारे पुर्जों का एक जत्था है जिसमें टायर अलग है, इंजन अलग है, स्टेयरिंग अलग है। ठीक ऐसे ही एक अभिनेता होता है, एक कैरेक्टर में अगर आप ऐसे पार्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं कि इसका डायलेक्ट अलग है, आवाज अलग है, बॉडी पॉस्चर अलग है, बाल अलग है, सब कुछ अलग है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, तो एक एक्यूमुलेटिव वे में एक कैरेक्टर बन के तैयार होता है। दिस इज द बेस लाइन ऑफ दैट थिंग। तो अगर कोई भी इंसान इस टाइम एक्टर बनना चाहता है और हमारी आवाज सुन पाया है हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपने आसपास के लोगों में सवाल पूछने शुरू करिए। आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद शो में हम आगे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑडिशंस, विल टॉक अबाउट कंटेंट, विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 7.0 FM। फील गुड, फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए तो 8017810078 हमारा नंबर है, बहुत ही इजी, इस पर अपनी बात हम लोगों तक जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो का हम आगे लेकर चलेंगे। शो है वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान मिस्टर सत्यम, बात कर रहे हैं अभिनय की, बात कर रहे हैं अभिनेता की। आइए थोड़ा सा और आगे एक तरफ लेकर चलते हैं सत्यम, क्योंकि आप मुंबई रह चुके हैं, आप मुंबई कल्चर को अच्छे से समझते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई काम कैसे करता है, और मुझे ये जरूर बताइए कि मुंबई में काम कैसे ढूंढा जाता है।
1: जी जी जी, मुंबई का एक जो बेसिक मोटो है वो ये है कि वहाँ जाते ही सब बहुत इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो क्योंकि आपके दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, पर सबकी एक अपनी खुद की भी जर्नी है, सबको अपना खुद का भी नाम बनाना है, तो वहाँ पे समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सब भाग रहे होते हैं और सब अपने लिए भाग रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, इसलिए हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब भाग क्यों रहे हैं, सब एक मोशन में क्यों है, थोड़ा आराम से चीजें नहीं हो सकती क्या। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगा था, पर धीरे समझ में आता है कि नहीं, ये शहर ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, ये अगर ऐसे वर्क नहीं करेगा तो फिर कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा यहाँ का। तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आता है, एक साल लग के समझ आता है कि हाँ ये ऐसे ही वर्क करता है। दूसरा, काम मिलने का प्रोसेस जितना मुझे समझ में आया वो यही है कि चीजें अभी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऐसा लगा था कि कास्टिंग जब आ जाएगी, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ जाएंगे या कास्टिंग कंपनी आ जाएगी तो चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, पर नहीं, उससे इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, कहीं की जगह है कहीं की जगह नहीं है। तो अभी भी फिजिकली आपको जाना पड़ता है डोर डोर ऑफिस में, और ऑनलाइन भी आपको प्रोफाइल भेजनी होती है। यूजली एक आ जाता है कि हर चार हफ्ते में एक नया काम आता है, तो आप फिजिकली भी जाओ डोर डोर अपनी अपना शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा, ये मेरा लुक है, अगर प्लीज मेरे लिए काम होता बताइए। दूसरा, ऑनलाइन तरीका है ही भेजने का, तो अगर कुछ क्रैक हो गया उन दोनों तरीके से तो हो गया। तो चीजें सिस्टम से बना रखी हैं, पर स्टिल अभी भी थोड़ा इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी भी आपको वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है जाके। तो यही तरीका है।
0: जी, तो आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि कास्टिंग का अगर कोई तरीका है अभी हाल फिलहाल जितना आपने ऑब्जर्व किया है, काम कैसे ढूंढा जाता है?
1: ओके, जैसे जो बड़ी कास्टिंग, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ऑफिस हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बना रखा है कि आप वहाँ जाइए और इंट्रो दिए, इंट्रो वो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी काम उनके पास आएगा तो उस डाटा में गो थ्रू करते हैं, और अगर उसमें आपका प्रोफाइल उनको पसंद आया तो वो आपको ले लेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है, और इसमें ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं आते, आपको कॉल आते हैं। और दूसरा, जैसे मैं तरीका आपको बताया कि हर चार हफ्ते में नया काम कॉल आता ही है, नया काम आता ही है कास्टिंग वालों के पास, तो अगर आप हर हफ्ते हर ऑफिस में जा रहे हैं या ऑनलाइन जो भी कास्टिंग इंटर्न से आपकी बातचीत हो रही है उनके साथ कनेक्ट में रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ काम चल क्या रहा है, और आप ही को काम निकालना है। मतलब ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, पर ऐसे ही काम चल रहा है।
0: काम आपको निकालने का तरीका कोई फिक्स सिस्टमैटिक नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कैसे काम ढूंढ सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, हाउ यू गोना रीच आउट टू दैट पार्ट। कुछ लोग कंटेंट के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ लोग ऑडिशंस के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस के थ्रू काम ले रहे हैं, तो काम करने के बहुत सारे लोगों ने वे ढूंढ लिए हैं अपने, इट्स जस्ट कि आप कहां पर फिट इन हो पा रहे हो, दैट शुड बी द थिंग।
1: मुझे जो मेजर फर्क लगा, क्योंकि मैंने थिएटर की पढ़ाई भी की है, मैंने 3 साल इन्वेस्ट भी किया थिएटर में, मास्टर्स किया है, तो वहाँ पे हमने वर्ल्ड थिएटर के बारे में पढ़ा, हमने आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा और पेंटिंग के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें टाइम लगी है। आज से 100 साल पहले जो पेंटिंग बनती थी या वैन गॉग ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें उन्होंने काफी टाइम लिया था, और अभी का जो जमाना हो गया वो उसमें कट आ गए हैं, मतलब बहुत स्पीड हो गया है। जैसे ऐसे बोलते भी हैं कि कंटेंट में अगर तू डायलॉग के बीच में पॉज ले रहा है भाई तो उसको कट कर दे तो ये बस ऐसा बोला जाता है। तो ये एक मेजर फर्क है, टाइम का मेजर फर्क है, क्योंकि अगर लोगों की उंगली पे है आपका कॉन्टेंट, तो अगर आपने थोड़ा सा पॉज लिया और आपकी कुछ भी कह लो आपका उस फ्रेम में जो मिसॉन से उनको पसंद नहीं आया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपको हटा देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और थिएटर में एक सेटअप होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लोग अपने घर से निकल के जाते हैं नाटक देखने के लिए, और उस नाटक को बनाने में नाटक की आइडियोलॉजी को बनाने में टाइम लगा होता है। जैसे गिरीश कानार साहब के नाटक 10-10 साल लगे, 10-10 साल लेकर वो लिखते थे नाटकों को, उसके बाद भी लगता था कि इसमें भी थोड़ी आइडियोलॉजी की कमी है, तो वो एक टाइम का मुझे मेजर कमी लगती है। और क्या है, कंसिस्टेंसी एक गेम बन गया कॉन्टेंट क्रिएशन में, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रोज एक वीडियो आ जाए या दो दिन में एक वीडियो आ जाए, रेदर देन क्वालिटी पे। ये एक मेजर फर्क है जो कि समय का नीड भी है, तो कुछ गलत नहीं कह सकते इसमें, बस ये समय का कॉल है बस।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करना चाहूँ तो एक और प्रश्न है, बहुत सारे लोग क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी होना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे ढूंढते हो कहानियां, कैसे आप वो ढूंढते हो, फिगर आउट करते हो कि ये मुझे बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, कैसे होता है वो पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है, थोड़ा बताइए।
1: ओके, तो मैं भी खुद ही शुरू कर रहा हूँ तो मेरे खुद ही अभी कम फॉलोअर्स हैं काफी, पर जैसे बहुत सारे हर फील्ड में पायनियर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं आपको, जिन्हें टॉर्च बेयरर्स कहते हैं। तो जिन्होंने जैसे अगर हिचकॉक ने जो टेक्निक बनाई उसके बाद ही आगे के फिल्म मेकर नॉर फिल्म में नॉर जॉनर में कुछ ना कुछ कर पाए। जैसे अगर मिर्च का टिकम नाटक कालिदास ने लिखा, तो उसके बाद जो मिडिवल एरा में जो लोग नाटक लिख पाए उन्होंने वैसा नाटक लिखा, शेक्सपियर ने जैसा। तो उसी सेंस में जिन लोगों ने इंस्टाग्राम के शुरुआती दिनों में अच्छा किया, तो उन्हीं को मैं देखता हूँ, उन्हीं को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है। और तन्मय भट्ट का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप सबसे पहले अपना नीश ढूंढें, आपको क्या करना अच्छा लगता है जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता, और उसके बाद जो उस नीश में जो सबसे टॉप क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है, तो जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को देखता हूँ, बस उनको देखता रहता हूँ। और उनके मतलब वो कैप्शन क्या लिख रहे हैं, वो फ्रेम कैसे बना रहे हैं, वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी कैसी है। और लकीली मेरे भाई भी उनमें से एक, तो उनको फॉलो करता रहता हूँ, उनका काम मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी देखता रहता हूँ मैं काफी टाइम से, सागर भाई का काम भी मैं देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो यही है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बस।
0: आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस भाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उनका नाम है ऋषभ शुक्ला, जिनका हम इंटरव्यू यहाँ पर कर चुके हैं दो बार, और बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छे इंसान हैं, बहुत सुंदर कंटेंट वो बनाते हैं, और डेफिनेटली मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स में आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद शहर से सबसे पहले किसी इंसान ने अगर कंटेंट बनाने का काम शुरू किया था, जिसने हम सबको भी आग दी और केवल आग नहीं मतलब सपोर्ट भी दिया, वो ऋषभ शुक्ला एक नाम मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। तो सत्यम के भाई हैं ऋषभ शुक्ला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सत्यम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सत्यम। मतलब मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं, कोई वैसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: अभी भी फिलहाल ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट।
1: थैंक यू सो मच भैया आपका, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू, एंड आई जेन्युइनली विश कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ये बहुत स्मूथ रहे और बहुत अच्छा रहे। तो जैसे आपने बाकी जगहों पर एक्सेल किया है, थिएटर में और मास्टर्स किया है, पढ़ाई किया है, स्टेज प्लेस किए हैं, ठीक वैसे ही आप कंटेंट को भी अपने आगे लेकर के जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
1: थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
0: ऑलराइट दोस्तों, अब वक्त है अपने शो का यहाँ पर कंक्लूड करने का। सत्यम से आदमी ने बात करी, उन्होंने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताई। हर एक अभिनेता का, हर एक इंसान का अपना एक अनुभव होता है जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के बाद उन्हें टेक्निकलिटी समझ में आती है, तब जाकर के अपना एक रास्ता बनता है। सत्यम भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी लोगों ने बताने की कोशिश करी, कि आपको अपना खुद का रास्ता एक ढूंढना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, देयर इज नो एसओपी फॉर दैट पार्ट कि ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस आर्ट इज ऑल अबाउट फ्री फ्लोइंग, जितना आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, जैसे आप तरीके ढूंढ सकते हैं वो आप जरूर ढूंढेंगे। फिलहाल अपने शो को यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा, फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हींग के बारे में। भारत में हींग की खेती की पहल की अगर हम बात करें तो हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड बायोलॉजी यानी CHAB में विशेष अनुसंधान किया जा रहा है। यहां बीजों से तैयार पौधों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया गया है और अलग अलग स्थानों पर परीक्षण चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे और शुष्क क्षेत्रों को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। ये प्रयास देश में पहली बार हो रहा है किसान भाइयों, और इसके सफल होने पर न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। लेकिन अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं हींग का परिचय बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है। हींग का वैज्ञानिक

एक नाम है फेरियोल असाफोरिटा और ये एपीएसी कुल का बहुवर्षीय पौधा है। ये मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी जड़ों से निकलने वाला दूध या पदार्थ सुखाकर हींग बनाई जाती है और भारतीय रसोई में हींग का उपयोग मसाले के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात आप जानते ही हैं, खासकर दाल और सब्जियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का व्यापक जिक्र मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, हींग की खेती के लिए बीज और पौध तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है ये भी सुन लीजिए। हींग के जो बीज होते हैं ना, वो हल्के भूरे रंग के और चपटे होते हैं, लेकिन इनमें निष्क्रियता होने के कारण ये आसानी से अंकुरित नहीं होते। इसलिए बीजों को अंकुरित करने के लिए विशेष उपचार की जरूरत होती है, जैसे कि ठंडा उपचार। बीजों को आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ताकि प्राकृतिक ठंड के प्रभाव से उनकी निष्क्रियता टूट सके। इसके अलावा हींग की खेती में प्रवर्धन और प्रजनन, ये सब क्या होता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: किसान भाइयों, आपको मालूम ही है कि हींग एक बहुवर्षीय पौधा है जिसमें फूल आने में लगभग 5 साल का समय लग जाता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और एक ही पौधे में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। कीटों के माध्यम से इसका परागण होता है। मई जून के दौरान इस पर फूल आते हैं और अगस्त तक बीज तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस पौधे से बीज लिया जाए उससे हींग का रस नहीं निकालना चाहिए। अब मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ खेत में बुवाई और खेत की तैयारी के बारे में। हींग की खेती के लिए ढलानदार और अच्छी जल निकासी वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ धूप सीधी पड़ती है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सीधे बीज बोने के लिए लगभग 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर पहले नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए जाएं तो बीज की मात्रा कम हो सकती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है 0.75 से 1 मीटर रखनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी ये खेती अच्छी हो सकती है और आपको इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हींग की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता के बारे में आपसे बातें करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

सबसे उपयुक्त होता है। ये पौधा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान और 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के अधिकतम तापमान को सहन कर सकता है। इसके लिए अच्छी धूप जरूरी होती है। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, इसके लिए सबसे बेहतर रहती है। लेकिन जल भराव की स्थिति इस फसल के लिए बेहद हानिकारक होती है। हींग की खेती के लिए सिंचाई और उसकी देखभाल की जब बात आती है तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। देखिए किसान भाइयों, हींग की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। रोपाई के बाद शुरुआती 1 महीने तक 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी या जल भराव से पौधे खराब हो सकते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई करना भी ज़रूरी है ताकि खरपतवार भी कंट्रोल रहे। आगे आपसे बात करूंगा हींग के उत्पादन के बारे में और उसके संग्रह के बारे में। सुनते रहिए फहीम के साथ अन्नदाता।

किसान भाइयों, हींग के बारे में बात चल रही है और मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा इसका उत्पादन और संग्रह के बारे में, लेकिन उत्पादन और संग्रह की बात करूंगा बाद में। फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है हींग की खेती के लिए लागत और मुनाफा। हींग की कीमत तो गुणवत्ता के अनुसार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो लगभग 5,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। एक पौधे से करीब 20-25 ग्राम हींग प्राप्त होती है। अगर एक हेक्टेयर में खेती की जाए तो 5 साल के बाद लगभग 9 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है। हींग की खेती भारत में एक उभरता हुआ और लाभकारी विकल्प बन सकती है। सही जलवायु और तकनीक के साथ आप लोग इस फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर सरकार और अनुसंधान संस्थानों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो आने वाले समय में भारत हींग उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, हींग की बात चल रही है तो मैंने आपसे वादा किया था बताऊंगा इसके उत्पादन के बारे में और संग्रह के बारे में। हींग के पौधे से उत्पादन लेने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। फूल आने से पहले पौधे की जड़ में चीरा लगाकर दूध या राल निकाला जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक राल निकलना बंद ना हो जाए। इस राल को सुखा कर हींग बनाई जाती है और ये आंसू, मांस और पेस्ट जैसे अलग अलग रूपों में बाजार में उपलब्ध होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देख कर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

मुझे बता आ जा रे आ जरा आ।

0: तेरे दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान, उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का, कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता, परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का। जी हाँ, जहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक, और वो भी फुल ऑन तड़का लगाकर। जी हाँ, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी और मस्ती भी। और मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। जी हाँ, मैं हॉट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो सच में बहुत ज्यादा हॉट है, और बहुत ज्यादा गर्मियाँ जिसकी वजह से बढ़ गई हैं। अब सच बताइएगा कि आजकल घर से बाहर निकलते ही लगता है कि जैसे किसी ने डायरेक्टली ओवन में डाल दिया हो। सुबह 9 बजे से ही धूप अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देती है, और साथ ही आफ्टरनून तक रोड्स ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लो कि कोई जला हुआ तवा रख दिया हो गरम गरम, और हमें बोला हो कि उस पे चल कर के जाओ भाई। कूलर और एसी भी कभी कभी सरेंडर कर देते हैं इस टेम्परेचर के अंदर। और इसी बीच अब शुरू होने वाला है एक सबसे ज़रूरी चीज़, जी हाँ, जिसे कहते हैं नौ तपा। जी हाँ, ये आपने सुना होगा नाम बड़े लोगों के मुंह से कि नौ तपा शुरू हो जाता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, और 25 मई से ये शुरू होने वाला है, साथ ही 2 जून तक रहेगा। नौ तपा यानी कि ये 9 दिन, वो टाइम जिसे साल की सबसे ज़्यादा गर्मी वाला टाइम, गर्म दिन कहा जाता है, इसे माना जाता है। कहते हैं कि 9 दिनों में सूरज की गर्मी अपने पीक पर होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नौ तपा होता क्या है, और हर साल इतना इसका जिक्र क्यों होता है? क्या सिर्फ पुरानी मान्यता है इसके पीछे, या फिर कोई साइंस भी है? और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं इस स्पेशल एपिसोड में। लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ये हॉट टॉपिक। जी हाँ, हॉट टॉपिक के साथ ही ये गर्मी जो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। ये वेदर सही नहीं है। अगर हम पीक टाइम, अगर दोपहर के टाइम में अगर हम बाहर जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि एक डेंजरस साइन है। तो इसलिए उससे बचाव के लिए हम क्या क्या चीज़ें करें जिससे हमारी बॉडी कूल रहे और लाइट रहे, तो क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, सिर्फ सीरियस बातें ही नहीं होने वाली है, हम हमारी पुराने गर्मियों की यादों को भी ताज़ा करने वाले हैं। जी हाँ, कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जो कि आपको नॉस्टैल्जिया याद दिला देगा, साथ ही और प्यारे प्यारे गाने भी लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते जब आती हूँ आपके पास ट्रेंडिंग तड़का लेकर, तो साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक के मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी। तो चलिए, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, क्योंकि आगे होने वाली है बहुत ही हॉट बातें, तो इसलिए इस ट्रेंडिंग तड़का के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है तड़के के साथ और साथ ही हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। और जी हाँ, इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है वो है गर्मियाँ, हीट स्ट्रोक। जी हाँ, इस टाइम पे हर किसी के मुंह से ना सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, यार गर्मी बहुत हो रही है, धूप में जैसी जाओ वैसे कपड़े एकदम पसीने से गीले हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अभी हम इसके ऊपर पानी डालकर निकले हो, सोचो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों चलिए, मैंने आपको बताया था इससे ब्रेक पर जाने से पहले कि हम नौतपा की बात कर रहे थे, तो चलिए वक्त है जानने का कि नौतपा का असली राज होता क्या है, है क्या आखिर ये नौतपा होता क्या है और हर साल इसके आते ही लोग इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में अगर इसे समझे तो नौतपा दो शब्दों को मिलाकर बना है, जो कि है नौ यानी कि 9 नंबर और तपा यानी कि गर्मी। तो मतलब कि वो 9 दिन जब गर्मी अपने पीक पर होती है, इस साल ये गर्मी 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाली है। पुराने टाइम में लोग मानते थे कि ये कहावत चलती आ रही थी कि सूरज जब रोहिणी नक्षत्र में एंटर करता है तब नौतपा की शुरुआत होती है। एस्ट्रोलॉजी में इसे बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, कहते हैं कि अगर 9 दिनों में अच्छी गर्मी पड़े तो आगे चलकर मॉनसून भी बहुत अच्छा होता है। फार्मर्स भी पहले नौतपा को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, लेकिन सिर्फ मान्यता ही नहीं इसके पीछे साइंस भी है। मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में अर्थ के इस पार्ट पर सन रेज ज्यादा डायरेक्ट पड़ने लगती है, दिन बड़े हो जाते हैं और हवा एकदम सूखी हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होने लगता है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में हीट वेव जैसी कंडीशन बनने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टरनून में जब हम रोड पर जाते हैं तो गर्म हवा हमें फील होती है, वो हवा जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, कार की स्टेयरिंग तक जलने लगती है और भी ओवरहीट की वार्निंग देने लगता है और ये सब एक्सट्रीम हीट की वजह से होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले के लोग नौतपा के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन तक चेंज कर देते थे, दोपहर में बाहर जाना अवॉइड करते थे, मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे और घर को नेचुरली ठंडा रखने की कोशिश करते थे, मतलब कि बिना एसी के भी स्मार्ट तरीकों से हीट को हैंडल करते थे। लेकिन दोस्तों आज हम क्या करते हैं, बाहर 44 टेम्परेचर डिग्री है और हम फिर भी ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनकर आफ्टरनून में रील्स बनाने के लिए निकल जाते हैं, इसलिए नौतपा को लाइटली लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ बहुत गर्मी है वाली बात नहीं होती बल्कि हेल्थ के लिए भी ये वार्निंग साइन होता है। अगले सेगमेंट पे इस पर भी बात करने वाले हैं कि ये हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करता है, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और एक बार फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, हर जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है और इसीलिए ये टॉपिक भी थोड़ा हॉट है। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, कि हम गर्मियां जो इतनी पड़ रही है उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, नौतपा क्या है जो कि शुरू होने वाला है अभी 25 मई से ही, तो इसलिए उससे कैसे सावधानियां बरतनी है, साथ ही अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने घर वालों का ध्यान कैसे रखना है, अपने दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का, तो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें ये जानने की। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि नौतपा होता क्या है और इस टाइम गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो डेंजरस हीट हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, इसका क्या करें। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और बॉडी हमेशा उसे बैलेंस करने की कोशिश भी करती है। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी स्वेटिंग को स्टार्ट कर देती है ताकि हीट बाहर निकल सके, लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू वहां से हो जाती है। जी हाँ, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी में पानी और मिनरल्स की कमी। इसमें इंसान को वीकनेस होती है, हेडेक होने लगती है, चक्कर आते हैं, ड्राई लिप्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा थकान फील होने लगती है। कई बार लोग इसे नॉर्मल टायर्डनेस की तरह समझकर इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आता है हीट एग्जॉशन और फिर हीट स्ट्रोक, जो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पर्सन जो कि एक इंसान है वो बेहोश तक हो सकता है। इस सिचुएशन में इमीडिएट हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी होती है और सिर्फ एल्डरली पीपल ही नहीं बल्कि इसमें बच्चे, आउटडोर वर्कर्स और यंग लोग इससे भी अफेक्ट हो सकते हैं। जो लोग दिन भर बाहर धूप में काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉयज, ट्रैफिक पुलिस, लेबर वर्कर्स या फिर उनकी तरह ही और भी लोग, उनके लिए वेदर और भी ज्यादा टफ होता है। आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, वो है एसी से डायरेक्ट धूप में जाना। जो यहाँ एकदम ठंडी हवा से सडनली एक्सट्रीम हीट में जाने पर बॉडी को शॉक फील हो जाता है, इसी वजह से आपको हेडेक होता है और आपको वीकनेस से फील होने लगती है। और हाँ, ये सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि ये हमारी स्किन को और आईज को भी अफेक्ट करती है। जी हाँ, सनबर्न, टैनिंग, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन बहुत कॉमन हो जाता है। इसीलिए इस गर्मी में सनग्लासेस और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कई लोग गर्मी में भी पानी कम पीते हैं क्योंकि उन्हें प्यास फील नहीं होती, लेकिन बॉडी के लिए रेगुलर हाइड्रेशन चाहिए होती है इस गर्मी में। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के नाम पर नहीं चलेगा क्योंकि वो कभी कभी डिहाइड्रेशन बढ़ा देती है। तो दोस्तों, गर्मी को लाइटली लेना बिल्कुल सही नहीं है, बॉडी हमें सिग्नल देती है, बस हमें उसे पहचानना है और उसे समझकर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, बात हो रही है जब आज गर्मी की, तो चलिए अब तक हमने जाना कि कैसे नौतपा क्या होता है और कैसे डेंजरस हीट हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, पर अब टाइम है कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स के जानने का। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ गर्मी को कोसने से काम नहीं चलेगा, स्मार्टली बचना भी जरूरी है। सबसे पहला और सिंपल रूल कि हाइड्रेट रहिए, सिर्फ तब पानी मत पीजिए जब आपको प्यास लगे, थोड़ी थोड़ी देर में वाटर सिप्स करते रहिए। और आप बाहर ज्यादा रहते हैं तो ORS, नींबू पानी, छाछ, कोकोनट वाटर या फिर आम पन्ना जैसी चीजें बॉडी को कूल और हाइड्रेट रख सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आफ्टरनून सन अवॉइड करिए। जी हाँ, स्पेशली 12 बजे से 4 बजे तक की जो धूप होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो इस टाइम पर बाहर निकलने से बचना चाहिए। और प्लीज ब्लैक या फिर डार्क टाइट कपड़े मत पहनकर निकलिए, कॉटन और लाइट कपड़े पहनिए जो कि इस गर्मी में सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब कम करते हैं। और कैप, अम्ब्रेला और सनग्लासेस और सनस्क्रीन ये जरूर अपने साथ रखिए, इसका जरूर यूज करिए। और अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की। सबसे पहले तो खाली पेट बाहर मत निकलिए। कई लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और सीधा धूप में चले जाते हैं, जिससे वीकनेस और डिहाइड्रेशन फास्ट हो जाता है। और दूसरी चीज, जब आप कभी भी कार को पार्क करते हैं तो उसमें कभी भी बच्चे को या फिर किसी पेट को अकेला मत छोड़िए। जी हाँ, गर्मी में कार का टेम्परेचर बहुत जल्दी डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अंदर बैठे हुए इंसान पर रिस्क की बात हो सकती है। और एक और कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना। जी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, बट एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स बॉडी को और ज्यादा डिहाइड्रेट कर देती है, क्योंकि वो शुगर के लेवल को बढ़ाती है। इसीलिए नेचुरल ड्रिंक बेटर ऑप्शन होता है। मोबाइल और गैजेट्स भी इस हीट में ओवरहीट हो सकते हैं, तो डायरेक्टली सनलाइट में फोन यूज मत करिए, उसे अवॉइड करिए जब तक कोई जरूरी काम ना हो। और हाँ, सोशल मीडिया के चक्कर में धूप में रील्स बनाना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। उस जो पीक टाइम है 12 बजे से 4 बजे तक, उसमें बाहर धूप में निकल करके रील्स मत बनाइए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, स्किन रेड हो जाए या फिर कंफ्यूजन हो या स्वेटिंग सडनली बंद हो जाए, तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये हीट स्ट्रोक के साइन हो सकते हैं और इमिडिएटली डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए इसमें। तो दोस्तों, थोड़ी सी केयर और स्मार्ट हैबिट्स आपको इस डेंजरस हीट से सेफ कर सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। तो दोस्तों, गर्मी से बचाव के रूल्स तो हमने समझ लिए हैं, जान लिए हैं, तो अब चलिए एक और बात है जो आपसे करनी है, वो कुछ स्मार्ट और देसी समर सर्वाइवल हैक्स की। जी हाँ, जो बचपन में हमारे घरों में यूज होते आए हैं, मतलब दादी नानी अप्रूव ट्रिक्स। जी हाँ, सबसे पहला ट्रिक है बॉडी को नेचुरली कूल रखने के लिए। इसके लिए एक्सपेंसिव ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल देसी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि आम पन्ना, छाछ, सत्तू का ड्रिंक, बेल्स शरबत और नींबू पानी। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं लगते हैं, बल्कि बॉडी को एनर्जी और हाइड्रेशन भी देते हैं। और याद है वो मिट्टी के घड़े का पानी, दोस्तों उसकी भी बात अलग थी, उसका टेस्ट ही अलग होता था, क्योंकि उसके अंदर ना मिट्टी की ना हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। पहले हर घर में मटका होता था और पानी नेचुरली उससे ठंडा रहता था। आज फ्रिज है, लेकिन मटके वाली पानी की बात कुछ और ही थी। एक और यूजफुल ट्रिक है कि घर को कूल रखने के लिए कर्टेंस और विंडो का स्मार्ट यूज करिए। दिन में डायरेक्ट सनलाइट अंदर ना आए इसलिए कर्टेंस बंद रखिए और इवनिंग में फ्रेश हवा आने दीजिए। अब बात करते हैं गर्मी में बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करने की। जो यहाँ ये सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, वाटर रिच फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मस्क मेलन और मैंगो लिमिटेड क्वांटिटी में बॉडी को फ्रेश फील कराते हैं। लेकिन रोड साइड कट फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए, स्पेशली इस वेदर में। और एक और इम्पोर्टेंट हैक, अपनी स्लीप और रूटीन पर भी ध्यान रखिए। जी हाँ, लेट नाइट जगना और दिन भर एसी में रहना बॉडी को लेजी और टायर्ड बना सकता है। थोड़ा सा मॉर्निंग में सनलाइट लीजिए, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज को करना भी बहुत जरूरी है, वो भी करिए। आजकल ना एक फनी प्रॉब्लम भी आ गई है, वो है फोन ओवर हीटिंग। जी हाँ, डायरेक्टली सनलाइट में अगर हम मोबाइल का यूज करते हैं तो फोन जल्दी हीट होने लगता है, जिससे आपका फोन भी आपको बोलेगा बस करो भाई और कितना चलाना है। इसलिए गैजेट्स को भी थोड़ा हीट से बचाना जरूरी है। और हाँ, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, इनका भी ध्यान रखना है, इस हीट में इनकी भी हेल्प करनी है। और साथ ही अपने छत पर और अपने घर के बाहर भी पानी रखना है इनके लिए, और साथ बोल में आप इसके लिए पानी रख सकते हैं इनके लिए। छोटा सा काम, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा और साथ ही इनकी भी हेल्प हो जाएगी, इनकी भी लाइफ सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, गर्मी को कम्प्लीटली कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट हैक्स और थोड़ी सी केयर से इसे जरूर अच्छा बना सकते हैं, साथ ही हम इसे सेफ्टी भी रख सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा ना टेम्परेचर कम करने का वक्त है, जी हाँ, और यादों का कूलर चलाने का, जी हाँ, क्योंकि अब वक्त है हमारी वाली गर्मियों को याद करने का। सच बताइएगा, पहले समर वेकेशन का एक्साइटमेंट ही अलग होता था ना। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते थे, बस एक ही सवाल होता था कि नानी के घर कब जाना है। और फिर जो पैकिंग स्टार्ट होती थी और ट्रेन जर्नी, स्टील का टिफिन, विंडो सीट और रास्ते भर चिप्स, मैंगो ड्रिंक्स और फैमिली गॉसिप्स। उस टाइम गर्मियां सिर्फ हीट ही नहीं होती थी बल्कि फुल ऑन एडवेंचर होती थी। सुबह जल्दी उठकर गली में क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन या फिर पकड़म पकड़ाई खेलना, और मम्मी की एक ही वार्निंग, 12 बजे के बाद बाहर मत जाना। लेकिन सुनता कौन था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चलती थी ना। और याद है वो ऑरेंज वाली आइसक्रीम कैंडी या फिर बर्फ का गोला, जिसमें इतने कलर होते थे कि समझ ही नहीं आता था कि कौन सा फ्लेवर ले।

साथ ही मम्मी का स्पेशल नींबू पानी। भाई साहब बस वही असली समर वाइब्स थी। टीवी पर भी समर स्पेशल फील होता था क्योंकि मॉर्निंग में कार्टून्स, आफ्टरनून में बॉलीवुड मूवीज और संडे को शक्तिमान या फिर कोई ओल्ड सीरियल्स। मोबाइल फोन नहीं थे तो इसलिए बोर्डम का सॉल्यूशन था कजन्स के साथ मस्ती करना। आजकल वेकेशंस का मतलब ज्यादातर हो गया है स्क्रीन टाइम, रील्स, नेटफ्लिक्स हो गया है। बच्चे आउटडोर गेम्स से ज्यादा मोबाइल फोन में बिजी हो जाते हैं और पहले मेमोरीज बनती थी, अब मोस्टली स्टोरीज अपलोड होती है। लेकिन सच कहूं, पुरानी गर्मियों में एक सिंप्लिसिटी थी, एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था, जो अगर आज भी याद आता है ना तो फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको कौन सी वाली गर्मी पसंद है, अपने टाइम की या अगर आप आज की जनरेशन के बच्चों को देखते हैं उनके टाइम की, हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 पर मैसेज करिए, कॉल करिए और हमें जरूर बताइए कौन सी गर्मी है आपकी फेवरेट। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और दोस्तों वेलकम टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ ट्रेंडिंग तड़का। जी हां दोस्तों, नॉट अप स्पेशल, ये गर्मियों का स्पेशल हॉट टॉपिक के साथ ये ट्रेंडिंग तड़का आपके पास आया था और अब टाइम है एक फन कंपैरिजन का। जी हाँ, तब और अब वाली समर का। जी दोस्तों, मतलब कि पहले की गर्मियों और आज की गर्मियों में आखिर कितना चेंज आ गया है। पहले समर वेकेशन का मतलब होता था मम्मी बाहर खेलने जा रहे हैं और अब वाईफाई चल रहा है ना। सीरियसली, पहले बच्चे पूरा दिन आउटडोर गेम्स खेलते थे जैसे कि क्रिकेट, स्टापो, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक, और घर तब लौटते थे जब मम्मी बालकनी से नाम लेकर चिल्लाती थी। अब गर्मियों की छुट्टियों में मोस्टली मोबाइल गेम्स, रील्स या फिर बिंज वॉचिंग जगह ले ली है। पहले 10 बॉडी का होता था, अब ज्यादा 10 फोन स्क्रीन का हो गया है। पहले लोग मटके का पानी पीते थे और उसमें एक अलग फ्रेशनेस होती थी, आज फ्रिज का पानी है और कोल्ड ड्रिंक्स ने उसकी जगह ले ली है। पहले घर में कूलर एक रॉयल फीलिंग होती थी, जो ऐसा लगता था कि अगर घर में कूलर है तो हम ही सबसे रॉयल है। और आज जिस घर में एसी होता है वो कॉलोनी का वीआईपी हाउस माना जाता है। अब एसी कॉमन हो गया है लेकिन बिजली का बिल देखकर सबको असली गर्मी फील हो जाती है। और वेकेशन भी कितने चेंज हो गए हैं। पहले नानी के घर जाना एक एनुअल फेस्टिवल जैसा होता था, कजन्स के साथ मस्ती, टेरेस पर गॉसिप करना, लूडो खेलना, कार्ड्स और लेट नाइट स्टोरीज, वही असली सोशल नेटवर्किंग थी। अब फैमिली ट्रिप्स में भी लोग एक दूसरे के काम और फोन से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एक और फनी डिफरेंस है कि पहले समर्स होमवर्क लास्ट वीक में पैनिक मोड में कम्प्लीट होता था, जैसे कि चार्ट पेपर्स, ग्लिटर पेंस और कवर लगाना, फुल ऑन ड्रामा। अब ऑनलाइन असाइनमेंट्स और पीडीएफ उस फन को भी डिजिटल बना दिया है। लेकिन एक चीज जो तब भी सेम थी और आज भी सेम है वो है गर्मी की कंप्लेंट। हर जनरेशन ये जरूर बोलती है, हमारे टाइम में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। और ऑनेस्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बात काफी हद तक सच भी लगती है। तो दोस्तों, टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, समर स्टाइल भी चेंज हो गया है, लेकिन गर्मियों की यादें और उनका फील आज भी स्पेशल ही लगता है। इसी के साथ हमारा ट्रेंडिंग तड़का एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और वक्त हो गया है मेरा आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी कुछ और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ और इस गर्मी में अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, मिलूंगी फिर से एक और नए टॉपिक के साथ एक नए हफ्ते में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और वक्त है प्रोग्राम सुरक्षा संवाद का। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सुरक्षा पर फोकस करता है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो फिर किसी भी शहर में, कितने भी बड़े घर में, कितनी भी अच्छी जगह में आप रहें, आप खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन सुरक्षित रहना अगर हमारा मेन मुद्दा है तो फिर सुरक्षित रह कैसे सकते हैं? कभी साइबर क्राइम का अटैक हो जाता है तो कभी कोई और अटैक हो जाता है, या फिर किसी और तरीके की असुरक्षा महसूस होती है। इसीलिए सुरक्षा संवाद हम आपके लिए खास तौर पर से लाते हैं, जहां पर हम पुलिस अधिकारियों से करते हैं बात। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं, उन्हें सिर्फ एक विभाग का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें अनगिनत विभागों में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। और हरियाणा के ही नहीं, मैं कहूंगी देश के एक ऐसे चर्चित पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने आम जन के लिए बहुत से कार्य करे हैं। हमारे साथ हैं राजेश चेची जी, जो कि DSP हैं रेलवेज में और IB के साथ साथ क्राइम और बहुत सारे विभागों में देख चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी कार्यरत रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत शुक्रिया मैम, बहुत
2: रेडियो मानव रचना
3: बहुत धन्यवाद जी।
2: और समाज के बहुत सारे कार्यों के साथ ये जुड़े रहे हैं, इसलिए रेडियो मानव रचना के साथ भी इनका रिश्ता बहुत पुराना है।
3: बिल्कुल जी।
2: तो सर, मैं क्राइम के बारे में आज आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि नाम ही सुरक्षा संवाद है, और जब हम क्राइम की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के क्राइम होते हैं। आज के युवाओं से जब मैं बात करती हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे एक इम्पॉर्टेंट साधन होता है जानकारी का, जिसमें ऑथेंटिक जानकारी आती है। इंटरनेट पे तो जानकारियों का पिटारा है पर सब सही नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि मैडम हम कैसे पढ़ें, शुरू के 3 पेजेस में इतना क्राइम और इतना नेगेटिव जो कहानियां होती हैं या खबरें होती हैं कि हमारा मन ही नहीं करता अखबार पढ़ने का। और ये रीजंस भी है कि बहुत सारे लोगों ने अखबार अपने घर से हटा दिए हैं, लगवाए ही नहीं हुए हैं। वो कहते हैं अगर हमें जरूरत होगी तो हम ई पेपर पढ़ लेंगे। तो क्राइम के बारे में सर जब हम बात कर रहे हैं आज, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्राइम रेट वाकई बढ़ा है या फिर ये सिर्फ रील्स और वीडियोस में दिखाया जाने वाला एक भ्रम है।
3: तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत वाजिब और सही क्वेश्चन है जी। जब से इस पृथ्वी पर मानव संस्कृति आई है, जब से हमने कबीलों में रहना शुरू किया था, तब से अपराध तो हमेशा से रहा है
2: जी,
3: परंतु उसका मायना चेंज होता रहा है। आप जब मेरी अभी 32 साल की नौकरी होगी तो आज से 10 साल पहले साइबर क्राइम कोई नहीं समझता था कि साइबर क्राइम भी होगा कोई इस तरह का, तो चेंज होता रहता है। जहाँ तक अपराध बढ़ने और घटने की प्रश्न है, क्योंकि मैं पुलिस हेडक्वार्टर पे रह के आया हूँ, अभी 1 साल पहले वापस आया हूँ यहाँ पे, तो पुलिस हेडक्वार्टर पे क्योंकि पूरे हरियाणा का क्राइम डाटा एनालाइज होता है वहाँ पे, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो 2023 से कंपैरिजन करो तो 24 में क्राइम घटा था हर हेड का, 2024 से कंपैरिजन करो तो 25 में घटा था हर हेड का। मतलब इवन कुछ भी, जब मोलेस्टेशन, पॉक्सो, मतलब इवन व्हीकल थेफ्ट भी अगर आप देखोगे तो ड्रास्टिक डाउन है हमारा हरियाणा का।
2: अच्छा, कम हुआ
3: है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि उधर डेटा है, आप दूसरे क्राइम को इधर उधर खा सकते हो, पर जैसे व्हीकल थेफ्ट है, अब मेरा मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार या ट्रक चोरी हो गया तो मैंने इंश्योरेंस से लेना है, मैं FIR दर्ज करवा के ही मानूंगा, तो उसको आप वर्किंग नहीं कर सकते। तो वो अगर कंपेरिजन किया जाए तो सारा क्राइम हमारा डाउन है, पर अब क्योंकि ये सोशल मीडिया ज्यादा हर एक आदमी के हाथ में फोन है और थोड़ा सा सर्कुलेट ज्यादा होता है तो लगता है ऐसा है कि क्राइम बढ़ रहा है,
2: जी
3: पर ऐसा नहीं है,
2: ऐसा नहीं है, क्राइम रेट कम हुआ है, ये राजेश जी का कहना है, क्योंकि डेटा फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं हम। और खुद जब पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि डेटा ये दर्शा रहा है कि क्राइम कम हुआ है, तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हम 24 घंटे जब हम एल्गोरिथम समझिए सोशल मीडिया का, कि जब हम देखते हैं एक न्यूज़ या एक रील तो वही आनी शुरू हो जाती है और हमें लगता है दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्राइम हो रहा है,
3: सर्कुलेट ज़्यादा होता है
2: जी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हम NCR में रह रहे हैं दिल्ली के बिल्कुल साथ, और अब फरीदाबाद में काफी तरक्की भी हो चुकी है, मेट्रो भी है, बहुत सारे साधन और भी हैं, एक्सप्रेसवेज निकल आए हैं, सो यहाँ पर किस तरीके के क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं? साइबर क्राइम को थोड़ा सा साइड पे रखेंगे क्योंकि उसकी अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो वो आज की तारीख में छोटा बड़ा कुछ रिपोर्ट हुआ कुछ नहीं हुआ काफी होगा।
3: जी जी जी, मेन क्राइम, जैसे क्राइम दो तरह का होता है जी,
2: जी।
3: एक का बॉडी क्राइम अगेंस्ट बॉडी और एक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्राइम में फिर सब तरह का होता है, जैसे कोई थेफ्ट होगी, स्नैचिंग होगी, आपकी रोबरी होगी, डकैती होगी, जिसमें पैसा गया या कोई सामान गया तो वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और जिसमें ह्यूमन बॉडी का नुकसान हो गया, चोट मार दी, इंजरी होगी, कुछ हो गया, रेप हो गया, वो ह्यूमन मतलब क्राइम अगेंस्ट बॉडी है। उसमें भी फिर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो उसको बाइफर्केट कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई फरीदाबाद के लिए आप पर्टिकुलर ये कोई ऐसा नहीं कर सकते आइडेंटिफाई कि ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में है या बहुत ज़्यादा हो रही है। सबका लगभग बराबर सा ही रहता है। जैसे व्हीकल थेफ्ट का है तो जो एक फिक्स ही परसेंटेज है, रोज के 3-4 व्हीकल का एवरेज आती है यहाँ से
2: जी।
3: और इसी तरह से बर्गलरी का है। अब लोग जो जैसे सेक्टर्स में रहते हैं घरों में, बहुत पुलिस अवेयरनेस फैलाती है कि भाई घर के बाहर ताला ना लगाओ। आज कंसील्ड लॉक्स आते हैं आजकल, आप जा रहे हो 2-3-4 दिन के लिए बाहर तो किसी आदमी की ड्यूटी लगा के जाओ कि आपके न्यूज़पेपर वहां से उठा ले, ताला जो लॉक है वो बाहर नहीं लटका हो, एकदम कंसील्ड हो। दूसरा थोड़ा सफाई का है कि पत्ते वत्ते पेड़ों के पड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इन्विटेशन है कि जो क्रिमिनल्स हैं जो घूम रहे हैं वो देख रहे हैं भाई 2-4 दिन से यहाँ पे नहीं है तो कम्फर्टेबली आप एंट्री कर जाओ इसमें
2: जी।
3: तो इस तरह की छोटी छोटी अवेयर के पड़ोसियों के थोड़ा तालमेल में रहें करके भेजते हैं। व्हीकल थेफ्ट का है जैसे, अब क्यों डाउन आया, क्यों बहुत अवेयरनेस फैलाई है कि भाई लॉक लगाओ, स्टीयरिंग लॉक लगाओ,
2: टायर्स पे लोग लॉक लगाते हैं,
3: टू व्हीलर्स पे लॉक लगाओ, खड़े करो विजिबल जगह पे, या अंदर हो सकता है तो अंदर करो, घर में स्पेस है तो। तो उससे स्टिल्ट पार्किंग का जब से जमाना आया तो व्हीकल्स अंदर हो गए। और एक आपको शायद पता होगा, 2006-07 के बाद से 4-व्हीलर्स में सभी में वो कंप्यूटर वाली चाबी है, वैसे नॉर्मल चाबी नहीं होती
2: जी जी।
3: तो वो कंप्यूटर का जो ECM है वो आपकी चाबी का कोड रीड करता है तो ही गाड़ी स्टार्ट होती है। पहले सिर्फ वो मैनुअल स्टार्ट कर लेते थे, वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के क्राइम कम हुआ है
2: जी जी। क्राइम सर मुझे लगता है एक चीज से और भी थोड़ा कम हुआ है, CCTV कैमरास, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
3: बिल्कुल बिल्कुल, उस CCTV कैमरा से क्राइम कम भी हुआ है और वर्कआउट परसेंटेज भी बढ़ी है। हमारे को हेल्प मिलती थी जैसे पहले मोबाइल से, अब CCTV कैमरा लोगों ने लगा लिए। अब इसमें बीच में ही मैं अपील करूंगा, बहुत जगह ऐसा होता है कि कैमरा दुकान पे या घर पे लगा हुआ है, वो सिर्फ अपने घर को कवर कर रहा है, वो रोड पे जो या गली को कवर नहीं करता। तो लोग थोड़ा सा उसका एंगल थोड़ा सा उसका बाहर की तरफ रख दें तो आपका घर भी कवर हो रहा है और बाहर के लिए आप
2: बिल्कुल
3: अपने घर के साथ साथ देश के लिए भी कुछ उसी से कोई क्लू दे दोगे तो ये वास्तव में अच्छी अच्छी एक वो है, आपकी बात सही है बिल्कुल
2: जी। सो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा हमारे आज के खास एक्सपर्ट श्री राजेश शेठी जी के साथ, DSP रेलवे सुरक्षा संवाद प्रोग्राम का नाम। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर RG दीक्षा के फोल्डर में आपको ये सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे आप ही की सेफ्टी से जुड़े हुए। बातों का सिलसिला जारी है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक, मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप सुरक्षा संवाद रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। और जैसा कि नाम सुरक्षा संवाद, हम बात कर रहे हैं आप ही की सेफ्टी के बारे में और बढ़ते हुए क्राइम के बारे में। लेकिन क्राइम के बारे में हम आज जिन एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, वो खुद क्राइम ब्रांच में इतना समय बिता चुके हैं कि क्रिमिनल को दूर से ही पहचान भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इन्होंने सॉल्व करे हैं, सिर्फ क्राइम ब्रांच नहीं, आईबी, यूनाइटेड नेशंस और अलग अलग विभागों में कार्यरत राजेश चेची जी, जो कि फिलहाल डीएसपी हैं रेलवेज में, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट। सड़कों पर, मोहल्ले में, गलियों में क्राइम कुछ हद तक कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन अभी और कंट्रोल करने की भी जरूरत है, ताकि घर की जो भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, बाहर निकलते हुए डरे नहीं, बच्चे आराम से खेल सकें। और आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको रात को जल्दी आने की चिंता ना हो कि कहीं क्राइम ना हो जाए। लेकिन ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो क्राइम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें बता रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्राइम कैसा होता है, क्राइम से बचना कैसे चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करें सुरक्षा संवाद में। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं, दुनिया डिजिटल हो गई है, फोन में इस छोटी सी स्क्रीन में सब कुछ है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी पर ही एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं। फिल्म्स की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहूंगी क्योंकि फिल्म फिर भी आपको थिएटर में जाके देखनी पड़ती है, उसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे रील्स हैं, वीडियोज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना ज्यादा क्राइम दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा क्राइम और ब्रूटल क्राइम दिखा रहे हैं। इस तरीके के शब्द और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना कि पुलिस वहां दिखती ही नहीं है, और दुनिया में खासतौर पर से मैं यंग बच्चों की बात करना चाहूंगी, उनको लगता है कि यही दुनिया है और यही बढ़िया तरीका है जिंदगी को जीने का। शायद ये रीजन है कि बच्चे आजकल, यंगस्टर्स बहुत क्राइम करने लगे हैं, जरा सी बात पे लड़ाई कर लेते हैं, गोली चला देते हैं, क्या ये रीजन है?
1: ये किसी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि वो जो बच्चा है ना, उसका माइंड अभी परिपक्व है नहीं, मैच्योरिटी उतनी है नहीं उसके अंदर, वो जो देखता है उसको रियलिटी समझने लग जाता है, चाहे वो कार्टून में ही क्यों ना हो, मतलब आप पिक्चराइज करके अगर प्रेजेंट कर रहे हो वो तो एक डिफरेंट हो गया, परंतु अगर सिर्फ कार्टून के थ्रू भी अगर बच्चा देखता है तो वो कच्चा दिमाग है उसका, वो लेता है उस चीज को। तो इसमें तो देखो, सरकार लेवल पे तो ये है कि सेंसर बोर्ड थोड़ा सा इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जैसे फिल्म सेंसर होके आती है, ऐसे ही ये भी चीज़ों पे सेंसर लगे, वो तो सरकार लेवल की बात है। पर हम हमारे लेवल पे जो कर सकते हैं कि हम एज ए पेरेंट्स घर में जो बड़े हैं वो थोड़ा सा फिल्टर करें कि बच्चे को हम क्या देखने की इजाज़त दे रहे हैं, क्या देख रहा है वो
0: जी।
1: इस तरह की ऐप्स आ रही हैं कि आपने क्या चल रहा है आपके फ़ोन में, बच्चे ने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या देखा, वो सारा का सारा डेटा वो रिस्टोर करते हैं। तो अगर पीछे से भी वो देख रहा है तो आप कभी ना कभी बच्चों का ना वर्ष, वो 16 वर्ष तक ताड़ेत को हमारे संस्कृत का शब्द है ताड़ेत, तो उसमें ताड़ेत को हम समझने लग गए थे पीटना, पर असल में वो पीटना नहीं है, वो वॉच करना है,
0: नजर रखना,
1: हाँ उस पर नजर रखनी है। तो बच्चे के ऊपर शक की नज़र रखें कि वो क्या देख रहा है। अब तो पहले तो होमवर्क वो स्कूल बैग चेक करने की हिदायत देते थे हम पहले, पर अब वो स्कूल बैग की बजाय आप उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर या उसके फोन में वो क्या देख रहा है, किस तरह का वो मटेरियल
0: इंटेक
1: ले रहा है, हाँ तो उसको माँ बाप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, तो बच्चे को और समझाएं कि ये सब नकली है, रिजल्ट भी होगा। मैंने बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, दो चार जो मेरे संपर्क में, मैंने उनको ये भी कहा था कि किसी क्रिमिनल की लाइफ पे भी कुछ बनाओ, कि जैसे क्रिमिनल है और वो जेल में चला गया, पीछे से उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोटियां खाने के लिए नहीं है, उनके लिए वकीलों के पैसे नहीं है, तो वो भी एक, ताकि वो एक दूसरी पिक्चर भी दिखे बच्चों को कि ये दिख तो रहा है हीरो बन गया, पर पीछे से इसका परिवार का क्या सफर कर रहा है, वो भी एक कहीं आए सामने हमारे।
0: जी जी,
1: तो यही उपाय है जी।
0: जी सर, एक और बहुत बड़ी समस्या है यूथ का इन्वॉल्वमेंट, जिसकी हम बात करें हैं क्राइम में, बच्चों में बिल्कुल संयम नहीं है और सड़क पे चलते हैं, दो गुटों में झगड़ा हो जाता है और इतनी ज़्यादा लड़ाई और मारपिटाई हो जाती है कि किसी ना किसी की जान चली जाती है। ये तो हो गई यंगस्टर्स की बात, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसे अभी हाल ही में हुए हैं जहाँ पर शादीशुदा कपल में शादी हुई है, झगड़ा हो गया और वहाँ पर मर्डर कर दिया किसी, और इतना ब्रूटल मर्डर्स होते हैं कि आप शायद ये चर्चा भी ना करना चाहें इस प्लेटफॉर्म पे, कि आपका मन भी नहीं करें कि किस तरीके से वो बॉडी के साथ जो किया गया सिर्फ अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए। सो ये सर कैसे इतना क्राइम कर जाते हैं, एक हंसता खेलता परिवार एक छोटी सी बात पे ख़त्म हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स जेल में चले जाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है सर इसके पीछे?
1: मैम, एक तो समय का प्रभाव है
0: जी,
1: क्योंकि टाइम जिस तरह का अब आ गया ना जी, वो सतयुग कलयुग त्रेता युग वाला सिस्टम जो है अब कलयुग है, तो इसमें कलयुग का मतलब अगर वैसे देसी समझाने वाली भाषा में तो मशीन का युग हो गया, कलपुर्जों का, कलयुग का मतलब कलपुर्जों का युग हो गया
0: जी।
1: तो अब वो जो मानवता या जो ह्यूमैनिटी या जिसको कहेंगे दया भावना, वो हम ना बच्चों को सिखाते हैं ना बड़ों को सिखाते हैं
0: जी।
1: आप किसी स्कूल में, घर में, किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं चले जाओ, वो हम न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज और वो सब पढ़ा रहे हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री और ये सब कुछ चीज़ें, पर ये कहीं सिलेबस में मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना बाप आपको फुर्सत है कि वो चीज़ समझाएं उनको। और एक बात है ना जी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अब आप कितने लोग हैं, अभी एक सरकारी हॉस्पिटल का एक किसी शहर का एक बंदा मेरे को, वो लैब में है, तो कह रहा था जी आज से 10 साल पहले जब हम लड़कियों का 25 साल से नीचे की लड़कियों का ब्लड टेस्ट करते थे तो उनका होम्योग्लोबिन 10 11 12 आता था, और अब 5 6 7 आता है, अब 10 12 आ जाता है जिस दिन किसी लड़की का, तो हम आश्चर्य मानते हैं कि 11 कैसे आ गया इसका। तो मैंने फिर कारण पूछा भाई क्या है, तो उसने बताया कि जी फास्ट फूड है, बर्गर पिज्जा और वो फास्ट फूड खाते हैं, डाइट खाते नहीं है, तो वो होम्योग्लोबिन डाउन हो रहा है उनका। तो वो डाइट आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी खराब करेगी
0: जी, जी।
1: और मन को खराब करेगी तो फिर आप उल्टे काम करोगे कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सात्विक भोजन अगर करें और माँ बाप वो समझें कि भंडारे की सब्जी 5-स्टार होटल की सब्जी से अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि वो भाव जो आ गया, तो वो घर में वो भाव जिस दिन माँ ने डालना शुरू कर दिया, तो हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा और समाज का भी बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो क्राइम कंट्रोल में एक बड़ी भूमिका हो जाएगी उनकी, क्योंकि आपके हाथ से जो आप रोटी बना रहे हो ना, वो आप संस्कार डाल रहे हो उसके अंदर। तो अब इसका मिला जुला प्रभाव है जी सारा का सारा, कुछ सोशल मीडिया, कुछ बच्चों को आजकल, पहले एक शहर में कोई काम हो गया तो वो अखबार के माध्यम से या टीवी में 20 मिनट की खबर आती थी, उसमें कितना प्रचार हो जाएगा। अब तो आप पूरे वर्ल्ड का एक सेकंड में आपके पास सारा समाचार आता है बिल्कुल, तो अब उसमें अब वो प्रभाव तो रहेगा फिर, उससे
0: एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है जी, जी। क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्या वाकई बढ़ रहा है, ऐसे विषय पर चर्चा चल रही है कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना ना भूलें, 8010781078 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: फील गुड फील लाइव. आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का पहला रेडियो, रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद और ये प्रोग्राम खास तौर पर से लेकर आते हैं हम फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर. और आज हमारे साथ स्टूडियो में एज अ गेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं शहर के ही नहीं बल्कि राज्य के और देश के जाने माने पुलिस अधिकारी राजेश शेची जी, जो कि DSP हैं रेलवेज में और अनुभव रखते हैं लगभग 35 वर्षों का पुलिस विभाग में, एक IB के एक्सपर्ट के फॉर्म में, एक क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट के फॉर्म में और अब रेलवेज में यूनाइटेड नेशंस में कार्यरत राजेश शेची जी हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. सर, एक व्यक्ति के अगर क्रिमिनल बनने की मैं बात करूं, क्योंकि आप क्राइम ब्रांच में रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में भी रहे हैं, यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जहाँ पर हमें पता लगता है ये सीरियल किलर है, लेकिन वो दिखता है एकदम भोला भाला सीधा साधा है. और इस पे कई सीरीज भी बनी है, फिल्म्स भी बनी है. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उनसे कॉपीड होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, दिखने में एकदम नॉर्मल है, नौकरी कर रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, लेकिन काम ऐसे हैं कि आपको जब पता चलता है, चाहे निठारी का कांड लगा लीजिए या बाकी बहुत सारे और केसेस इसमें होंगे, कैसे हम पहचान सकते हैं? कोई तरीका है कि हम खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें?
1: देखो, इसमें जो महिलाओं को तो भगवान ने सिक्स सेंस दी है
0: जी,
1: लड़कियां खास तौर पे अगर थोड़ी सी भी वो दिमाग उसका ठीक है, नॉर्मल है, तो वो एकदम बच्चे बंदे की सामने वाले की चाल देख के समझ जाएगी कि ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ. और तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है पढ़ने का, पर जो ये जो चीज़ है ना, जो जैसा आप बता रहे हो कि इसको व्हाइट कॉलर क्राइम एक तरह से कह सकते हो, कि अब बंदा दिख नहीं रहा आपको, क्रिमिनल है वो क्रिमिनल, पर ये होता है रेयर, अदरवाइज क्रिमिनल क्रिमिनल दिखेगा. अब जैसे मैं रेलवे में हूँ, अभी कल भी एक चोर दो पकड़े हैं हमने रेवाड़ी में, तो एक के खिलाफ 17 केसेस पहले से दर्ज हैं चोरी की. अभी भी 45 लाख रुपए के सोने की चोरी कर ली ट्रेन चलती ट्रेन में से उन्होंने
0: जी जी.
1: तो वो क्योंकि रिकॉर्ड है उसका, इतने सारे केसेस करके आया, वही करता रहेगा. ये मैंने देखा है पैटर्न, कोई 2-4% चेंज होते हैं. जो जेब काटने वाला वो जेब भी काटता रहेगा, जो ट्रेन में चोरी कर रहा है वो बस में नहीं करेगा, वो ट्रेन में ही करता रहेगा, जो घर में चोरी कर रहा है वो घर में करेगा, दुकान में नहीं करेगा. थोड़ा बहुत है 2-4% 5% लोग होते हैं जो चेंज करते हैं अपने मोडस ऑपरेंडी को, अदरवाइज तो वही करेंगे वो यूं कहीं
0: जी.
1: तो इसमें जहां तक पहचानने वाली बात है, वो तो आप उसके थोड़ा सा अगर आपका दिमाग का और आंख का तालमेल है, जैसे मैं पुलिस में हूँ, मैं आपको 20 एग्जांपल ऐसे बता दूंगा कि मार्केट में जाते जाते किसी पे शक हुआ. एक बार मैं सिरसा पोस्टिंग थी पीछे, तो सनी देओल का रोड शो था, तो उस दिन मैं, मेरे साथ दो आदमी थे, तो मैंने कहा आज तुम्हारे को मैं जेब कतरा पकड़ के दिखाऊंगा. देखो
0: अच्छा,
1: तो आपको आश्चर्य होगा, आधे घंटे में 3 पिक पॉकेट जो है ना, 3 जेब कतरे भीड़ में से हमने आइडेंटिफाई करके पकड़े. और वो आपका एक्सपीरियंस कह लो या आपका इंटेंशन कह लो कि आप कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको दिखेगा. पक्का पब्लिक मैन भी बहुत सारे हैं, मैं क्राइम में रहा हूँ, बहुत से लोग थे जो सूचना दे देते थे. जैसे देशभक्ति दिखाने के लिए आपको वर्दी ही पहन के आप बॉर्डर पे जाओगे या पुलिस में जाओगे या फौज में भर्ती होगे, ऐसा जरूरी नहीं. अगर आप सामान्य आदमी और आपको कुछ शक वाली चीज लग रही है और आपने पुलिस को शेयर कर दी, तो आपकी देशभक्ति तो होगी वहीं पे.
0: बिल्कुल बिल्कुल ना, तो कुछ अच्छा करके आप आम इंसान बन के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं.
1: बिल्कुल करते हैं लोग, बहुत करते हैं. बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है लोगों ने जब मैं क्राइम में रहा हूँ,
0: यानी क्राइम में रहकर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एक आम इंसान ने बहुत मदद करी.
1: बहुत करी, बिल्कुल.
0: सर, अब बात करते हैं, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं, यूरोप में रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस मतलब दुनिया को कुछ हद तक संभालने का जिम्मा यूनाइटेड नेशंस का है, अलग अलग शाखाओं के माध्यम से. और हम जब भी बात करते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है और बहुत सारे लोग ये तर्क वितर्क करते हैं कि भारत में तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अमेरिका बहुत कमाल का है या यूरोप बहुत कमाल का है, यहाँ पे क्राइम नहीं है या यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ हम इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं. और मैं अक्सर इस चीज़ पे बहुत बहस करती हूँ कि नहीं, भारत में जो सुविधाएं और जो माहौल है, जो अपनापन है, वो आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगा. तो कहाँ तक सर आप बताइए, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े रहे हैं, आप रोज क्राइम भी देख रहे हैं और आप चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगी.
1: मैम बिल्कुल सही बात है, क्राइम का जहाँ तक बात है जी, तो उसमें अगर आप USA से ही सिर्फ अगर कंपैरिजन करो
0: जी,
1: जिसकी पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी फालतू लगभग इतनी है और एरिया उसका हमारे भारत से बहुत बड़ा है, 3 तो टाइम जोन है, हम तो एक ही टाइम जोन में रहते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो ऐसे ऐसे देश में जिसको डेवलप्ड कंट्री है और उसका कंपैरिजन हम क्राइम से अगर करें तो इंडिया से कई गुना ज्यादा, पर कैपिटा क्राइम जैसे निकाला जाता है हमारा, पर लैक क्राइम निकाला जाता है, तो हमारे से तो बहुत ज्यादा है उनका। क्राइम अगेंस्ट वीमेन तो कई टाइम ज्यादा, कई गुना ज्यादा है हमारे से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान हर तरह से अच्छा देश है, सुरक्षित है, सब कुछ है, आपस में भाईचारा है, और आज़ादी का भी जो पूरा लुत्फ लोग उठाते पाते हैं ना जी, वो यही है कि आपको लग रहा है कि गाड़ी को कभी कैमरा नहीं है तो अपना स्पीड दिखा लो, आप वो तो वहाँ तो बिल्कुल वो आपको
0: रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने घर के बाहर ज्यादा गंदगी नहीं फैला सकते हैं, आप पौधों की कटाई समय पर कीजिए, बहुत सारे रूल्स स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं। तो लोग उससे कई बार परेशान भी होते हैं और कई बार भारत की तारीफ भी करते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीजें नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: सो बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं ना तो बहुत सीरियस टॉपिक सा हो जाता है, और इन सीरियस बातों में थोड़ा सा एक लाइटनेस फील कराने के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद। खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं राजेश शेट्टी जी, शहर के ही नहीं बल्कि देश के जाने वाले पुलिस अधिकारी राजेश शेट्टी जी, जो फिलहाल DSP रेलवेज हैं और अपराध की दुनिया से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि क्राइम को कैसे रोका जाए, कैसे समझा जाए क्रिमिनल को और कैसे खुद को बचाया जाए, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर, हम क्राइम की बात कर रहे हैं और आपने अभी भारत और बाकी देशों के बारे में भी बताया कि भारत में फिर भी चीजें बहुत बेहतर हैं, आपका अपनापन है। सर, थोड़ी सी बात अध्यात्म की कर लेते हैं, थोड़ी सी बात अपने कल्चर की कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी को सुधारने की, तो सबसे पहले जब हम भारत की जेलों में ही देखें तो वहाँ पर भी मेडिटेशन के अलग अलग सेशंस रखे जाते हैं कैदियों के लिए, उनको भजन भी सुनाए जाते हैं और उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं कि वो अपने माइंड को शांत रख सकें, वो बाहर निकल के दोबारा ऐसा कुछ ना करें। तो अध्यात्म के साथ जुड़ना या स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना हमको किस तरीके से एक अच्छा इंसान बनाएगा, या फिर हमारे सर्कल में जो लोग हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंट कैसे बेहतर हो सकता है?
1: मैम, देखो, WHO की जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको अगर देखो तो उसमें लिखा हुआ फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट हो तो आप हेल्दी हो। बीमारी का ना होना हेल्थ नहीं है। हम आमतौर पर समझते हैं अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, पर उनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो सोशली आप कितने स्ट्रांग हो एक तो हुआ, अब उसमें चौथा जोड़ने की तैयारी हो रही है स्पिरिचुअली भी।
0: Okay.
1: क्या स्पिरिचुअली भी कितने कनेक्टेड हो या कितने स्ट्रांग हो। और वो चीज देखो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों की है जो किसी न किसी आश्रम से, किसी संस्थान से, किसी मतलब मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से,
0: कहीं ना कहीं
1: से जुड़े हुए हैं हर एक आदमी कहीं ना कहीं। पर जीवन में उसको कितना उतार पाते हो आप, वो प्रवचन जो सुन के आते हो, या आप चाहे सोशल मीडिया या यूट्यूब पे सुन रहे हो या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो, लाइव जाके सुन रहे हो, आप जीवन में कितना उतार पाते हो। मेरे को अगर मेरे बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखानी है तो मैं उपदेश से कभी नहीं सिखा सकता, मैं एग्जांपल से सिखा सकता हूँ। मैं मेरे बेटे को कहूँ भाई स्पीड ढंग से चला, भाई साइड के लिखी हुई स्पीड तो साइड पे चला और मैं वहाँ 120 पे चला रहा हूँ,
0: बिल्कुल,
1: तो मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ कि भाई है। तो हर मामले में यही है कि मैं कहता हूँ माँ बाप कुछ ना करें, अपने बच्चे में दया भावना डाल दें। वैसे तो ईश्वर ने डाल के भेजा हुआ है, पर जो हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, अभी मैंने ChatGPT से एक दिन पूछा कि भाई हाँ, जब ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जो आदमी क्राइम कर रहा है वो तो ईश्वर की मर्जी से कर रहा है, फिर मैं उसको क्यों जेल में भेजूँ या क्यों सजा दूँ या क्यों इंटरोगेट करूँ? तो इसका जवाब आया कि ईश्वर ने आपकी ड्यूटी लगा रखी है, जो काम करने की वो आप करो, उसकी ड्यूटी लगा रखी है क्राइम करने की, आपकी ड्यूटी है उसका इलाज करने की, तो करो। तो माँ बाप की ड्यूटी भी भगवान ने लगाई हुई है, टीचर की ड्यूटी भी लगाई हुई है, बड़े कोई भी समाज में सामाजिक आदमी है, वो हम एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि हम अपने बच्चे से छोटे छोटे दया के काम करवाएं, छोटे दो दो पाँच पाँच रुपए, जो कीड़ियों को आटा ही डलवा दिया आपने उससे, उसका डबल फायदे हैं। एक तो आपके शरीर में इस तरह के हार्मोन्स फिर निकलते हैं कि आप बीमार नहीं होते, और दूसरा सोसाइटी के लिए क्या फायदा होगा कि जो बच्चा दयावान हो गया, वो क्राइम किसी को थप्पड़ भी मारेगा तो वो तीन बार सोचेगा कि यार
0: मैंने
1: गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अगर वो कहीं सरकारी आदमी या प्राइवेट आदमी बन गया, कहीं रिश्वत लेगा, तो वो सोचेगा यार इस आदमी की गुंजाइश है, मेरे से जो 10 रुपए ले रहा हूँ इसे दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो वो बस एक दया डालने से आपने सब कुछ कर दिया। और वो आप एक रिक्शा लेके जा रहे हो, 20 रुपए मांगे उसने और आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, बेटे से दिलवा दिए या बेटी से दिलवा दिए, तो आपने वो डाल दिया, उसके अंदर बीज डाल दिया उस चीज़ का। तो मैं अक्सर कहता हूँ ये बातें, और जहाँ जहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट करवा के देखे हैं उन बच्चों में बदलाव आया है पक्का
0: जी,
1: कि माँ बाप के माध्यम से ऐसे करवाओ तो दया भावना आ जाएगी, वो बड़ा होके वो अपने आप, वो फैमिली भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना परिवारों में जो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दया भावना है नहीं, वो ना उसको वाइफ पे दया आ रही, ना वाइफ को हस्बैंड पे दया आ रही है, वो उसके टॉर्चर करते हैं एक दूसरे को जब बिगड़ जाती है जितना हो सकता है उतना। तो एक दया भावना डाल दो, थोड़ा सा सांस के ऊपर ध्यान देना सिखा दो उसको किसी तरीके से, क्योंकि सांस ही जीवन है।
0: बिल्कुल,
1: आप पूछोगे, मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ गैदरिंग में, 1000 लोग बैठे हुए हैं, भाई सच बताना कि तुम्हारे सांस के ऊपर किस किस का कभी ध्यान गया पिछले एक हफ्ते में? तो लोग जैसे आराम ब्लैंक हो जाते हैं कि ये तो सोचा ही नहीं कभी, क्यों ऑटोमेटिक चल रही है वो भी। तो इंटेंशनली अगर आपने बच्चे को सिखा दिया बेटा कि दिन में 10 बार तो सोच ले इसके बारे में कि सांस ले ले, मेरे फोन में रिमाइंडर बजता है कि हर 20 मिनट बाद एक टीम बोलेगी तो याद आ जाती है सांस थोड़ा डीप ले ले एक बार, तो समाज ही चेंज हो जाएगा। देखो
0: आपका दिमाग जो है वो शांत होने लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, समस्या मुझे लगता है यही है कि जब कोई क्रिमिनल बन जाता है तो हम उसको बहुत आध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, जेल में सेशंस की जो बात करी, लेकिन जब तक वो क्रिमिनल नहीं बना है उसको क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो सर, स्कूल में हमारे बचपन में नैतिक शिक्षा का एक बुक हुआ करती थी, एक क्लास होती थी, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स होते थे कि आप अपने बड़ों की सेवा करें, आप लोगों के काम आएं, कुछ अच्छा एनवायरनमेंट के लिए करें, लेकिन वो चैप्टर भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए, वो जो सब्जेक्ट थे वो ख़त्म हो गए और मॉरल एजुकेशन जो है वो सिर्फ अब बातों में रह गई है। तो आपको क्या लगता है, स्कूलों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए?
1: मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ना, उसमें दोबारा नैतिक शिक्षा में उन्होंने जो डाला है वो चीज़ अब की बात
0: जी,
1: तो और उसका फिर पॉजिटिव प्रभाव तो रहेगा ही। पर पढ़ाने की बजाय ना, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने किताब ले ली जिसमें स्विमिंग सिखाई जा रही है और मैंने पूरी घोट ली, किताब पूरी याद कर ली, मेरे से कहीं से क्वेश्चन पूछ लो मैं बता दूंगा, पर मेरे को अगर पानी में डाला जाएगा तो मैं डूबूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं है, सिर्फ वो मैंने थ्योरेटिकल सीख लिया सब कुछ। तो आप बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल नहीं सिखाओगे ना, मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूंगा अगर आप अनुमति।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: गुड़गांव में एक दिन मैं, मेरे बच्चे, बेटा बेटी छोटे थे, हम जा रहे रिक्शा में बैठ के, मेरी वाइफ भी साथ थी, और वो मैंने रात का समय था, 9-1 बज रहे, तो मैं रिक्शा वाले से बोला, भाई कब से कर रहा है काम? कह रहे जी सुबह से। तो मैं, तू तो थक गया होगा। कह रहे हाँ जी। मैं, ऐसा कर तू बैठ, मैं चलाता हूँ। मैं वहीं इंस्पेक्टर था, SHO था
0: जी।
1: तो मैं कह, तू बैठ, मैं चलाऊंगा। तो मेरे को पता है रिक्शा चलती नहीं है आसानी से, अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो, पर वो देगा भी नहीं। परंतु आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, भाई तुम्हारा बापू यहीं पे SHO लगा हुआ है और वो अब सरेआम सड़क के बीच, बाजार के बीच में से, वो तो रिक्शा वाला बोला ना जी नहीं, मैं चलाऊंगा, ऐसे नहीं, आप बैठे रहो, कोई बात नहीं। पर उनको एक क्या गया, भाई कोई शर्म नहीं है काम करने में, चला लो, जो कहीं करने का रस या मौसमी का रस, आजकल तो मशीनों से बढ़ने लग गया,
0: पहले
1: हाथ से निकलता था, तो हाथ से जब अकेला आदमी वो करने भी लगा रहा है, वो कर रहा है, तो मैं, बच्चे बैठे हुए हैं या साइड में खड़े हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मैं चला ले, मैं चलाऊंगा यार, तेरा टाइम बच जाएगा और मेरे भी टाइम बचेगा, और ले तू लगा इसमें और मैं चलाता हूँ, तो मेरी भी वर्जिश हो जाएगी। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप बच्चों को वो चीज़ फिर वो डाल देते हो उनके अंदर।
0: बिल्कुल।
1: तो और कोई सिंपल है, कोई इसमें ना पैसा खर्च होना, ना एनर्जी खर्च होनी, ना कुछ, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, सबसे बड़ा आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो चीज़।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये करें कुछ छोटे छोटे काम।
0: जैसे हम साइंस के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं या बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वैसे नैतिक शिक्षा को भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर लेंगे तो समाज में थोड़ा बेहतर सुधार आएगा। तो चर्चा और भी होती रहेगी, कैसे स्पिरिचुअलिटी, कैसे माता पिता का बच्चों के साथ रहना यंगस्टर्स को क्राइम से रोक सकता है, ऐसी कुछ बातें भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो वक्त है वो है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। अगर आप भी एक जागरूक नागरिक हैं तो जरूर अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, 8010781078।

फील गुड फील लाइव. आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद. और कभी सोचा है आपने कि सुरक्षा संवाद कार्यक्रम लाने की कोशिश हम क्यों करते हैं? हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप सुरक्षित रह सकें. और ये खास सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर. आज हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं राजेश शेट्टी जी, जो कि काफी लंबे समय तक क्राइम ब्रांच में रहे, IB में रहे, साथ ही ये यूनाइटेड नेशंस में भी कार्यरत रहे हैं यूरोप में, और अब DSP रेलवेज हैं. हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सोशली भी ये बहुत वेल कनेक्टेड हैं और बहुत सारे सोशल

0: वहाँ जब मैं हेडक्वार्टर पे था
1: जी,
0: तो उसमें हमने एक डेटा गूगल शीट बनवाई पूरे के, जो भी क्राइम कुछ छांट लिए मेजर हेड्स 8-10 मर्डर लूट रेप पॉक्सो, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो क्राइम करने वाले हैं वो भी पढ़े अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, और जिनके साथ क्राइम हो रहा है वो भी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, हर तरह का क्राइम।
1: ओके,
0: एक्सेप्शन वाली बात अलग है 2-4%, परंतु मेजोरिटी में वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कम कर रखी है, और क्राइम भी वही कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई कम कर रखी है। तो एक तो हो गया मेजर काम, एक तो शिक्षा, और जब शिक्षित नहीं हो तो आप अवेयर नहीं हो। अब मैं अक्सर कोई ना कोई क्राइम हो जाता है, जैसे मैं हूँ गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मेरे को लगा कि रात को नींद आ रही है मेरे को या दिन में नींद आ रही है, तो मैंने अक्सर देखा है मैं हाईवे की थानों में जब भी रहा हूँ एरियाज में हाईवेज में, तो लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी करके सो रहे हैं साइड में। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, हर जगह होटल है, कहीं पेट्रोल पंप है, कोई पुलिस का नाका है चौकी, उसके आसपास लगा के सो जाओ, अगर नींद आ रही है तो सोना चाहिए, पर वो लोकेशन तो थोड़ी 2-4 किलोमीटर आगे पीछे ढंग से देख लो, पर लोग खड़े रहते हैं ऐसे सोते रहते हैं और वो बेहोशी पड़े रहते हैं लगभग, कई बार बजाओ तो जागता है। तो ये अवेयरनेस की कमी है सिर्फ, तो लोग जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे ना, वो हर कोने पे पुलिस, ठीक है क्राइम के लिए पुलिस जिम्मेवार है कंट्रोल करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए और करती भी है, परंतु हर आदमी बिना वर्दी वाला पुलिस वाला है वो खुद अवेयर हो जाए तो, जैसे साइबर क्राइम होता है
1: जी जी।
0: अब साइबर क्राइम सिर्फ दो ही कारण है, या तो लोग, क्योंकि कोई ना कोई ऑफर ऐसा आता है जी ये देखो सस्ते में चीज मिल रही है ले रही, और लोभ में वो उसने ट्रैप कर दिया उसको, फंस गया उसके चक्कर में चला गया। बहुत बार बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं वो झूठे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो इंस्टाग्राम के या वो टेलीग्राम पे ग्रुप बना के उनको लोगों को
1: शेयर्स, करते हैं, ट्रेडिंग,
0: वो झूठे झूठे सब बाग दिखा दिखा के फिल्म और लोभ डाल के उनको फिर ठगे जाते हैं लोग
1: जी जी।
0: या लापरवाही से रोज ऐड आती है कि भाई ओटीपी शेयर मत करो, अपने पर्सनल डिटेल्स मत दो, कोई बैंक नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता, फिर भी किसी भी कारण से हम शेयर कर देते हैं, फिर वो ठगे जाते हैं। बहुत सारी चीजें अब सुधार की हैं तो अब रिजल्ट्स भी आएंगे देखना
1: जी। डबल वेरिफिकेशन का सिस्टम जो शुरू हो रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और ये डबल वेरिफिकेशन अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों ये बहुत अच्छी सुविधा है, खास तौर पर से बुजुर्ग जिनके साथ बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट के केसेस हाल ही में सामने आए हैं, वहां पर सर इसमें यही प्रावधान है ना कि एक ओटीपी आपके पास आएगा और एक आपके किसी रिलेटिव के पास जाएगा, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, या जो भी जो नंबर हम दे के रखेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि बुजुर्गों को खास तौर पर से बहुत ज्यादा सेफ्टी जो है वो महसूस होगी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो पाए, इसलिए डबल वेरिफिकेशन का सिस्टम आया है
0: जी जी।
1: इसके अलावा सर महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं, कॉर्पोरेट कल्चर वाली भी ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि पुरुष कहीं ना कहीं उनको दबाते रहते हैं और वो बेचारी जो है वो घर बसाने के लिए कई बार नहीं बोल पाती हैं।
0: बिल्कुल, दरअसल क्या है हिंदुस्तान एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है
1: जी।
0: अब हालांकि अब क्योंकि लड़कियां जो हैं या फीमेल्स जो हैं वो बराबर के काम करने लगी सारे के सारे
1: जी,
0: पर वो माइंडसेट तो इतनी जल्दी चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने यूरोप में जैसे वहाँ एक साल में कोसोवो में रहा तो मैंने नहीं देखा एक बार भी किसी ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस में किसी महिला के साथ कुछ ऐसा किया हो, एक साल में एक भी केस नहीं है ऐसा। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो पुराने जमाने से आज से 30-40 साल पहले देखो तो महिलाएं स्कूल कॉलेज का मतलब ही नहीं था, 50% तो जनरेशन हमारी अनपढ़ रखी हुई थी ऐसे ही। तो अब सरकारों ने मोटिवेट कर करके लोगों को पढ़ना और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी चीज चलाई है, तो लड़कियों के लिए मैं कहूँगा कि अगर जब तक आप दबोगे, जब तक आप बर्दाश्त करोगे तब तक सामने वाला गड़बड़ करेगा, तो बर्दाश्त ना करें और पुलिस को सूचना दें, अपने परिवार वाले को सूचना दें, चाहे आप घर में हो या बाहर हो। बाहर भी अगर कोई आदमी आपको आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे बात करना चाह रहा है या आपको रोक रहा है तो आप बेझिझक होगे, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते, आप थोड़े से स्ट्रांग होगे ना तो वो तो एकदम से गायब हो जाएगा वहां से। तो ये तो लड़कियों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, और सरकार ने इतने सारे ऐप्स बना रखे हैं, इतने सारे वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है, और महिला थाने अलग से खुल गए हैं, महिला सेल अलग से खुल गए हैं, तो ये बर्दाश्त ना करके सामने आए, और पुलिस तो हमेशा साथ है आपके
1: जी,
0: तो निश्चित रूप से इलाज होगा जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सबसे बड़ी बात है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी जरूर फोकस कीजिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, जितना एक्सपोजर फोन पे और मोबाइल एप्स के जरिए हमें मिल रहा है और ये जो हमारे पास इतना सब एक्सपोजर है दुनिया भर में क्या चल रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है, जरूरत से ज्यादा जो बच्चों को समय से पहले एक्सपोजर मिल गया है उन सबको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ी सी लिमिट कीजिए, फोन की जगह किताबों में थोड़ा

0: सा मन लगाइए तो जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार तो हो ही जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है सुरक्षा संवाद में हमने बहुत कुछ सिर्फ सुरक्षा के माध्यम से नहीं सीखा है, बल्कि हमने स्पिरिचुअली भी आपसे सीखा है कि कैसे पेरेंट्स, कैसे परिवार इकट्ठे होके रहें तो क्राइम को ऑफकोर्स कंट्रोल किया जा सकता है।
1: बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, और आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जो जिस तरह का मैं बता पाया वो भी जी सही बता पाया
0: जी। सो राजेश जी के साथ आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा संवाद में हमने जाना राजेश चेचीटी से, जो कि DSP हैं रेलवेज में और बहुत सारे अन्य विभागों में भी कार्यरत रहे हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि क्राइम के पीछे क्या मानसिकता होती है, क्यों क्राइम होता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातों के बाद अब टाइम है आपसे इजाज़त लेने का। ये सारी बातचीत आप हमारी YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना की ऐप के माध्यम से इस पॉडकास्ट को पूरी दुनिया में कभी भी शेयर कर सकते हैं, और Instagram के माध्यम से इसकी रील्स भी आप सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल रेडियो मानव रचना पर बस इतना ही, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और लेती हूं आपसे इजाजत। अगले सुरक्षा संवाद के एपिसोड में होगी एक और हस्ती के साथ बातचीत आप ही की सुरक्षा को लेकर। रखिए अपना ख्याल और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। इस खास कार्यक्रम में आपको पता है कि मैं आपके लिए ऐसे शख्स लेकर आती हूँ, ऐसे लोगों को लेकर आती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, यानी ऐसे लोगों से आपको मिलवाती हूँ जो धर्म के और साथ के साथ ह्यूमैनिटी के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। आज के जीवन में जहाँ पर हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का जीवन जीते हैं, जहाँ हम हमेशा लोगों के साथ कॉम्पिटेटिव होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपनी मानवता को निभा रहे हैं। सो आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है पूनम सिंह जी, और ये प्रेजिडेंट हैं परिचय की, एक खास ऐसा NGO जो ना सिर्फ लोगों की मदद करता है लेकिन उनके जीवन में एक उजाला लाने की कोशिश कर रहा है। सो आज इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उसके लिए आप कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी पूनम जी का रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद भावना जी। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ रेडियो मानवरचना की, ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया ताकि मैं यहाँ आऊँ और आप सबके बीच अपनी बात रख सकूँ, और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके बीच आकर अपनी बात कहूँ और अपनी जो जर्नी है वो उन लोगों से साझा करूं।
1: पूनम जी, अगर मैं परिचय की बात करूं तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम किसी भी NGO की बात करते हैं ना तो उसके पीछे कहानी जरूर होती है कि इसका क्या कारण था, इसका गठन हुआ या हमें लगा कि हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए, सो इसलिए कुछ लोगों को हमने साथ लेते हुए आगे ये सफर शुरू किया। तो परिचय की जर्नी कैसे शुरू हुई?
2: भावना जी, परिचय की जर्नी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि एक तो आपका एक मूलभूत स्वभाव होता है, तो बचपन से ही मैं काफ़ी संवेदनशील रही हूँ चीज़ों को लेकर के, घटनाओं को लेकर के, लोगों को लेकर के, और समाज के प्रति एक बहुत ही जो बोलते हैं ना कीन ऑब्जर्वर, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, कोई दुखी है, किसी के पास खाना है नहीं, किसी के कपड़े कैसे हैं और उसको कोई परेशान कर रहा है, किसी तरह के पर दबाव डाल रहा है या फिर उसको लग रहा है कि टॉर्चर कर रहा है, तो मेरा मन इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हो जाता था
1: जी।
2: तो एक चीज़ जो शुरुआत से बचपन से थी कि मुझे आगे चल के समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो करना है
1: जी।
2: तो ये आग अंदर जलती रही, और जब आग जलती है तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ लोग भी उसमें समा जलाने के लिए मिल ही जाते हैं
1: जी।
2: तो वही आग एक जो है मसाल भी बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, तो कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, यूथ थे मेरे साथ के, उसमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ वकील हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो हम सब ने मिलकर एक बात सोची कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो वी हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम द सोसाइटी, और सबसे पहले जो बचपन से ही मेरे आइडियल रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, तो हमारी NCERT की बुक में उनका जंतर होता था, गांधी जी का जंतर,
1: yes।
2: तो उसमें लिखा होता था कि आप जब भी किसी दुविधा में पड़े या आपके मन में कोई शक आए, कोई अहम आए किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, तो आप अपने आसपास उस सबसे कमजोर और एक सबसे जो लास्ट इंसान है उस तक देखें, उसकी तरफ देखें कि क्या आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, उसको उससे उसको अपने जीवन और भाग्य को बदलने में कुछ मदद मिल सकेगी, क्या वो उसके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है। तो ये शुरुआत हमने कुछ इस तरह से सोच के की, और ये जो एक आग है मेरे अंदर जलती रही, और इसी आग को जलाने में, इसको आगे बढ़ाने में कुछ और लोगों की भी भूमिका है, कुछ युवाओं ने स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने फिर इस तरह से एक छोटे स्तर पर पहले शुरुआत की।
1: वाओ, तो भाई देखिए परिचय की शुरुआत शायद उस संवेदना से हुई जो कहीं ना कहीं दिल में थी, लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जब परिचय हुआ तो ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए जिन्हें इसी फील्ड में काम करना था, जिन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी आगे बढ़कर समाज सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। और आप देखिए कि आज परिचय न सिर्फ हमारे दिल्ली NCR में लेकिन अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। सो किस प्रकार का काम है, क्या होता है परिचय में, जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज परिचय के साथ। परिचय एक खास एनजीओ जो कि बहुत ही खूबसूरत सा काम कर रहा है मानवता का, और परिचय की जो प्रेसिडेंट हैं पूनम सिंह जी, वो हमारे साथ बैठी हैं। पूनम जी, अब अगला सवाल, किस प्रकार के कार्य करते हैं आप परिचय के थ्रू?
1: परिचय के माध्यम से हम लोग बहुत तरह के जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, स्पेशली जो गाँव में जाकर युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, जो वृद्ध जन है उनके जीवन में हम क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं जहाँ शिक्षा की जो सुविधाएं शहरों में लोगों को नहीं मिल रही है, वैज्ञानिक सोच कैसे बढ़ावा, उसको कैसे बढ़ावा मिले, जागरूकता कैसे आए उनके मन में, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जो अगर जागरूकता होगी तो वो समाज और वो देश जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये सब सोचते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो सुविधाएं शहर के बच्चों को मिल रही है, शहर की महिलाओं को मिल रही है, बेरोजगार युवाओं को मिल रही है, जो तकनीकी जो एक माध्यम होता है जो तकनीक, उस क्षेत्र में हम क्या करवा सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या कार्यक्रम वहाँ करवा सकते हैं ताकि उनकी सोच भी बदले, सकारात्मक बदलाव आए, एक विज्ञान

0: वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, इसके लिए हमने अपनी टीमें बनाई हैं। छोटी छोटी हमारी टीम है, वो जाकर गांव में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम करती हैं और युवाओं को और बच्चों को प्रेरित करने का काम करती है। और महिलाओं को हमने जरूर भागीदार बनाया है
1: जी,
0: क्योंकि बिना जो हम कहते हैं आधी आबादी महिलाओं की है, बिना इनको जोड़े हम सोच नहीं सकते कि कोई भी ऐसी सामाजिक पहल जो है अच्छे से सफल हो जाए।
1: वाकई भाई, देखिए कहते हैं ना कि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो दो परिवार शिक्षित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो महिला ना एक बहुत बड़ा ब्रिज है, अलग अलग मतलब पूरे समाज को बांधने वाला ब्रिज महिला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो हम शहरों में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जब करियर काउंसलिंग होती है तो हम आने वाले भविष्य के लिए कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है, लेकिन गाँव में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक टेक्नोलॉजी ही नहीं पता है। अब हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? क्या उनका पूरा जीवन बिना टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, या फिर इस एडवांसमेंट्स के बारे में न जानते हुए निकले? ऐसा तो शायद मुझे लगता है अन्याय होगा। सो उसके लिए परिचय है जो आगे आया है, और परिचय न सिर्फ उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया है जो कि उन तक न सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एजुकेशन की लाइन में भी ढेर सारे काम कर रहा है। सो आप देखिए, एक तरफ महिलाओं को, एक तरफ युवाओं को, बच्चों को शिक्षित करने का काम, ढेर सारा काम परिचय कर रहा है। सो अगर आप भी परिचय से जुड़ना चाहते हैं या परिचय के बारे में और बातें जानना चाहते हैं, सो कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि मैं सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं पूनम सिंह जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं परिचय की। परिचय एक खास एनजीओ जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है और ये पैन इंडिया है, यानी हमारे न सिर्फ दिल्ली एनसीआर लेकिन हमारे देश के अलग अलग राज्यों तक ये अलग जगाने की कोशिश की जा रही है। पूनम जी, अब अगला सवाल, अगर मैं बात करूँ बेनिफिशियरीज की, सो आइडियली आपके बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, किन को टारगेट करती हैं जब आपको लगता है कि ये जो सुविधाएं हैं, ये अवेयरनेस है, ये टेक्नोलॉजी है, किन तक पहुंचनी चाहिए?
1: सही, आपने बहुत सही सवाल पूछा और इस बारे में मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे श्रोता जरूर जाने। तो जैसे कि भावना जी, आपके कार्यक्रम का नाम ही है मानवता की राह पे, तो इसी कड़ी में हम अगर बात आगे बढ़ाएं तो हम जब भी किसी को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान आता है कि लाभार्थी कौन होने चाहिए, किस तक लाभ जाना चाहिए। तो यहाँ मैं बापू की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सीधी राह दिखा दी।
0: यस,
1: उन्होंने साफ बोला कि जो सबसे अंतिम जन है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें हम
0: जी।
1: तो अंतिम जन हमें शायद अपने आसपास सोसाइटीज में तो नहीं मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: हमें झुग्गियों में जाना पड़ेगा,
0: यस
1: गांव में जाना पड़ेगा, जो सड़कों के किनारे लोग, कितने लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरे परिवार के परिवार, वहां तक जाना पड़ेगा
0: जी।
1: तो इसके लिए हमने पहल शुरू की है और मैं खुद पर्सनली भी जहां मुझे मौका लगता है मैं जाती हूं और जिस तरह से जो मानवीय कार्य करने हैं, जो मदद पहुंचानी है, मैं वहां जाने की कोशिश करती हूं। जैसे वृद्ध जन है
0: जी,
1: जो बच्चे हैं जिन तक शिक्षा की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती, महिलाएं हैं, महिलाओं के पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, ऊपर वाले ने उनको नवाजा है इस चीज़ से, लेकिन क्या होता है उनको बताने वाला कोई नहीं है, अवेयर करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ जाते अगर कुछ मूलभूत सुविधाएं हम मुहैया करा पाते हैं
0: जी,
1: तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि सरकारों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर और जो कंपनियां हमें मदद करा सकती हैं उनके साथ मिलकर भी हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अंतिम जो लाभार्थी है उस तक हमारा काम और जो हमारी जो एक कोशिश है, जो प्रयास है, वहाँ तक जरूर पहुँचे।
0: देखिए भाई, जब कभी भी हम अपने रिचेस देखते हैं या कहना चाहिए जिंदगी में हमने क्या अचीव किया है, जब हम ये देखते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं कि वाओ हम जीवन में यहाँ तक पहुँच गए। नई गाड़ी खरीदते हैं तो हम पलटकर अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ देखते हैं और हम ये कहते हैं सो आज हमने अपने आप को अपग्रेड किया, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। एक नया घर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 500 गज की कोठी खरीदी है, सो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग ये होगी सो कभी किसी ज़माने में मैं 250 गज के घर में था या 300 गज के घर में था, आज मैं इससे ऊपर आ गया हूँ। लेकिन जब कभी भी हम जीवन में हताश होते हैं तो हमें ना एक तरफ देखना चाहिए और वो है उन लोगों तक जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। लेकिन परेशानी ये है कि जब हम इन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अब हमारे मन में आता है कि चलिए समाज में थोड़ी सी इक्वालिटी आ जाए, और ये इक्वालिटी इसलिए आए क्योंकि बिल्कुल भी इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हैव्स हैं और एक तरफ बिल्कुल हैव नॉट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। सो समाज में थोड़ा सा बैलेंस आए, और इस बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इन हैव नॉट्स तक पहुंचने की कोशिश करें, एक मदद का हाथ हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद हमें समझ में आता है कि इतना आसान सफ़र नहीं है, क्योंकि वहां चुनौतियां ही अलग हैं। वहां पर हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि आज एजुकेशन मिल जाए तो हमें हमारे सपनों को पर मिल जाएंगे, पंख मिल जाएंगे और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वहाँ चुनौती ये है कि दो वक्त का खाना मिल जाए तब हम एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। सो किस तरीके की परेशानियों को डील करती हैं और फिर ये परिचय कहाँ लोगों तक पहुँच पाता है, करेंगे इसके बारे में बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम पूनम जी के साथ हैं, पूनम सिंह जी जो प्रेसिडेंट है परिचय की। पूनम जी, जब कभी भी हम लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ सबसे गरीब इंसान के पास, या वो इंसान जिसके पास शायद बेसिक सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं, उसके पास जब हम ज्ञान लेकर जाते हैं ना, सो उसकी ज़रूरत ज्ञान नहीं होती, उसकी ज़रूरत उसकी भूख होती है। शायद सर पे छत नहीं है, या कई बार मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं हैं, या वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, सो वो ज्ञान को पीछे छोड़ना चाहता है। अब हम उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं ज्ञान मिल गया तो ये सब कुछ साथ में आ जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। सो किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप इन लोगों तक पहुंचती हैं, इनको सुविधाएं देने की कोशिश करती हैं?
1: आपके सवाल जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस पर बात किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, खासकर सामाजिक कार्य की, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। मैं आपके पहले क्वेश्चन का मैं एक बात आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि जो आपने मुझसे पूछा सवाल कि आप लाभार्थी कैसे ढूंढते हैं, एक बहुत बड़े अधिकारी केंद्र सरकार में, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। मैंने एक फिलंथ्रॉफी का काम करती हूँ मैं बहुत सालों से, 10 साल से ऊपर हो गए, तो उन्होंने पूछा आप हाउ डू यू फाइंड आउट बेनिफिशरी, तो मैंने कहा सर उसके लिए सबसे पहले मैं सोसाइटी का बहुत कीन ऑब्जर्वर बनना होता है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे वो सिक्स सेंस दिया है, वो ऑब्जर्वर बना के भेजा है, तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। वो चीज़ें जो किसी को नहीं दिखती वो मुझे दिख जाती हैं। ये मैंने जहाँ जहाँ काम किया है लोगों की नज़र ही नहीं जाती कि आपसे नीचे काम करने वाला इंसान, हाउसकीपिंग है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक जो बेसिक सैलरी है उनके पास वो बहुत कम है, उसमें उनका आना जाना, रेंट वगैरह बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। तो बेनिफिशियरी आप कैसे ढूंढेंगे? आप इस तरह से ढूंढेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने मौसम की मार की बात कही कि वो सब चुनौतियाँ होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि आप जो विश्व में या समाज में बदलाव देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत जो आप खुद से करें, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको इसी सर्दी की बात बता रही हूँ, एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत मार्मिक है, लेकिन मेरे ही आसपास एक लड़की थी 18-19 साल की, मैंने उसको हर दिन एक ही कलर के मोजे में देखा, जो हम सॉक्स पहना था, मेरी नज़र उस पर पड़ती रही। फिर मैंने देखा कि स्वेटर उसने ख़रीदा, लेकिन उसने अपनी मम्मी के लिए उसको बचा लिया, एक शॉल बचाया था, हम लोग शॉल ओढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि ये क्यों बचा रही है। आई आस्क्ड हर, तो वो बता भी नहीं पा रही है, वो अपने इमोशंस जो नहीं बता पा रही है, बट शी डजंट हैव मनी। तो मैंने सर्दी महसूस की कि मैंने क्या किया, स्वेटर, एक ही स्वेटर में दिसंबर लास्ट एंड जनवरी के स्टार्ट की जो सर्दी गुजारी, उसके दर्द को महसूस करने के लिए कि उसको कैसा फील होता होगा
0: जी।
1: जब मैंने वो सर्दी महसूस की, देन आई ट्राइड टू हेल्प, मतलब उनकी पूरी फैमिली की मैंने जो है जितनी चीज़ें मैं पहुँचा सकती थी, ज़रूरत का हर सामान, चप्पल जूते से लेकर स्वेटर और कपड़े तक, वो सब मैंने पहुंचाने की कोशिश की। ये तो एक इंडिविजुअल जो मैंने देखा, जब आप संस्था के रूप में काम करते हैं
0: जी,
1: तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। और जहाँ मुझे ज़रूरत पहुंचानी थी, तो वहाँ एड्रेस नहीं था मेरे पास, मैंने GPS सिस्टम के थ्रू रिमोटेस्ट विलेज एक फाइंड आउट किया, मैंने बहुत तार पे तार जोड़ा और बहुत सारे लोगों को कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ कर उस बच्चे के घर तक का रास्ता ढूंढा, और फिर वहाँ तक वो लाभ पहुँचाने की कोशिश की। कि लेकिन कहते ना कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ऊपर वाला भी जो है ना उसमें आपकी मदद करता, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ। और चुनौतियों की बात कर रही हूँ, पहली चुनौतियाँ जो मुझे लगी पहुँच की, आप दूर दराज के इलाकों में पहुँचेंगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत बड़ी बाधा होती है, संसाधनों की कमी होती है
0: जी,
1: जागरूकता की बहुत कमी है गांव के लोगों में। जब आप जाते हैं तो एक आजकल माहौल ऐसा, उनको लगता है इनका क्या इंटेंशन है, कहीं हमें बेवकूफ बनाने तो नहीं आए हैं,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: हमारे इमोशंस के साथ खेलने तो नहीं आए हैं
0: जी।
1: दूसरी बात जो होती है, वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ जो लोकल जो नेता होते हैं वो उनको अपनी तरफ मोल्ड कर लेते हैं, कि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक है या कुछ है, तो ये ना खिंच जाए। इनका जरूर कोई स्वार्थ होगा या कहीं यहाँ पर पैड बनाने तो नहीं आए। उसके बाद आपको पैसों की कमी होती है, आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन आपके पास जो है धन जो है जिसको कहते हैं उसकी कमी होती है
0: जी।
1: आप कैसे बिना पैसों के आप किसी की मदद किस तरह से कर पाएंगे
0: जी।
1: तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब सोच जो होती है, जो अंधविश्वास बहुत पैर जमाए हुए हैं, वहाँ लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल काम है। तो एक भरोसा बनाना, उनके बीच ये साबित करना कि आप उनके अपने ही हैं, आप जैसे वो इस समाज का, इस देश का हिस्सा है, आप भी उनसे ही जुड़े हुए हैं, और एक मानवीय संवेदना के साथ बिना किसी स्वार्थ के आप काम करने आए, ये उनके मन में इस बात को पैठ कराना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद लोकल लेवल पर आप किसी नई जगह पर जाते हैं, वहाँ काम करने में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लैंग्वेज से लेकर के आपके पास अथॉरिटीज से लेकर के लोकल जो समुदाय के लेवल पर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ता है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो सिविल समाज सेवा के क्षेत्र में जरूर आएं। लेकिन हाँ, यही बाधाएं, यही चुनौतियां आपको दिन ब दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मेरा ये मानना है। नियत अच्छी होनी चाहिए।

फिर देखिए, मैं तो कई बार ये कहती हूँ, अपॉर्चुनिटी भी उसके पास आती है जिसके पास उसको कर गुजरने की थोड़ी बहुत भी क्षमता होती है। अब आपके पास अगर कोई फोन करके कहता है मुझे एक्स वाई जेड की मदद कर दीजिए, और आप उस फोन को काट के कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली अगली बार कोई भी मदद का हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं लाओ मैं कोशिश करके देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, सो वहीं से आपकी ये छोटी सी सेवा का भी जो कुछ जर्नी है वो वहां से शुरू हो जाती है। सो जरूरत ये है कि जब हम चुनौतियों की बात करते हैं, सो सबसे बेसिक चीज लाइफ की है कि क्या हम जीवित हैं, और अगर हम जीवित हैं तो जीवित रहने के लिए जो चीजें हैं क्या वो हमारे पास हैं, उसके बाद हम ये बाकी सारी चीजों को एंजॉय कर पाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज भी हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन बहुत सारी चीजों से वंचित है, क्योंकि वो अपनी बेसिक चीजों को ही कहीं ना कहीं बटोरने की या फिर उसे अर्जित करने की कोशिश कर रही है। ये तो बात रही परिचय की, परिचय के बारे में और भी बात करेंगे, इनकी टीम के बारे में बात करेंगे, आप इनकी पहल से कैसे जुड़ सकते हैं ये भी हम बात करेंगे, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो मानवता की राह है ना, ये टफ नहीं है, बस इसमें ना थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है, थोड़े से करेज की जरूरत होती है और थोड़े से त्याग की जरूरत होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा ये देखते रहते हैं कि और हमें क्या चाहिए, तो आप जीवन में ना ये सेवा का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मेरे पास इतना है और मैं इसमें से थोड़ा सा दे सकता हूँ, सो आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी टीम की। परिचय एक बहुत ही खूबसूरत सा काम करने वाला एनजीओ है। पूनम जी, मुझे बताइए आपकी टीम किस तरीके से काम करती है? कुछ ग्राउंड वर्क करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेनिफिशियरीज ढूंढने की कोशिश करते होंगे। सो किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कैसे काम करती है आपकी टीम?
1: ऊपर ये एक तो बहुत ये एक मतलब मैं बोलिए एक्साइटिंग बात भी है, और इसमें लर्न करने की भी चीज़ें हैं कि एक तो जो युवा पीढ़ी है
0: जी,
1: आप मानेंगे कि उनके अंदर जो एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, वो उत्साह के साथ कुछ भी काम करते हैं। तो जब हम टीम बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि उसमें काम करने वाले लोगों का खुद का रुझान सामाजिक कार्य के प्रति कैसा है,
0: कितना है।
1: तो हमारी टीम जो है वो बहुत ही संगठित और जो है एक टीम वे बोलते हैं ना कि एक टीम वर्क के रूप में काम करती है, संगठित रूप में काम करती है और उसकी एक योजना बना के काम करती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम एक खाका बनाते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, इस वक्त हमें हमारा जो एक टारगेट जो कम्युनिटी है वो कौन सा है, कहाँ जाके हमें काम करना है, उस जगह तक पहुँचने से लेकर वहाँ किन किन जो है ज़रूरत के सामान की आवश्यकता है, उसके बाद कौन कौन लोग वहाँ जाएंगे, उनका वहाँ क्या काम होगा, कैसे वो लोगों को जागरूक करेंगे, उनके पास जो है लिखने पढ़ने की क्या क्या सामग्री है जिससे वो एक रिपोर्ट बना सके, तैयार कर पाएँ, लोगों के बीच जा कर के घूमें, उनसे बात करें। उसके बाद जो हमारी टीम काम कर रही है उसका भी मैं फीडबैक लेती हूँ लोगों से स्थानीय स्तर पर कि क्या वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से जाती हूँ। अगर हम बात करें कि हमारी टीम जब वहाँ से हट जाती है तो कई बार क्या होता है कि मैं ये बात नहीं पता होती है, टीम को भी नहीं बताती कई बार, लेकिन मैं अलग से जाकर देखती हूँ कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। फीडबैक लेने के बाद अगर हमसे कुछ और कुछ गुंजाइश रह जाती है तो हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो अपने काम का एक रिपोर्ट भी तैयार करना होता है, जब हम कर रहे कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए, तो वो हम लोग तैयार करते हैं। उसके अलग अलग स्किल के जो लोग हैं उनको हम अपनी टीम में शामिल करते हैं, और एक पूरा टीम वर्क है, और बिना टीम के तो इस तरह के काम हो ही नहीं सकता। सामाजिक कार्य अपने आप में ही टीम वर्क है, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि स्थानीय समुदाय के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, महिलाएं उन महिलाओं की भागीदारी कम से कम 50% हो, क्योंकि अगर हम उनको जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक उनके जो थोड़े से टीनेज बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी, थोड़े बुजुर्ग को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना जो एक रिटायरमेंट की एज होती है, ऐसा नहीं एक जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें भी ऐसा नहीं है कि लोग 60 के बाद भी करे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, अब उनके बच्चे संभाल लेते हैं, तो उन लोगों को भी जोड़ते हैं, उनको भी लगता है उनके खाली समय का सदुपयोग हो रहा है और लग रहा है वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं जिनको ना शहर में जाने के संसाधन है पढ़ने के और ना ही गाँव में रहकर कुछ अच्छा करने की सुविधा है, तो हम उन सबको जोड़ के अपने काम में लगाते हैं और वो हम अपने अपने जो स्किल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे काम को आगे बढ़ाने में करते हैं।
0: तो भाई देखिए, ये तो है इनकी डेडिकेटेड टीम। लेकिन अब बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप परिचय के साथ जुड़ सकते हैं या आपको लगता है कि आप भी इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो इन कामों को आप रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी सुविधा जब कभी भी आप कहीं किसी तक पहुंचा सकें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो पूनम जी, अगर कोई आपकी इस पहल के साथ जुड़ना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है या किसी को लगता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो किस तरीके से कोई जुड़ सकता है परिचय के साथ?
1: भावना जी, परिचय के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, चाहें तो आप अपने जो लोकल स्तर है, जो स्थानीय स्तर है, चाहे आप गांव से जुड़े हों चाहे छोटे शहर से जुड़े हों, वहां पर शिक्षा या जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई आपको नहीं रोक सकता, ये बहुत अच्छा काम है। और इंडिविजुअल लेवल पर भी कई लोग कर रहे हैं, मैंने ये देखा है कि लोग झुग्गी बस्तियों में जाके खाली टाइम में पढ़ाने का काम करते हैं, ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने सहयोग और साझेदारी के साथ संस्था के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से सोशल मीडिया या स्थानीय स्तर पर जो जानकारियाँ फैला सकते हैं, उस तरह से जुड़ के कार्य कर सकते हैं, अपने कौशल जो आपकी स्किल्स हैं, जैसे पढ़ने पढ़ाना, थोड़ी तकनीकी जानकारी है, मोबाइल का आप कैसे यूज़ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अगर आप AI यूज़ करके बच्चों को कुछ बता सकते हैं, तो ये सब काम करके भी मोबाइल का बेहतर इस्तेमाल सभी पीढ़ियों को, ऐसे महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसी भी तरह से आप चाह रहे हैं कि वो उससे पढ़ सकते हैं। आजकल मोबाइल पढ़ाई करने का भी बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, स्किल सीखने का बहुत माध्यम हो गया। अच्छा, कितने सारे ऐप हैं जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाते हैं, आप कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग ले सके इसके बारे में बताते हैं, तो इन सब की जानकारी यूथ जो है वो आराम से दे सकते हैं, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जो एक बात और कहना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो हमारी संस्था में कोई भी आके काम कर सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे वो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बस एक उनकी एक नीयत होनी चाहिए अच्छी, और कि वो मानवता की रक्षा के लिए, मानवता कैसे और बेहतर बने, हम कैसे बेहतर इंसान बने और दूसरों को भी बेहतर इंसान बनाएं, और उनके लिए जो कमज़ोर और गरीब तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मानसिकता के साथ अगर आप और इस संवेदनशीलता के साथ अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमें बहुत खुशी होगी।
0: वाकई दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस काम को रेप्लिकेट कर सकते हैं तो इस पूरी दुनिया में आप कहीं भी इस काम को कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप इस संस्था की बातों से रेजोनेट करते हैं, उनके विजन से रेजोनेट करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर बन के काम कर सकते हैं, टाइम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी स्किल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम सब इंसान हैं और अपनी मानवता हमें जिंदा रखनी चाहिए। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबा सफर चला पूनम सिंह जी के साथ, जो कि परिचय एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं। अब पूनम जी बहुत सारी बातें जानी कि किस तरीके से आप आने वाले समय में और बीते समय में परिचय के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उस समाज सेवा को करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता है हर इंसान का धर्म है। जब हम इस समाज से बहुत कुछ लेते हैं, चाहे हम धन लेते हैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट एज बिजनेसमैन, चाहे हम शिक्षा लेते हैं और हम आगे उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बहुत सारे लोग तो देखना चाहिए कि इसी समाज से हम सारा पैसा कमाते भी हैं, तो क्या हम वापस इस समाज को दे नहीं सकते हैं? ये हमेशा से मैं आप लोगों को कहती आई हूँ कि बहुत जरूरी है। तहे दिल से धन्यवाद पूनम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: सभी के लिए मेरा मैसेज यही होगा, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सिखाया है कि जब भी हम कुछ भी कदम उठाने की कोशिश करें, हमारा हर एक कदम कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक एक विचार करें कि क्या जो सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति है, हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या उसका लाभ उस इंसान को मिल पाएगा? उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें, उनसे जुड़ने की कोशिश करें और उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। साथ ही जो है यह हमारी परिचय जो एक ऐसी पहल है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करती है, और हमारे विश्वास है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर निश्चय ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर मानवता की राह पर एक कदम बढ़ाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें, अंधविश्वास को दूर करें, जरूरतमंदों की मदद करें, पर्यावरण की जो है सुरक्षा और उनको उसका पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने का काम करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और सभी जीवों के लिए जीने योग्य बनाएं, एक जागरूक और सशक्त समाज बनाएं, बदलाव की शुरुआत जो है खुद से करें और समाज को बेहतर बनाने में जो कि हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाएं और परिचय के साथ मिलकर एक बेहतर संवेदनशील और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करने की कोशिश करें। परिचय एक सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि एक सोच है, एक ऐसी सोच जो समाज को जोड़ती है, सशक्त बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जाते जाते मैं एक लाइन से अपनी बात का समापन करना चाहूँगी, ये भी हमारी जो है ये बात भी हमारे राष्ट्रपिता के जो है उनका प्रिय जो भजन था उसी से जुड़ा हुआ है। नरसिंह मेहता जी ने लिखा है कि वैष्णव जन जो तेनिज कहिए, वैष्णव जन जो तेनिज कहिए, पीड़ पर आई जाने रे, बड़ दुखी उपकार करे सो, मन अभिमान ना आए रे। और ये तो गांधी जी की बात हुई, और अगर हम अपने राज कपूर जी की बात करें तो उनकी एक फिल्म थी अनाड़ी जी। और उसका एक बहुत ही फेमस गाना हुआ करता था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द दिल से

भाई जीने का नाम मुझे लगता है सबसे सही यही हो सकता है, जहां आप ये सोच लें कि आप अपने लिए जिए। देखिए हमेशा मैं कहती हूँ इंसान अपने लिए बिल्कुल जीता है, आप पूरी जिंदगी प्लान करते हैं, आप अपने 365 डेज साल के शायद 1 जनवरी को प्लान कर लेते हैं, लेकिन इस प्लानिंग में हर रोज सिर्फ एक इंसान का अगर आप भला कर सकते हैं तो आप सोचिए एक साल में यू विल रीच 365 पीपल, आप 365 लोगों का भला कर सकते हैं। और हर इंसान अगर ऐसा सोचने लग जाए तो क्या आपको लगता है कि हम बेनिफिशरीज कहीं रह जाएंगे जिन्हें कि किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी? बट परेशानी ये कि हम ह्यूमंस होते हुए अपनी मानवता को भूल रहे हैं। सो इसे जिंदा रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि वक्त है आपसे इजाजत लेने का।

आपसे मेरी मुलाकात होने वाली अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में, बट देन तब तक के लिए आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहेंगे खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी,

0: और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए, पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठते कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો 101 7.2 FM પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और एक बार फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी की कहानी, उनके स्ट्रगल्स को, उनकी फेलियर्स को और साथ ही उनके सक्सेस के पीछे छुपे उनके रियल लेसन्स को। क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं होता, बल्कि सक्सेस होता है अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का। और जब किसी आम इंसान का आइडिया पूरी दुनिया की आदत बन जाए, तब वो सक्सेस सिर्फ सक्सेस ही नहीं रहती है, बल्कि लेजेंडरी बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी की, जी हाँ, एक ऐसी ही यंग एंटरप्रेन्योर की, जिसने एक छोटे से कॉलेज हॉस्टल रूम से शुरू किया था अपना सफर और आज दुनिया के बिलियंस लोग उनसे कनेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है फेसबुक के फाउंडर, मेटा के सीईओ और दुनिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर में से एक, मार्क जुकरबर्ग। सोचिए, एक सिंपल स्टूडेंट, कोडिंग का शौक और एक लैपटॉप और एक आइडिया, बस इतनी सी चीजों ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन की दुनिया को ही बदल दिया। आज हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, फोटोज को शेयर करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, फ्रेंड से कनेक्टेड भी रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस रेवोल्यूशन के पीछे की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही होगी, है ना? आपने भी अभी अभी सोचा ना? इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ ये खास एपिसोड आपके लिए, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में, उस जर्नी के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि अगर विजन क्लियर हो और मेहनत अगर आपकी सच्ची हो, तो एज या बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करता। तो तैयार हो जाइए इस इंस्पायरिंग जर्नी के लिए, जहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट बना दुनिया के लिए टेक आइकॉन। जी हाँ, मैं इसकी आज बात करने वाली हूँ, पर लूंगी अभी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों सक्सेस मंत्रा में आज हम चल रहे हैं एक यंगस्टर की जर्नी के साथ। जी हाँ, एक यंगस्टर जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ, इनकी स्टोरी, इनकी इंस्पायरिंग जर्नी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाली है क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान की जर्नी की शुरुआत उसके बचपन से होती है, तो हम भी वहीं से ही शुरू करेंगे। कुछ लोग बचपन में ही अपने इंटरेस्ट को पहचान लेते हैं और कुछ लोग दुनिया के रूल्स को फॉलो करते करते अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग उन लोगों में से थे जिन्होंने बहुत छोटी सी एज में ही समझ लिया था कि उनका पैशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स है। जी हाँ दोस्तों, मार्क का जन्म 14th ऑफ मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ। अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले मार्क बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और क्यूरियस नेचर के थे। उन्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाना पसंद नहीं था बल्कि वो जानना चाहते थे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जब बहुत से बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे तब मार्क उन गेम्स को क्रिएट करने की कोशिश करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ यूजर ही नहीं बनना चाहते थे बल्कि क्रिएटर बनना चाहते थे। सिर्फ 12 साल की एज में मार्क ने एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था जकनट। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर उनके फादर की डेंटल क्लिनिक और घर के कंप्यूटर को कनेक्ट करता था। सोचिए दोस्तों, जिस एज में बच्चे स्कूल होमवर्क से परेशान होते थे उस एज में मार्क कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे। उनके पेरेंट्स ने भी उनका टैलेंट पहचाना और उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने मार्क के लिए प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर भी अरेंज कर दिया और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि कुछ टाइम बाद ट्यूटर को भी लगने लगा कि मार्क की लर्निंग स्पीड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि टैलेंट तभी ग्रो करता है जब उसे सपोर्ट और डायरेक्शन मिले। अगर आपके अंदर किसी चीज का पैशन है तो उसे इग्नोर मत करिए, हो सकता है वही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बन जाए। मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी ये फेस हमें सिखाता है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, वो छोटी छोटी सी हैबिट्स, क्यूरियोसिटी और लर्निंग से बिल्ड होता है। और जो लोग बचपन से ही सीखना नहीं छोड़ते हैं वही आगे चलकर दुनिया को नए आइडियाज भी देते हैं। तो वक्त हो गया है अभी छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। लाती हूँ मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ नई इंस्पायरिंग जर्नी, जिसके साथ आज हम फिर से चल रहे हैं। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग। जी हाँ, फेसबुक के ओनर, जी हाँ, फेसबुक की जिससे पहचान बनी उनके ओनर की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जब बचपन से ही आपको सही डायरेक्शन पता है, तब वही पैशन एक दिन दुनिया को बदलने का रीजन बन सकता है। जी हाँ, मार्क ज़करबर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्कूल कंप्लीट करने के बाद मार्क ने एडमिशन लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। यहाँ पहुंचना ही बहुत बड़े अचीवमेंट की बात होती है। लेकिन मार्क सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं रहे, उनका इंटरेस्ट अभी भी कोडिंग और इनोवेशन में ही था। हार्वर्ड में मार्क अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए काफी फेमस हो गए थे। लोग उन्हें कंप्यूटर जीनियस के नाम से भी जानने लगे थे। वो हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और स्टूडेंट्स के लिए कई ऐसे फन प्रोजेक्ट्स भी बनाते थे। इसी दौरान मार्क ने एक वेबसाइट भी बनाई थी जिसका नाम था फेस मास। इस वेबसाइट पर स्टूडेंट फोटो कंपेयर कर सकते थे और वोट कर सकते थे। वेबसाइट बहुत तेजी से वायरल भी हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी ने प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इसे बंद कर दिया। बहुत लोग इस सिचुएशन के बाद रुक जाते, शायद डर जाते, लेकिन मार्क ने फेलियर को एंड नहीं लर्निंग माना और वही लर्निंग आगे चलकर फेसबुक का फाउंडेशन बन गई। 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने अपने हॉस्टल रूम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो था द फेसबुक। इनिशियली ये सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट के लिए था। इसका पर्पस सिंपल था, स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, प्रोफाइल बना सके और कम्युनिकेशन इजी हो सके। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सिंपल आइडिया ही दुनिया के बिगेस्ट रेवोल्यूशन में से एक बन जाता है। फेसबुक कुछ ही दिनों में हार्वर्ड के स्टूडेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, फिर इसे दूसरी यूनिवर्सिटी तक एक्सपेंड किया गया और धीरे धीरे फेसबुक पूरी दुनिया में स्प्रेड होने लगा। सोचिए, एक हॉस्टल रूम, एक लैपटॉप और एक आइडिया, बस इतनी सी शुरुआत ने सोशल मीडिया का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। यहाँ से हमें एक पावरफुल लेसन भी मिलता है कि आपको दुनिया बदलने के लिए ना कोई परफेक्ट रिसोर्सेस नहीं चाहिए होते, कभी कभी ना एक स्ट्रॉन्ग आइडिया और एक एक्शन ही इनफ होता है चीजों के लिए। मार्क ज़करबर्ग की जर्नी का ये फेस हमें बताता है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा बड़े ऑफिस या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से नहीं आती है, कभी कभी वो एक सिंपल कॉलेज प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी आ सकती है। तो इसलिए जब आपको कभी कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट मिले तो उस पर मन लगाकर काम करिए, क्या पता आपका वही काम आगे चलकर आपके फ्यूचर में काम आ जाए। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, बी

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की इस जर्नी पर हम चल रहे हैं मार्क जुकरबर्ग की जर्नी के साथ, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि लेकर आ गई हूं आज मैं, क्योंकि कई लोग ना उनसे रिलेट भी कर पाएंगे, वो कोई इतने बड़े नहीं है। आपके कई लोग तो ऐसे हम उम्र के ही होंगे उनके, जो कि ये सोचते होंगे कि बताओ यार ये यहाँ पर पहुँच गए और हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई होगी। पर दोस्तों कहते हैं ना कि अगर लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है अपनी लाइफ में, कोई सक्सेस हासिल करनी है, तो बस मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए और आपको वो चीज़ें मिल जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। एक तरफ होती है सिक्योरिटी और दूसरी तरफ होता है सपना, और सक्सेसफुल वही बनते हैं जो कभी कभी अपने सपनों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, मार्क की लाइफ में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया। फेसबुक अब हार्वर्ड के बाहर भी पॉपुलर होने लगा था, स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद कर रहे थे, रोज नए यूजर्स इसके साथ जुड़ रहे थे और मार्क को समझ आ गया था कि उसका आइडिया सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही नहीं रहा है बल्कि कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेसबुक को ग्रो करने के लिए फुल टाइम फोकस चाहिए था और उस वक्त मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रहे थे। एक तरफ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री और दूसरी तरफ एक अनसर्टेन स्टार्टअप। अगर आपकी लाइफ में ऐसा डिसीजन आए तो आप क्या चूज करेंगे, सोचिए और अपने आप से पूछिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सेफ ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया है और इसकी अगर मुझे डिग्री मिल रही है तो मैं क्यों ना यही कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन उनमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेते हैं। जी हाँ, सिर्फ 19 साल की एज में ही उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और पूरा फोकस उन्होंने अपना फेसबुक पर कर दिया। ये डिसीजन इजी नहीं था, उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, कई लोगों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टेप है, कुछ लोगों को लगा कि फेसबुक एक थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड है जो कुछ टाइम बाद शायद बंद हो जाएगा, लेकिन मार्क को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। और बस आपको कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके भरोसे पर भी मिलती है। यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि मिलता है वो है कि कभी कभी लाइफ में ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। जी हाँ, रिस्क लेना डेंजरस हो सकता है लेकिन बिना रिस्क लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलना भी मुश्किल होता है। मार्क और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, उन्होंने कैलिफोर्निया शिफ्ट होकर एक स्मॉल ऑफिस स्टार्टअप किया। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, प्रेशर ज्यादा था लेकिन पैशन और डेडिकेशन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था। और धीरे धीरे फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं रहा बल्कि दुनिया का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन गया। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और काम में लग जाना चाहिए। इस स्टोरी का रियल लेसन ये है कि अगर आप किसी सपने के लिए ट्रूली पैशनेट हैं तो आपको उसके लिए हार्डवर्क और डिफिकल्ट डिसीजन लेने की रेडीनेस भी रखनी होगी। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और सक्सेस मंत्रा में आज हम चल रहे हैं मार्क जुकरबर्ग के जर्नी के साथ। जी हाँ, उनकी लाइफ की जर्नी के साथ कि कैसे उन्होंने फेसबुक का स्टार्टअप किया, कैसे कैसे उसके ऊपर काम करा और कैसे आज वो एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में दुनिया के सामने खड़े हैं। दोस्तों, जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं ना, तो हमें उनकी अचीवमेंट्स नजर आती है, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे कितने स्ट्रगल्स और क्रिटिसिज्म होते हैं वो अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। मार्क जुकरबर्ग की जर्नी भी इससे अलग नहीं थी। फेसबुक जैसे जैसे ग्रो होने लगा, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ने लगे, सक्सेस के साथ प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लगा। कई लोगों ने फेसबुक के आइडिया पर क्वेश्चन रेज किए, कुछ लोगों ने मार्क पर आइडिया कॉपी करने का एलिगेशन भी लगा दिया, लीगल इश्यूज भी आए और कोर्ट केसेस भी हुए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टाइम के साथ फेसबुक दुनिया का बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। बिलियंस ऑफ यूजर्स डेली इसे यूज करने लगे, लेकिन इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी जैसे सीरियस इशू भी सामने आए। कई बार फेसबुक कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रहा, लोगों ने कंपनी की पॉलिसीज पर सवाल उठाए, गवर्नमेंट ने भी अकाउंटेबिलिटी मांगी। मार्क जुकरबर्ग को पब्लिक हियरिंग और इंटरव्यूज में टफ क्वेश्चंस को फेस करना पड़ा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि सक्सेस का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं होता, बल्कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ऐसे सिचुएशंस में बहुत लोग प्रेशर में टूट जाते हैं, लेकिन मार्क ने हर क्रिटिसिज्म को एक लर्निंग की तरह समझा। उन्होंने ओपनली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और कंपनी को इम्प्रूव करने पर फोकस किया। यहाँ से हमें एक पावरफुल लेसन मिलता है कि फेलियर और क्रिटिसिज्म से भागना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं तो चैलेंजेस आना नॉर्मल है। रियल सक्सेस इस बात में है कि आप उन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपटीशन भी फेसबुक के लिए बहुत स्ट्रांग था। न्यू सोशल मीडिया ऐप मार्केट में आ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि फेसबुक का एरा शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्क ने इनोवेशन नहीं रोका। उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया और कंपनी को फ्यूचर के अकॉर्डिंग इवॉल्व भी किया। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी का ये फेस हमें सिखाता है कि मिस्टेक करना फेलियर नहीं होता, उन मिस्टेक से सीखना और स्ट्रॉन्ग कमबैक करना ही रियल सक्सेस होती है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हां, हर हफ्ते आपके लिए लेकर आ जाती हूं कोई नई जर्नी। जी हां, कोई नई जर्नी जो कि सक्सेसफुल हो और आपको वो इंस्पायर कर सके, आपको मोटिवेट कर सके कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इस जर्नी पर हम चल रहे हैं मार्क जकरबर्ग की जर्नी के साथ, जो कि है फेसबुक के फाउंडर, मेटा के सीईओ, जिन्होंने इसको बनाया। आज हम उनके बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, इसके बारे में भी। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में बहुत आती है, पर उससे उठकर आप अगर सक्सेस को हासिल करते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सिर्फ टैलेंट या लक किसी को सक्सेसफुल नहीं बनाता है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस माइंडसेट। और मार्क जकरबर्ग की लाइफ में भी ये तीनों चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मार्क जकरबर्ग अक्सर सेम टाइप की सिंपल ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। कई लोग इस बात को सिर्फ फैशन चॉइस समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग माइंडसेट है। जी हाँ, मार्क का मानना है कि हमें अपनी एनर्जी और डिसीजन मेकिंग पावर उन चीजों पर लगानी चाहिए जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी अननेसेसरी डिसीजंस को, जैसे रोज क्या पहनना है, उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय वो अपना फोकस इनोवेशन और कंपनी ग्रोथ पर रखते हैं। यहाँ से हमें एक और सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन मिलता है, सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखते हैं। मार्क जकरबर्ग का वर्क एथिक भी बहुत स्ट्रांग माना जाता है। फेसबुक के अर्ली डेज में वो उनकी टीम कई कई घंटे कंटिन्यूसली काम करते थे। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था कि बेटर प्रोडक्ट बनाना और यूजर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होता है, स्मार्ट थिंकिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। मार्क हमेशा फ्यूचर ट्रेंड को समझने की कोशिश करते रहे। जब दुनिया सिर्फ फेसबुक पर फोकस कर रही थी, तब वो ऑलरेडी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे थे। इसी विजन के वजह से फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा रखा गया। इसे हमें एक और इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो चेंज को एक्सेप्ट करना और कंटिन्यूसली इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इतनी ह्यूज सक्सेस और वेल्थ के बाद भी मार्क रिलेटिवली सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। वो फैमिली टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं और सोशल कॉजेस में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल होना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि रियल सक्सेस वही होती है जहाँ पर बैलेंस को मेंटेन किया जाए, लर्निंग कंटिन्यूस रखा जाए अपना और सोसाइटी को भी वैल्यू दी जाए। मार्क जकरबर्ग की हैबिट्स हमें ये सिखाती हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, फोकस्ड हैं और लर्निंग माइंडसेट में रहते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नेह आपके साथ लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हर बात होती है सक्सेस वाली। और दोस्तों, आज हमने मार्क जुकरबर्ग की जर्नी में अलग अलग फेसेस को देखा है। एक क्यूरियस चाइल्ड से लेकर दुनिया के बिगेस्ट टेक एंटरप्रेन्योर में से एक बनने तक का सफर। आज इस पूरी जर्नी में हमें सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी देखने को मिले हैं। सबसे पहला लेसन है कि ड्रीम बिग, इवन इफ यू स्टार्ट

स्मॉल। मार्क ने किसी ह्यूज ऑफिस या फिर मैसिव इन्वेस्टमेंट से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने एक सिंपल से हॉस्टल रूम से कोडिंग स्टार्ट की थी और आज उनका आइडिया बिलियंस लोगों की डेली लाइफ का पार्ट है। इसलिए कभी भी अपने स्मॉल बिगनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। और दूसरा लेसन है, स्किल्स आर योर रियल पावर। मार्क जुकरबर्ग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी कोडिंग और लर्निंग माइंडसेट था। आज के टाइम में भी डिग्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअसली लर्न करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए स्किल्स सीखते रहते हैं वही फ्यूचर को लीड करते हैं। और तीसरा लेसन है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जी हाँ, हार्वर्ड जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी को लीव करना इजी डिसीजन नहीं होता, लेकिन मार्क ने अपने विजन पर ट्रस्ट किया। इसका मतलब रेकलेस डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि अपने गोल्स के लिए उसके साथ चलना होता है। चौथा लेसन है, फेलियर और क्रिटिसिजम्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, फेसबुक को कंट्रोवर्सीज, लीगल इश्यूज और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन मार्क ने हर चैलेंजेस को इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो प्रेशर में भी रुकते नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा लेसन वो है, इनोवेशन नेवर स्टॉप। टेक्नोलॉजी रोज चेंज होती है। जो लोग सिर्फ प्रेजेंट में कंफर्टेबल हो जाते हैं वो धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग हमेशा फ्यूचर की तरह देखते रहे और इसी वजह से वो कंटिन्यूसली रेलिवेंट भी बने रहे। दोस्तों, मार्क की स्टोरी सिर्फ एक बिलियनियर की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आइडियाज पावरफुल होते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है, लर्निंग एटीट्यूड है और कंसिस्टेंसी है, तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, ले रही हूँ आपसे इजाजत। मिलते हैं सक्सेस मंत्रा के अगले एपिसोड में एक और नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग बिग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: हेलो पीपल, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम रेडियो रीबूट, जहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आजकल के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम रेडियो रीबूट। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मुद्दे की, एक ऐसी ही चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका असर हर घर तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की और उनके इंपैक्ट की जो हमारी जनरेशन पर पड़ रहा है। और आज का जमाना रील्स का, लाइक्स का और फॉलोअर्स का है। हर दूसरा बच्चा या फिर हर दूसरा जेंजी या कहे तो हर दूसरी जनरेशन किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है, चाहे वो गेमिंग हो, फैशन हो, फिटनेस हो या फिर डेली इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो। कभी तो लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ही उनकी दुनिया बन गई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दुनिया उन्हें इंस्पायर कर रही है या फिर कंफ्यूज? क्या इन्फ्लुएंसर कल्चर उन्हें क्रिएटिविटी सिखा रहा है या बस एक कंपटीशन के रेस में डाल रहा है? क्या लोगों की इंडिविजुअलिटी कहीं सच में सोशल मीडिया की वैलिडेशन के बीच में तो नहीं खोती जा रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए या समझदारी से बैलेंस बनाना चाहिए? इसी टॉपिक पर बस आज हम बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारी नई जनरेशन के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज इस थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि रेडियो रीबूट में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम लोगों की सोच बदलते हैं और लोगों की पीओवी भी जानते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर हम आ गए हैं मानव रचना के स्टूडेंट से कुछ बातें करने, बच्चों के कुछ थॉट्स के बारे में जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कहे तो उनके इंपैक्ट से क्या समझ रहे हैं और क्या जानते हैं। सर सबसे पहले मेरे साथ है मुस्कान, आइए जानते हैं मुस्कान से कि वो उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या राय है। मुस्कान स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: Hi, so this is Muskan from BA BEd course, which is the School of Education and Humanities from the third year, fifth sem. So I'm really glad to be with the Radio Manav Rachna, and yeah, I'll definitely tell about my views on this.
2: So Muskan, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम आज बात कर रहे हैं social media influencer की, आपको क्या लगता है कि असलियत में social media influencer है कौन? क्या हर एक content creator जो कि थोड़ा सा famous होने के बाद कहता कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्या वो सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है?
3: So in today's generation, social media influencers has a huge impact on everyone's life. ये वो एक वैसे इंडिविजुअल है जिन्होंने बहुत सारी पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट गेन किया है थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, TikTok और Instagram, जो कि हर एक यूथ देखता है। और फिर अभी के जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया है सर्टेन जैसे फिटनेस ट्रेंड्स पे या फिटनेस टिप्स पे, बहुत लोग रिलाई करते हैं फॉर सर्टेन फैशन टिप्स। इनफैक्ट कई लाइक फीमेल यूथ फोकस करती है ऐसे सर्टेन मेकअप टिप्स एंड मेनी मोर। और इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव साइड, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि जस्ट इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। आप अपने घर पे रहकर सिंपली स्क्रॉल कर और बहुत कन्वीनियंसी के साथ आपको बहुत सारे फिटनेस टिप्स मिल जाते हैं, आपको अपने एपेटाइट के बारे में पता लगता है कि व्हाट ऑल यू कैन ऐड, सर्टेन फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है। बट एज वी नो कि एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव साइड, तो टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, एवरी वन टूडे वॉन्ट्स टू बी अ इन्फ्लुएंसर, बट उसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स फॉलोअर्स, लाइक्स, अटेंशन, जो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एज अ कंपेरिजन बेस कर देती है, बिकॉज पीपल लूज देयर सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं कि दे वॉन्ट टू गेन फॉलोअर्स, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत लाइक्स चाहिए। तो यार डेफिनेटली एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड।
2: मुस्कान मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर ने हमारे ऑडियंस को इतना तो समझा दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असलियत में होते क्या हैं। मैं आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि असलियत में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान करे कैसे?
3: इफ यू टॉक अबाउट रियलिटी तो इट इज डिफिकल्ट टू नो, बट हाँ हम सर्टेन एस्पेक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं. क्यों नहीं पॉजिटिव साइड पे फोकस करना, बिकॉज अभी के जनरेशन में एवरीथिंग हैज अ फ्यूचर, एवरीथिंग वी कैन रिलाई ऑन इट कि हम अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं बींग अ एंटरप्रेन्योर और बींग अ इन्फ्लुएंसर. तो हाँ, टू सी अ गुड साइड सोशल मीडिया, आप अगर पॉजिटिव वे में ले जाए तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को अच्छे लेसन दे सकते हैं जो कि उसे एक पॉजिटिव साइड में ले जाएगी, ना कि हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर फोकस कर पाएंगे.
2: बिल्कुल. थैंक यू सो मच मुस्कान.
3: थैंक यू सो मच.
2: अब हमारे साथ जुड़ गई है राशि. राशि से जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. सो राशि, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर जगह है, और शायद उनके इन्फ्लुएंस से हम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सच में रियल न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर फेक न्यूज़ के पीछे कुछ ऐसे प्रमोशंस करते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर हमारे असर पड़ता है?
3: सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का मेन रोल क्या है? हमें मोटिवेट करना, एक गुड वे में लाइफस्टाइल को शो करना. सो लाइक जितना हम लोगों ने देखा है, हम लोग रील्स देखते हैं एट्सेट्रा एंड ऑल, तो हमने ये देखा है कि वो सिर्फ एक हैप्पी एंड गुड लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ शो करते हैं. सो बेसिकली विच इन गुड लग्जरी लाइफ, ट्रैवलिंग, ईटिंग एट फैंसी प्लेसेज एंड ऑल. बट आई गेस ये एक गुड पार्ट भी है, बिकॉज जो बेसिकली अगर हम लोगों को देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं और वो उससे बहुत मोटिवेट भी होते हैं. तो अगर इन्फ्लुएंसर्स ही बहुत ही ऐसा डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव वे शो करेंगे तो शायद वो भी एक रॉन्ग वे हो जाएगा. बट आई बिलीव कि इट शुड बी न्यूट्रल. प्लस इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो लाइक ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पर बिलीव करना इज हार्मफुल. सो लाइक पीपल शुड ऑलवेज like always not try to copy like what influencers are telling. They should live in reality.
2: तो आपके आंसर में एक चीज़ थी कि कोई भी चीज़ को हम एक बार रीचेक करें. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राशि, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में अगर हम देखें हमारी यूथ, 60% हमारी यूथ ऐसी है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन को और मिसलीडिंग चीज़ों को बिना रीचेक करे उसे शेयर कर देती है, अपनी स्टोरीज पर लगा देती है, आसपास में फ्रेंडों के पास शेयर कर रही है, तो क्या ये सही है? आप अपना क्या POV देना चाहेंगी उन लिसनर्स को जो ऐसा कर रहे हैं?
3: सी बेसिकली दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर हम पास ऑन करते हैं, पहले तो बिना कन्फर्म करे हमें कभी भी नहीं पास ऑन करनी चाहिए, क्योंकि वही र्यूमर्स बहुत गलत चीज़ है. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग. एंड लाइक वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन गवर्नमेंट वेरीफाइड न्यूज़, जो कि हमारे वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में आती है. एंड कभी भी वी शुड नॉट लाइक प्रमोट और लाइक शेयर दी फेक न्यूज़. एंड आई नो सम इन्फ्लुएंसर्स डू दिस थिंग टू गेट व्यूज एंड ऑल दो स्टफ, बट दिस इज़ रियली रॉन्ग. एंड लाइक बींग लाइक ऑडियंस, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग भी पहले क्रॉस चेक करें एंड देन उस पर बिलीव करें.
2: बिल्कुल. थैंक यू सो मच राशि.
3: वेलकम.
2: अब हमारे साथ है आयुषी. आयुषी से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए उनके क्या POV है. सो आयुषी, आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना में.
4: हेलो.
2: सो आयुषी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारा इंडिया top 3 कंट्रीज में से आता है सोशल मीडिया फ्रॉड के केसेस में. तो आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो क्रिप्टो करेंसीज हो गई या फिर कोई ऐसे स्कैम्स जिसको फॉरवर्ड करा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है कि आप इसे खेलिए, उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो उससे कैसे बचें?
4: जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में स्कैम हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है जो वो क्रिएटर्स लाइक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं, उनको लगता है दे आर लाइक दे ब्लाइंडली फॉलो देम. सो इस वजह से वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ही स्कैम हो जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई इट बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक.
2: सो आयुषी, आपने कहा कि ओवर शेयरिंग हो रही है. ओवर शेयरिंग तो हम सब देखते हैं कि हम रील स्क्रॉल करने बैठते हैं, हम पता नहीं 25-30 रील ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, चाहे वो रियल हो या फेक न्यूज़ हो या कोई भी चीज़ हो. तो आप मुझे एक बार बताइए कि ओवर शेयरिंग से कैसे बचें?
4: सो एक्चुअली आजकल जैसे स्टूडेंट्स एंड ऑल ये सब क्या करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे सीरियसली दे शेयर देयर प्राइवेसी एंड यू नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, एंड वो कुछ भी शेयर

0: देता है, लाइक उनकी लोकेशन हो गई जहाँ वो पार्टी कर रहे हैं या कहीं भी वो घूमने जा रहे हैं। इससे क्या होता है, साइबर क्राइम्स की जो रेट है काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं, जो दैट डैमेजेस देयर प्राइवेसी। सो वी नीड टू थिंक बिफोर वी पोस्ट, एंड ऑल्सो हमें अपनी यू नो सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स ऑन कर लेनी चाहिए फॉर प्राइवेसी रीजंस, एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से।
1: अच्छा, तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपके पास ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट आई हो जो कि फेक आई डी से हो? ऐसा बहुत बार होता है लड़कियों के साथ, हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसे लड़के की इमेज लगा करके और उनके पास फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उन्हें कैसे पहचानते हैं?
0: पहली बात तो एक्चुअली अननोन रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, जो म्यूचुअल्स होते हैं मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। सो ये चीज़ है।
1: तो आप हमारी ऑडियंस को, हमारी लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि थिंक बिफोर यू पोस्ट, एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स डोंट ओवर शेयर इट ऑन सोशल मीडिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: ओके, सो कीते, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें हर जगह से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है, अपनी अनरियलिस्टिक दुनिया को दिखाना, लोगों को बताना कि हम कितने खुश हैं, या हमेशा एक कहीं तो पॉजिटिव साइड को ही दिखाना लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि हम अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, तो क्या वो सही है? क्या उन्हें कॉपी करते करते कहीं हम अपनी रियल दुनिया से पीछे तो नहीं भाग रहे?
2: येस, आई फील कि वो अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स क्रिएट तो करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई या समर ट्रिप्स हो गई, उसमें वो अपना लाइक प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, सो हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, एंड हम अपना फोकस, जो हमारा जो रियल फोकस होना चाहिए लाइक स्टडीज़ हो गई, जैसे मेरा स्टडीज़ है, तो उससे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो आई वुड से कि हाँ, हम थोड़ा अपने इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं और वो ट्रेंड हम भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा करें।
1: सो कीर्ति, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ चंद कहीं तो फॉलोअर्स या फिर लाइक्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि सच में सही है? कहीं आगे चल करके उनके लिए एक मुसीबत ना बन जाए?
2: हाँ, मुझे लगता है कि वल्गर कंटेंट जो थोड़ा है लाइक थोड़े ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा सा नहीं होता, वो नेगेटिविटी तो थोड़ा फैला रहा है, एंड उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं रादर दैन जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यूथ को पहुंचा सकते हैं। सो आई फील कि इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में जाके धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ही और फैलाएंगे।
1: ओके, सो कीते, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को?
2: कि इफ़ यू सोशल मीडिया, लाइक सोशल एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, सो सोशल मीडिया अगर आप अच्छे से यूज़ करें विद अ प्रॉपर टाइम लिमिट, सही है सोशल मीडिया, अगर ज़्यादा यूजेज करें या थोड़ा नेविगेट हो जाए आप रॉन्ग उसमें चले जाएँ, तो इट्स
1: कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट डालेगा हमारे ऊपर।
2: हाँ जी,
1: बिल्कुल। थैंक यू सो मच कीर्ति। अब हमारे साथ है पारस। पारस, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो शेयरिंग की भी बात होती है। शेयरिंग जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में यूथ हर चीज़ को शेयर कर रहा है, चाहे अपनी फोटोज हो, वीडियोज हो, या कहीं घूमने गए हो, हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें जो नॉर्मल लग रही है, क्या ये सही है सच में?
3: नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आजकल देखो अब क्या होता है, आजकल लोग अपने ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को असाइड वो सारे काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है, बी इट फूड, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, ट्रैवल, तो वो सब सारा का सारा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया ऐप्स पे शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ वो अलग अलग हो जाती है और वो अपने इमोशन भूल जाते हैं।
1: आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो शायद नेगेटिविटी और ट्रोलिंग से ज़्यादा फेमस होते हैं। ये चीज़ तो हम सबने देखी होगी कि अगर कोई इंसान एक बार ट्रोलिंग के फेज में आ जाए तो उसके बाद उसका नाम हर जगह होता है, तो क्या ये सही है? क्या हम आज के टाइम में ट्रोल होकर के अपने आप को फेमस करके अपने कल के जीवन के लिए क्या ये सही कर रहे हैं?
3: हाँ, जैसे कि मान लो कोई किसी इंसान ने अपनी रिलेशनशिप अपलोड कर रखी है किसी सोशल मीडिया ऐप पे, लेकिन उससे क्या होता है कई इन्फ्लुएंसर उसको अपने सोशल मीडिया ऐप में डाल के उन लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए वो लोगों की ट्रोलिंग करते हैं। लेकिन वो ट्रोलिंग क्या होता है कि जिसके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है वो उसको पसंद नहीं आती, उससे उसके जो फैमिली में होता है उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है और जिससे उससे क्या होता है उसकी पूरी लाइफ ऐसी हो जाती है।
1: आपने कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
3: या मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो। आप करो सोशल मीडिया के अंदर अपनी कंटेंट करो, पोस्ट करो, लेकिन पर्सनल लाइफ को भी अपना असाइड करके थोड़ा कम करो।
1: थैंक यू सो मच पैरल।
3: थैंक यू।
1: अब हमारे साथ है कुंज। कुंज ने जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। कुंज, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया को देखकर ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो गई है, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको मुझे एक बात बताइए कि हम जब उन लोगों को देखते हैं हमें ये लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है तो हम वो चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, पर मुझे एक चीज़ जाननी है कि उसकी वजह से हम जो अपनी लाइफ का जो असली फोकस है उसे खो करके हम कहीं उस दुनिया में तो नहीं जा रहे जो सच में फेम के लिए या फिर एक पॉपुलैरिटी के लिए बनी हो।
4: सोशल मीडिया फेम को बहुत ओवरनाइट फेम की तरह देखा जा रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत सालों की मेहनत और फेलियर्स को छुपा देता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओवरनाइट फेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है वो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम किसी और के भरोसे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल बहुत लोग ट्रोलिंग की मदद से सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए।
1: कुंज, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो बात हो अगर हम बात करें वीडियोज़ की, चाहे वो वल्गर वीडियोज़ हो या फिर हेरेसमेंट की वीडियोज़ हो या फिर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर कोई ऐसे मान लो कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। पर आपको क्या लगता है कि ये सच में एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है या फिर ये हमारे जान के लिए एक रिस्क हो सकता है या कहीं ये इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जा रहा है?
4: अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी को हैरेस करके या किसी वल्गैरिटी को यूज़ करके फेमस हो रहे हैं तो वो खाली एंटरटेनमेंट तो नहीं रह जाता, मेरे हिसाब से वो क्राइम की तरफ चला जाता है। हमें ये दूसरों की ये समझना चाहिए कि दूसरों की डिग्निटी और प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए हमें किसी, और मेरे हिसाब से इन क्राइम्स के लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, ताकि जो लोग इस तरीके से फेम पाने की कोशिश करते हैं वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे और मेहनत करके ही आगे बढ़े।
1: तो दोस्तों, आज के रेडियो रीबूट एपिसोड में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वर्ल्ड में एक नजर डाली है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर ग्लैमरस भी है, ग्रोथ भी है, पर कंफ्यूजन भी साथ में है। हमने समझा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बच्चों के सेल्फ इमेज, उनके ड्रीम्स और उनके डिसीजन तक पहुंच चुका है। कहीं ये इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया है तो कहीं कंपैरिजन का प्रेशर लेकर आ रहा है, और ये रीजन बहुत बड़ा है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर हमेशा बुरा नहीं होता। अगर लोगों को राइट डायरेक्शन दी जाए वो डिजिटल वर्ल्ड में सीख भी सकते हैं नए स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी भी। जरूरत है सिर्फ एक बैलेंस और एक अवेयरनेस की, बच्चों को समझने की, बच्चों को समझाने की, ना कि उन्हें रोकने की। सोशल मीडिया को विलन नहीं बनाना बल्कि एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह उसे यूज करना सीखना होगा, जिससे हम इंस्पायर हो पर उनके स्लेव्स ना बने। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, जहाँ पर हर बात होती है दिल से। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए, फील गुड फील लाइव।
5: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना, यानी कि संडे मैं रहती तो हूँ, आज संडे का दिन है और मंडे टू संडे हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ। आज जो कि संडे का दिन है भाई, थोड़ा रिलैक्स रहता है आज के दिन, क्योंकि जब वीकेंड आता है ना तो कहीं ना कहीं ना हमारा मन भी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हमें लगता है अरे कोई काम नहीं करने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एनर्जेटिक होते हैं आज के दिन, क्योंकि घर के सारे काम करने होते हैं, किसी को कुछ कपड़े धोने हैं तो कभी

फिटनेस की बहुत सारी बातें करती हूँ। चलिए इस पर बातें होंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, यानी कि मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ हफ्ते के सातों दिन। और आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आई हूँ। सेगमेंट हमारा चल रहा है दिल धड़कने दो, जिसमें एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करी, और वो है देखिए बच्चे, और बच्चों में जब डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो जाते हैं ना, मतलब ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है आज के टाइम में ना, ये डिप्रेशन बोलना बहुत ही आसान लगता है, ये डिप्रेशन के शिकार हो गए, एंजाइटी हो रही है, आजकल हर कोई यूं ही कह देता है। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है, जिन्हें सच में जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं या इस अवसाद से जुड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं, उनके बारे में लोग बात नहीं करते या वो खुद बात नहीं कर पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों में अगर बात करें, छोटे बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। बच्चे अक्सर पेरेंट्स से कहने में थोड़ा सा झिझकते ज़रूर हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझनी है। आज उन्हीं के लिए ये खास टॉपिक लेकर के आए हूँ, किस तरह से आज के समय में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और आमतौर पर आपने देखा ही होगा या सुना होगा कि बड़े बुजुर्गों को डिप्रेशन हुआ करता था, कि हमारे जो बड़े होते थे वो कहते थे कि हाँ इतना स्ट्रेस है, उम्र के इस एक पड़ाव के बाद जो है वो डिप्रेशन हुआ। लेकिन आजकल के इस टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जो एज है ना, वो अब ऐसी रही नहीं है, मतलब कोई भी एज ग्रुप का हो, उनको डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर आपके घर का बच्चा भी अगर डिप्रेशन का शिकार जो है ये हो जाए, तो क्या करना सही रहेगा, किस तरह से डील करना है, ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनसे पूछते ही नहीं हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि अगर बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो इस स्थिति में बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए, और सिर्फ एक पेरेंट ही है जो बच्चे को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, इसका एक ही कारण है। देखिए आज के टाइम में जो माता पिता है वो दोनों वर्किंग हो, और जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे में बच्चों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। कई बार इस वजह से बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस में बिल्कुल रहते हैं, घेर लेते हैं खुद को, अपने आप को जो है स्ट्रेस घेर लेता है उनको। और आपको मैं बता दूं कि डिप्रेशन होने पर आपका बच्चा बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुस्त और गुमसुम हो जाता है। ऐसे कोई भी मतलब काम में उनको जो है वो मज़ा नहीं आएगा, कोई भी ऐसा काम करें आप देखेंगे बाकी बच्चे जो खेल रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा गुमसुम बैठा हुआ है, आपका बच्चा यूं ही बैठा है, वो लोगों से बात करने में कतराने लगा है। जब बच्चा चुपचाप या अकेला रहने लग जाए तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये उनकी आदत है, या बच्चा घुलना मिलना नहीं चाहता, तो ऐसे में पेरेंट्स जो है बच्चों को ना डांट देते हैं, डांट डपड़ के वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, जाओ जाके बात करो, जाओ जाके दोस्त बनाओ, जाओ जाके ये काम करो या वो काम करो। लेकिन उस टाइम बच्चे की क्या मेंटल कंडीशन है, इस बारे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स बात करना जो है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अब बात आती है कि किस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

पुरसरार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि हफ्ते के सातों दिन मंडे टू संडे आपके साथ 2 घंटे का सफर रहता है, जो रहता है बहुत ही कमाल का। एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आपके पास आ गई हूँ। टॉपिक जो है वो है बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत है, जिससे कैसे डील करना चाहिए वो आपको बताऊंगी। हमारा सेगमेंट अभी चल रहा है, सेगमेंट का नाम है दिल धड़कने दो। जी हाँ, देखिए बच्चे जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ लक्षण जरूर नजर आते हैं। इन्हें माता पिता को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में टाइम पर पेरेंट्स को बच्चे के समय देना उनको बिल्कुल चाहिए। बच्चों को टाइम टाइम पर देखिए उनको देखना चाहिए, उनको बात करनी उनसे चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स, चाहे आप वर्किंग है, देखिए वर्कहॉलिक जब पेरेंट्स होते हैं नहीं दे पाते टाइम, लेकिन ऑफिस के बीच में आपने 2 फोन कर लिए, कॉल कर ली, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या जब आप घर आते हैं तो बच्चे से आप पूछने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन कैसा रहा, उनसे बात करते रहिए। जब आपको लग रहा है कि अर्ली स्टेज जो सिम्टम्स हैं वो नजर आ रहे हैं तो क्यों जो अवसाद है उसे बढ़ने दें, क्यों डिप्रेशन बढ़ने दें, क्यों एंजाइटी उनको हो रही है, क्यों आप उनके पास नहीं है, ये सारे सवालों के जवाब जो है आपको खुद से लेने और आज ही लेने। आज का ये जो मेरा आज प्रोग्राम है, ये जो मेरा सेगमेंट है दिल धड़कने दो, इसमें यही कुछ खास बातें होने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, जब बच्चों में डिप्रेशन का कारण जो है इसमें होता है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हो सकता है किसी पेरेंट को या उनके भी जो अभी पहले के जो लोग हैं, यानी कि जो हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री देखे जाओ वहाँ किसी को रही हो, और डिलीवरी के टाइम हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहा हो। और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, अगर घर में आपके लड़ाई झगड़े का माहौल है, मतलब हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों से बैठ कर बात करनी ज़रूरी है। मन किसी बात से अगर उनका डरा हुआ है, हो सकता है कि स्कूल में कोई ऐसी बात हुई हो, ट्यूशन में ऐसी कोई बात हुई हो, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ ये बच्चों के लिए, मतलब आपके बच्चे अगर कॉलेज में हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी बात हुई हो, किसी चीज़ से वो डर रहे हैं, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट की अगर वो शिकार हुए हैं, तो देखिए ये सारी बातें जो हैं बच्चों में जो है वो डर का एक माहौल पैदा करती है, डर बैठा देती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बात नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चा बात नहीं कर पाएगा, बच्चा अंदर अंदर घुटता रहेगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। चलिए बात करेंगे कि अब ये जो लक्षण है वो किस तरह से आते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

क्या आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, आपको मैं बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक लेकर के आई हूँ। जानकारी आपको दे रही हूँ आज मैं बहुत ही जरूर, वो है बच्चों के डिप्रेशन की। सेगमेंट दिल धड़कने दो में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के डिप्रेशन की। और यहाँ पर आपको बता दूँ, जब बच्चा आपका बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई चुपचाप है, शांत है, उदास बैठा हुआ है, किसी से मतलब कोई भी बात है किसी से भी या कोई किसी बात से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर एक्साइटेड जो है वो नहीं हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बच रही है, तो आपका बच्चा ज़रूर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। या अगर आपके बच्चे ने खुद से बात करना शुरू कर दिया है तो आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये अब ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन होने पर बच्चे अकेले बैठ के खुद से सवाल जवाब करने लगते हैं, उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और ये डिप्रेशन के लक्षणों में आता है। इसी के साथ आता है चिड़चिड़ापन, यानी कि डिप्रेशन होने पर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा करने लगेगा, और अगर अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी छूट चुकी है और आपका बच्चा जो है अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और ऐसे में देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से गाड़ी को पकड़ा नहीं जा सकता, यानी कि डिप्रेशन से निजात नहीं पाया जा सकता, पाया जा सकता है लेकिन तभी जब पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा हो। ये नहीं कि आप उन्हें डांट डपट रहे हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, आप उन पे और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पे और गुस्सा कर रहे हैं। असल में ये बात बहुत सच है कि गुस्सा आ जाता है कई बार, क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं। तो होता ये है कि जब हम किसी चीज़ से परेशान हैं, आप भी बाहर से आए हैं, आप किसी चीज़ पे परेशान हैं, आपका बच्चा जो है वो बैठा हुआ है डिप्रेशन में है और आपने उन्हें डांट दिया और ज़्यादा, तो देखिए कहीं ना कहीं कहानी उल्टी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाएगा उनके साथ। आप सोचेंगे कि डांट से उनको आप ठीक करा सकते हैं, लेकिन डांट से वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को काबू ज़रूर करना है और बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चे जब डिप्रेशन का शिकार होने लगता है तो उनकी रोज़ाना की आदतें बदल जाती हैं, खाना ठीक से नहीं खा पाता है और कई बार खाना जो है वो स्किप कर देता है या फिर बहुत कम खाना खाएगा। अगर बच्चे की आपकी डाइट है कि वो चार रोटी खाते हैं, वो दो रोटी कर देंगे, यानी कि 50% आपका जो है खाना बच्चा खा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बच्चा मन ही मन बहुत विचलित है, वो ठीक नहीं सोच समझ पा रहा है। अब ऐसे में पेरेंट्स को ये करना है कि बच्चे के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी है, बच्चे से खुलकर बात करनी है और उनके साथ कोई गेम खेलनी है, और साथ ही बच्चों को बाहर घुमाने लेकर के जाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब प्लेस चेंज होती है, जब लोकेशन चेंज होती है, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो बच्चा अपने आप ही थोड़ा अच्छा महसूस करता है। और जब उसके आसपास अच्छे देखिए हंसमुख लोग हों या ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पर उन्हें अच्छा लग रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे उस हालात से बाहर निकलने लगता है। तो चलिए, अब और भी होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन, और संडे वाले दिन हम बातें तो करते हैं। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ, और अभी सेगमेंट चल रहा है हमारा स्ट्रेच प्लीज। स्ट्रेच प्लीज में आपके लिए भाई योगा के बारे में आपसे बातें करती हूँ, मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि योग, प्राणायाम, ध्यान, या फिर इन सब में जो है वो डिफरेंस क्या है, ये क्या है। बड़ी बहुत बड़ी बड़ी टर्म सुनाई देती हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है। आज आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताती हूँ मैं योग से जुड़ी। जी हाँ, सबसे पहले आसन। देखिए, आसन जो है वो एक हमारी शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को मजबूत, फ्लेक्सिबल और साथ ही बैलेंस बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। ये हो गए हमारे आसन। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए, आसन होता है जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, वैसे उसी तरह से आसन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपने सुना ही होगा कि भुजंग आसन हो गया, ताड़ा आसन हो गया, ये सारे आसन हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर प्राणायाम की। प्राणायाम में ये होता है कि देखिए, श्वास को, यानी कि आपकी सांसों को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, यानी कि श्वासों को नियंत्रण करने का तरीका जो है, ये बॉडी में ऊर्जा को जो है वो बनाता है और साथ ही मन को शांत करने में मदद करता है। तो प्राणायाम जो है ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सांसें जो है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जो हम करते हैं ये है प्राणायाम। अब बात आती है ध्यान की। मन को एकाग्र करने और साथ ही विचारों को शांत करने का एक प्रक्रिया जो कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है, और यही है ध्यान। और ध्यान जो है, जब हम फोकस की बात करते हैं कि आपका ध्यान, कभी होता है ना कि जब हम कुछ भी, हम आसन कर रहे हैं या हम प्राणायाम कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है, हम एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। हमारा कभी ध्यान इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी कोई बात, कभी कोई ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो बस इन्हीं को जब आप ध्यान एक जगह लगाएंगे तो वहां पर आप योग के ध्यान को अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ आता है यम और नियम, नैतिक सिद्धांत जो कि योग अभ्यास के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, यही है यम नियम। चलिए, इसी के साथ और भी कुछ बातें करूंगी, कुछ और भी विशेष यहाँ पर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, योग से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सुनते हैं लेकिन इनके बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो यही बात आपको बता रही हूँ, लेकिन फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती है बातें। फिलहाल आज है संडे का दिन, संडे वाले दिन आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे, देखिए जो हम टर्म्स की हम बात करें, कुछ ऐसे कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो हम सुनते तो हैं लेकिन हम ढंग से उन्हें समझ नहीं पाते कि इसका मतलब है क्या। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। देखिए, योग तनाव चिंता डिप्रेशन यानी कि अवसाद, इसको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है मानसिक स्वास्थ्य। इसी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो योग मांसपेशियों को मजबूत करता है, लचीलापन बढ़ाता है और मुद्रा में सुधार लाता है, और साथ ही आपके हार्ट हेल्थ यानी कि हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं योग के प्रकार की। योग के कई सारे अलग अलग प्रकार हैं यूँ तो, जिनमें हठ योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, क्रिया योग शामिल, ये सभी चीज़ शामिल है। प्रत्येक प्रकार योग के अलग अलग पहलू और साथ ही उनके जो है सेंटर है, उनके केंद्र है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि योग के प्रकार की बात करें, अब बात करते हैं इसके महत्व की। योग का अभ्यास एक प्राचीन परंपरा से जिगे चला आ रहा है, जिसने सदियों में लोगों को जो है वो सदियों से बहुत टाइम पहले से लोगों के स्वास्थ्य और उनके खुशहाल जीवन जीने में काफ़ी मदद करी है। आज योग दुनिया भर में लोकप्रिय है और लाखों लोग इससे जो है लाभों से इनके जो है वो अनुभव भी कर रहे हैं। पहले सिर्फ इंडिया में योग जो है किया जाता था, बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी पुरानी में बात कर रही हूँ, और ये जो है वही कहा जाता है महादेव काल से जो है चल रहा है। इनफैक्ट हमारे जो इंडियन स्कल्पचर्स हैं या फिर इंडियन जो मूर्तियाँ आप देखिए कि वहाँ पर योग जो है

ऋषि मुनि के टाइम से आप देखिए मिल जाएंगे आपको अलग अलग योगासन करते हुए, कुछ ऐसी मूर्तियां मिल जाएंगी। और उसके बाद 1900 में जाके धीरे धीरे योग का प्रचलन जो है वो वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे होने लगा। और आज के टाइम में आप देखिए योग कितना ज्यादा फैल चुका है और कितनी ज्यादा लोगों की मदद कर रहा है। योग एक शक्तिशाली अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं को अनुभव और साथ ही खोज के माध्यम से योग के लाभों का अनुभव कर सकता है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं योग से जुड़ी हुई। योग जो है वो हमारे जीवन शैली के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, देखिए बात चल रही है रेगुलर योग अगर आप करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्रेन की मेमोरी जो है ये इसका कार्ड जो है वो बढ़ जाता है, साथ ही मेमोरी शार्प होती है, नए न्यूरॉन्स कनेक्शन जो है ये बनते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन 28% तक कम हो जाता है अगर आप योग करते हैं। साथ ही डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या इन सभी ऐसी कुछ बीमारियों का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कई हद तक कम हो जाता है। अब योग, कई सारे फायदे योग के हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है, आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मेंटल बैलेंस मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, इसी के साथ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, फेफड़े आपके स्वस्थ रहते हैं और साथ ही बेहतर नींद, जिसको नहीं आती है ना उनको बेहतर नींद भी मिलती है। तो देखिए योग के इतने सारे फायदे हैं तो योग जरूर कीजिए। इनफैक्ट आज बात करेंगे वज्रासन के फायदे की, तो जल्दी से झटपट से आपको बताती हूँ वज्रासन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खाना खाने के बाद ये जरूर करना चाहिए, इससे गठिया रोग, पीलिया, सफेद बाल, कमर दर्द, साइटिका, पेट के में गैस, पीठ में दर्द, पाचन शक्ति, फेफड़ों को के जो रोग होते हैं, या फिर इसमें कोई भी अगर आपको इररेगुलर पीरियड्स की समस्या है, हड्डियों में अगर आपको कमजोरी है और साथ ही मन के एकाग्र में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको अगर कोई भी परेशानी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, वज्रासन कीजिए, इससे बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो योग का जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है, तो योग जो है ज़रूर कीजिए। शरीर को जो है ये आपके एक बैलेंस बनाए रखेगा और आपके मेंटली भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। अब बात मैं कर रही हूँ, बहुत ही खास सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ आज एथलीट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और इनकी जर्नी के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही खास, एक ऐसी महिला की जिन्होंने हैंड साइकिलिंग में भाई कमाल कर दिया, ज्योति गावटे। और ज्योति गावटे जो है ये पैरा साइकिलिंग में इन्होंने कमाल कर दिया, चल नहीं सकती थी इसीलिए साइकिल उठा ली। महाराष्ट्र से हैं, पैरा जो है इन्होंने साइकिलिंग करी और उसमें सबको हैरान कर दिया। जिंदगी कभी कभी ना रास्ते जो हैं वो छीनती है, जहाँ पर चलना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर भी मंजिल ढूंढ लेते हैं, अपनी रफ्तार से जो है वो चलते हैं लेकिन हासिल ज़रूर करते हैं अपनी मंजिल को। आज की कहानी ज्योति गावटे की है, जो कि महाराष्ट्र की एक ऐसे पैरा एथलेटिक्स मैं बोलूँगी कि है, ये एक खिलाड़ी हैं, पैरा साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी सपने जीतना बिल्कुल नहीं छोड़ा। ज्योति की मैं बात कर रही हूँ। ज्योति एक छोटी सी लड़की थी, फुल ऑफ एनर्जी, जब एक एक्सीडेंट ने उनको दोनों पैरों से उन्होंने चलना जो उनकी ताकत बिल्कुल छीन ली, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिसेबल कहना कभी नहीं चाहा। व्हीलचेयर पर जिंदगी बिताते हुए एक दिन उन्होंने टीवी पर एक हैंड साइकिलिंग रेस देखी और तब उन्होंने सोचा मुझे भी साइकिलिंग करनी है और मैं अब रुकूंगी नहीं। पर घर में पैसे नहीं थे, पापा टेलर थे, तब ज्योति ने खुद सिलाई का काम शुरू किया, पैसे जोड़े और एक सेकेंड हैंड साइकिल उन्होंने खरीद ली, जिसके बाद ज्योति ने बिना किसी कोच के ट्रेनिंग के अपनी जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल शुरू कर दी। और सुबह 5 बजे ज्योति उठा करती थी, खुद को जो है वो एकदम तैयार करती थी और खुद रूट मैप भी तय करती थी। लोग मजाक बनाते थे पर उन्होंने किसी की बिल्कुल नहीं सुनी। 2018 में उन्होंने पहली बार स्टेट पैरा साइकिलिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और सबको चौंका दिया, क्योंकि चौंके इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। फिर नेशनल कैंप में सिलेक्ट वो हुई, 2021 में रिप्रेजेंट किया इंडिया को एशियन पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में। आगे क्या हुआ बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड,

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?

0: इस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, और आपको बता दूँ अभी अब एक बहुत ही खास कहानी आपको एक बता रही हूँ, और वो है ज्योति गावटे की कहानी, जो कि एक पैरासाइक्लिस्ट है। जी हाँ, अब देखिए बात करते हैं। ज्योति ने सिर्फ मेडल्स के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट भी रेस जीती। मैं बताती हूँ वो कैसे, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप जो है वो नहीं मिलती थी। उन्होंने लोकल डोनर्स और एनजीओ से सपोर्ट मांगा। मीडिया ने कभी उन्हें हाईलाइट नहीं किया, पर उन्होंने बोला, मैं मेडल के लिए नहीं, मिशन के लिए साइकिल चला रही हूँ। आज वो महाराष्ट्र की फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल पैरा साइक्लिस्ट बन चुकी हैं। जी हाँ, और देखिए उनकी कहानी आज सभी को इंस्पायर कर रही है। कभी कभी जो पैर नहीं चलते थे, उनके सपने दुनिया से तेज दौड़ते हैं। ज्योति गावटे ने साबित किया कि साइकिल की स्पीड नहीं, बल्कि राइडर का इरादा जीत दिलाता है। ये कहानी उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं जिंदगी से हार गए हैं, क्योंकि ज्योति जैसे लोग दिखते हैं जीतने के लिए, पैर नहीं उनके। देखिए जज्बात जो है वो काफ़ी है, उनका पैशन जो है होना चाहिए। तो वो यही कहती हैं कि जीतने के लिए मुझे पैरों की ज़रूरत नहीं है, मेडल के लिए मुझे पैरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जज्बातों की, मुझे जज्बे की, और मुझे पैशन की ज़रूरत है, और वो उनमें है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल मैं आपको कहानी जो है सुना रही हूँ। अगर आप ये एपिसोड मिस कर जाते हैं तो कोई गल नहीं जी, अब आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। और वो कैसे, आपको बस क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है और डाउनलोड कर लेनी है हमारी इंटरनेट ऐप। और उसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और साथ ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रेडियो मानव रचना के ऐप पर। तो चलिए आप करिए इंटरनेट ऐप तब तक के लिए डाउनलोड, और आप वर्ल्ड में कहीं भी आप सुन सकते हैं कभी भी। अब ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम तो शहर से बाहर जा रहे हैं, साक्षी अब कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं और कभी भी कहीं भी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ पावर प्ले विद आरजे साक्षी, हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे एथलीट्स की कहानियाँ जिन्होंने सभी को चौंका दिया। बात अब करते हैं बहुत ही कमाल एक ओशियन जो है ब्रीज काम साउथ इंडियन स्ट्रिंग्स की। जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही ख़ास एक एथलीट की। एक वक्त था जब मुरली श्री शंकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थे, सिर्फ एक ही चीज़ सोचते थे, क्या मैं फिर से कभी दौड़ पाऊँगा। और आज वही लड़का लॉन्ग जंप के देसी चैम्पियन जो है वो कहलाते हैं। मैं बात आज कर रही हूँ सन्नाटे से सितारे तक की कहानी की, मुरली श्री शंकर की। जी हाँ, देखिए श्री शंकर की बात करें तो केरला के जो है एक छोटे से गांव में ये पैदा हुए। मुरली के ब्लड में, खून में उनके स्पोर्ट्स था। पापा भी एक ट्रिपल जंपर इनके रहे और मम्मी साउथ इंडिया की बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर। मुरली ने 6 साल की एज से ही, 6 साल की उम्र से ही एथलेटिक्स खेलना जो है वो शुरू किया। लेकिन उनका दिल था कि स्पीड और हवा उन्हें जो है वो बड़ा उनको अच्छा लगता है और उन्हें उड़ने का मन करता है, इसीलिए उन्होंने लॉन्ग जंप चूज किया। सुबह 5 बजे उठना, खुद को घर के आंगन में दौड़ लगाना और साथ ही पिताजी के, उनके अपने पापा के हाथ से कोचिंग लेना, ये भाई सुबह सुबह का रूटीन हुआ करता था। और ये सब रूटीन जो था उनकी मम्मी ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया। पर सपना बड़ा था कि इंडिया के लिए मेडल जीतना है। अब 2018 में जब वो एशियन गेम्स के लिए फाइनल सिलेक्शन के एज पर थे तो प्रैक्टिस के दौरान एक जंप में उनका राइट फुट जो है वो फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा रनिंग करियर मुश्किल है, जंपिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुरली ने हॉस्पिटल के बेड्स पे सिर्फ एक ही बात बोली, मैं कम बैक करूंगा और मेडल लेकर आऊंगा। और 1 साल के इंटेंस रिहाब और साथ ही फिजियोथेरेपी और साथ ही उनके शीर डेडिकेशन के बाद 2019 में नेशनल लेवल पे कम बैक उन्होंने किया। 8.20 मीटर्स का जंप मार दिया। लोगों ने कहा इस लड़के में ओलंपिक मेडल का दम है। इसके बाद 2022 में उन्होंने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने खेला, पार्टिसिपेट किया। इसके बाद मुरली श्री शंकर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और जीता सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। ये पहला इंडियन लॉन्ग जंपर बन गए जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम मिला। और उसके बाद उनके वर्ड्स ये रहे कि मैं हर जंप में इंडिया का झंडा देखता हूँ और उसी के लिए उड़ता हूँ। देखिए कभी कभी हमारे सपने ना पूरी जमीन के भरोसे होते हैं और कभी एक जंप पूरे देश का सफर जो है वो मतलब तय करती है और उनका सर जो है वो सभी जो देशवासी हैं उनका सर फक्र से ऊंचा कर देती हैं। मुरली श्री शंकर एक अनसंग हीरो हैं जो दिखाते हैं कि अगर इरादे हो तो फ्रैक्चर भी उड़ने से नहीं रोक सकता। तो ये कहानी थी मुरली श्री शंकर की। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ, लेकिन इसके पहले और भी बातें होंगी क्योंकि अब हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाली हैं क्योंकि सेगमेंट शुरू होने वाला है। सेगमेंट का नाम है रिचार्ज स्पॉटलाइट। बात करेंगे आज कौन है हमारे साथ, जानेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tana dir tana.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं. आज एक बहुत ही खास गेस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. जी हां, प्रोफेसर डन्ना आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. सेगमेंट का नाम है रिचार्ज स्पॉटलाइट और आज जो गेस्ट हैं वो भाई इंडिया से तो नहीं है, नाम सुन के तो आपको पता लग ही गया होगा, ये है साउथ अफ्रीका से. जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारी गेस्ट का प्रोफेसर डन्ना जो कि एक एक्सपर्ट है ह्यूमन मूवमेंट साइंसेस एंड द प्रोग्राम लीडर ऑफ किंडर काइनेटिक्स विद ओवर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हर वर्क फोकसेस ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मोटर लर्निंग एंड इंटरवेंशंस फॉर किड्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज लाइक DCD एंड ADHD. She's here at Radio Manav Rachna with us. So, Professor Danai, welcome to Radio Manav Rachna 107.8 FM.
2: Thank you, Sankshi. It's such a pleasure being invited to talk with you. And it's my first time on radio. So, yeah, it's a first for me this week in India.
1: Doctor, Professor Danai, I would like to ask you, how has your experience been at Manav Rachna so far?
2: So far, I couldn't ask for anything better. It is the people here, Dr. Nitesh and Dr. Pooja.
1: Yes.
2: Everybody is so nice and so welcoming and everything is going wonderfully. I just love it here. It's perfect. I couldn't ask for a better experience being in India and being with you people. I really like it being here.
1: देखिए जो इंडिया के लोग होते हैं ना तो हम बहुत ही ज़्यादा वेलकम तो होते ही हैं. तो जब भी कोई गेस्ट आता है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे घरों में, भाई पूरे देश विदेश से कहीं से भी आते हैं तो हम खुले दिल से वेलकम करते हैं, जिस तरह हमने प्रोफेसर डन्ना का जो वेलकम किया है. इसी के साथ साथ व्हाट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर और एजुकेशन इम्प्रेस यू द मोस्ट?
2: आई थिंक योर ओपननेस एंड हाउ यू रियली ट्रीट पीपल as lack of a better word royalty when we come here. I didn't expect this and I'm really overwhelmed and I really feel privileged and such an honor to be here. But with your culture, I really do like your jewelry and your clothes that you are wearing. All the colors, it's so colorful. And
1: yes,
2: and your regarding the education, there's nothing that you need to stand back. I talked a lot with the people. Sometimes we in developing countries think that our education systems, yes, there is some lack and problems in it, but we don't have to stand back to anybody. We are getting there and we just have to believe in what we are doing.
1: Correct. Now, Professor Danai, I would like to ask you about your work and what is kinder kinetics in simple word for our listeners, just in a layman language.
2: Sanksi, that's a good question. So kinder kinetics is basically divided from two words, which is kinder. And we work with the normal children from 0 to 13 years and kinesis, which is movement. And with the movement part, we try to rectify and optimize the gross motor skills of children regarding running, skipping, kicking, throwing. So everything in that regard we try to improve. That is the foundation of everything that follows. And then about 20% of the population we work with in the PEDS is children with motor delays and our special need population. For instance, children with autism, Down syndrome, or physical impairment.
1: Correct.
2: Or mental impairment. So that's what we also work with.
1: And why is early movement development so important in children?
2: Right, that's a good question. And that's my passion there. I believe that if we do not start moving the bodies at a very early age to get that neurons firing, that little pathways that's not as high and good as a highway. We need to work on that to make sure that the information that's going through the brain is forming from a pathway to a highway, so that all the children can move and be better. Because if your movement skills is not developed on par, they're definitely going to struggle when they go to school, when they're older, when they want to start participating in sports, when they want to play with their peers. So they're really going to struggle with that. So that is why we have to focus on early childhood development and early movement to make sure that we have a well-balanced child working what's instead in front of you.
1: Bilkul. बिल्कुल. और यहाँ पर ये जो कहना चाहते हैं, देखिए बात ये होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, बचपन से ही बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है एक्टिविटी, आप देखते होंगे बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं. अब ऐसे में होता क्या है, अब कई सारे बहुत सारी ऐसी मोटर स्किल्स होती हैं जो कि बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, जो भी बच्चे हैं मोटर स्किल, क्योंकि उससे ना सिर्फ वो फिजिकली उनका डेवलपमेंट होगा बल्कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है आगे चल के. क्योंकि जब ब्रेन डेवलपमेंट अपने रफ्तार से चलेगा तभी तो लाइफस्टाइल बेहतर होगी. तो इसीलिए आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डनाए हमारे साथ हैं. प्रोफेसर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हाउ कैन एक्सरसाइज हेल्प किड्स विद DCD और ADHD?
2: Okay, yes. So if we start working with children that especially have ADHD or DCD, yes. Most of the time these children struggle to pay attention and they have balance problems and they have coordination problems. So as soon as we start to work with a specified program with them, we start to make sure that we improve their coordination and their balance skills. Then we help them also to start to concentrate better in the classroom setting. So they're not just going to look like naughty children, that are going to start focusing again and they're going to start enjoying life again. Because if these children with their DCD, especially, that's very clumsy, they don't want to participate in anything. And then what's happening is our DCD children not participating is starting to get overweight or obese. And then they start to get very unhealthy and it's a downward spiral all the way. So that's why we work with them to make sure that we do improve their motor skills for further improvement, social skill development, brain development, cognitive development in the future, as well as to make sure that they stay healthy.
1: Bilkul. Yes. Stay healthy. देखिए बच्चों को हेल्दी रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ के देखिए हाथ का खाना ही नहीं, बल्कि सारी की सारी स्किल्स की, एक्टिविटी की, ब्रेन डेवलपमेंट की, या फिर कह सकते हैं कि उन सभी एक्सरसाइजेस की, स्किल्स की, मोटर स्किल की ज़रूरत है जो कि उनको आगे ले जाएगी. प्रोफेसर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज, वॉट रोल कैन स्कूल्स प्ले इन प्रमोटिंग मोटर डेवलपमेंट?
2: ओह, दैट्स अ गुड वन. I don't know in your school setting, in India, how they go about physical education and physical activity, but this week that I felt it's very hot outside. I'm not used to this temperature and this humidity.
1: Yes,
2: so
1: yes.
2: I do understand that it's hard for the children to play outside in this weather. But to just bring in more physical activity, for instance, in the classroom,
1: yes,
2: do a short 5-minute, 3-minute brain break with them, that they stand up and be a little bit active, dance a little bit, have a little bit of a routine that they need to move. You don't always have to go for hours and hours outside. Just break it up, make it fun. Make sure that when, for instance, when the children have to go from the classroom to the playroom and it's possible, let them do maybe monkey walks for the little ones, and let them do two-legged jumps. So, but it's very important for the school to bring in physical activity, motor development, motor skills within the school setting. And the easiest way, that's not going to take a lot of time and a lot of time away from academic, is, for instance, the brain breaks.
1: Exactly.
2: And the other thing is, if we're not going to be active, our children will not perform academically.
1: Yes, yes, yes. तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब जैसे हम देखते हैं बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इंडिया की बात हो रही है, और अभी मॉनसून सीजन जो है वो शुरू अभी तक होने वाला है या नहीं होने वाला, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप जो स्कूल्स हैं वो क्लासरूम में ही ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं. देखिए हमारे टाइम में होता था अप डाउन, वो जो एक सिटिंग और स्टैंडिंग एक एक्टिविटी हुआ करती थी, ये सब भी हुआ करता था. लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर मंकी जंप्स कराए जाएं, थोड़ा सा क्लासरूम को ऐसे एक्टिविटी, ऐसे फन लर्निंग क्लास बनाई जाए जिससे ना सिर्फ उनका ब्रेन डेवलप हो और ना सिर्फ वो थोड़ा खेल कूद में आगे बढ़े, बल्कि एकेडमिकली भी आगे बढ़ें, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज वो करेंगे, जितना फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा एकेडमिक में भी आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए इसके आगे बात कर रहे हैं हम प्रोफेसर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर टुडेज बिगेस्ट कंसर्न इन चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ?
2: Definitely, in the South African population, it's definitely our children that's getting more overweight and obese. And I think the trend in India, as I read, is also starting to go in the wrong direction. We don't want it that way. So with that is the biggest issue. Our children's getting unhealthier, doesn't exercise anymore, so they get overweight and obese. And with that is more and more children is getting type 1 and type 2 diabetes.
1: Correct.
2: And we don't want that. So with exercise, we can improve the health of our children.
1: बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं obesity के शिकार होते जा रहे हैं। Obesity बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? बैठते हैं, burger, pizza, बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। Processed food बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ऐसे में होता ये है, physical activity बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे जो हैं वो खाए जा रहे हैं। Parents को ये लगता है कि जो बच्चा खा रहा है, intake कर रहा है, at least he is eating. But the reason, इसके पीछे का जो, देखिए मैं कहूँगी कि अगर वो कुछ भी खा रहा है और उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये उनकी हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ खराब कर रहा है, which is a big no for the kids nowadays. इसके बाद आगे चलते हैं, my next question professor, does your, because I can see you are very fit and your fitness background helps in your research or teaching, is there anything?
2: Yes, so I practice what I preach. I do love to train and I try to eat healthy, but it's not always working because I also like my burgers and pizza at sometimes. But I'm also in I'm privileged to also be able to be teaching indoor cycling at two local gyms in Potchefstroom, as well as hit the floor training and body conditioning training. So myself do believe and you need to do cardio and strength training to be there for your peers and for the students that we teach.
1: Correct. देखो कहते हैं ना कि एक टीचर को भी उतना ही ज़्यादा फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी फिट रख सकें. तो यही एक तरीका है बच्चों को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव रखने का. With this, professor, I would like to ask you one last question. What's the special message for our listener? Your go-to message would be.
2: Go-to message will be, if you have to start. I know it's not easy to be healthy all the time, but start. If you even start with 7 minutes a day for activation, doing core activities, a little bit of walking, just start. You have to start. You have to be active and always try to be mindful what you eat. Yes, you can eat unhealthy food sometimes, but if you eat unhealthy, you need to exercise to get that calorie deficits in. So enjoy life to fullest, but exercise is medicine.
1: बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है वो मेडिसिन है. एंड थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना एंड हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनसाइटफुल चैट विद अस.
2: थैंक यू संक्षी, इट वाज सच अ प्रिविलेज बीइंग हियर.
1: थैंक यू सो मच.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में आज हमने करी हैं बहुत सारी बातें, और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, यानी कि वक्त कहता है कि अब मुलाकात होगी आपसे, कल होंगी बहुत सारी बातें। तो चलिए अब कहीं मत जाइए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम फील गुड फील लाइव शो बहुत खास है हर बार आपको नई जानकारी मिलती है एक नए स्टार्टअप के बारे में आप जानते हैं एक नई इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें केवल सरफेस लेवल की बात नहीं होती उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो सब यहां पर डिस्कस की जाती हैं। आज फिर से आए लेकर के एक और शो तो डिस्कस करेंगे भैया कौन सी इंडस्ट्री है कौन सी कंपनी क्या करती है इंडस्ट्री क्या करती है सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का सो स्टे ट्यून्ड फील गुड फील लाइव

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं, मैं हूँ सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पेयू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए, बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैग होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव्स हैं, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: पाए रहूं।
1: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस यूएस एंड यूके से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। तो उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं आप फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उनके सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइव। Thank you.

आशा करता हूँ भाई इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आज की जो कंपनी है उसका नाम है जार। जार एक इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है जो एक भारतीय के लिए मतलब कोई भी चीज जो बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी उन्होंने। हमारी एक आदत होती है, अ हैबिट ऑफ सेविंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनको सेव करने की, मतलब पहले होता था गुल्लक रखते थे या घर में ऐसे सहेज कर रखते थे। जार एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। सो जार इज अ फाइनेंशियल फिटनेस प्लेटफॉर्म जो लोगों को ना ये एक पावर देता है कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं, 10 रुपए तक भी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट को आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है, और ये फेमस ही इसलिए हुआ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बहुत सारे इंडियंस के पास है जिसको इसने ब्रेक किया कि आई वांट टू सेव मनी बट आई डोंट हैव इनफ मनी, कि मेरे पास, मैं पैसा बचाना तो चाहता हूं, इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं लेकिन मैं करूं कैसे, मेरा पैसा ही नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूं। तो जार ने यहां पर सोल्यूशन दिया है कि भैया देखो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक आदत की जरूरत है। तो ये है वो कंपनी जिसने लिटरली एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ा भैया, जिसने मतलब हर एक इंडियन ने रिलेट किया होगा इस चीज से, क्या यार पैसे तो मैं ही बचाना चाहता हूँ लेकिन 10 रुपए से अगर कोई बोले कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यार इट मेक्स सेंस, सो मच ऑफ सेंस, एग्जैक्टली वो इस कंपनी ने किया। तो ये है हमारी आज की कंपनी। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत। तो हम केस स्टडी लेकर के आए हैं जार की। कंपनी स्टार्ट हुई 2021 में, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जब डिजिटल ट्रांजेक्शन अपने बूम पर आ रहे थे, UPI बूम पर आ रहा था। लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है भैया। उस टाइम पर हम सबको इतना तो समझ में आ गया था कि डिजिटली सब कुछ हो सकता है, और इस कंपनी को भी वो चीज समझ में आ गई। तो वहां पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना डिजिटली हर रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बट सेविंग की हैबिट अगर डिजिटली डाल दी जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग साउंड करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, स्टॉक्स, SIPs, म्यूचुअल फंड, मार्केट रिस्क। अच्छा, एक सिंपल सी थ्योरी समझिए। आज आप किसी इंसान से बोलिए यार तुम ना SIP किया करो, हर महीने ना पैसे कटेंगे तुम्हारे अकाउंट से। आप जैसे ही ये बात करेंगे ना, वो इंसान सामने से काउंटर करेगा, यार इतने तो पैसे ही नहीं होते। लेकिन अगर आप बोलेंगे तुम्हें मात्र 100 रुपए महीने के तुम्हारे खाते से कटेंगे और तुम्हारी SIP हो जाएगी, वो इंसान इंस्टेंटली उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि हैं 100 रुपए में हो सकता है। एग्जैक्टली ये माइंडसेट जो है ये समझ में आया इस कंपनी को। So, इन फाउंडर्स ने खुद से सवाल पूछा कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाए, जहां पर लोगों को ये दर्द भी महसूस ना हो, पेन भी फील ना हो कि हम अपनी मनी को कहीं रख रहे हैं और सेविंग भी हो जाए। एंड उस सवाल का जवाब जो है वो मिला जार के रूप में, जो एक कंपनी है जो इन्होंने स्टार्ट करी 2021 में। इनिशियली जो आइडिया था वो इंस्पायर्ड था ओल्ड स्कूल इंडियन हैबिट से ही, कि आप कॉइन सिक्के जो बचा करके रखते हैं फिजिकल जार से या पिगी बैंक में, तो उसी को डिजिटल किया इन्होंने, और इसीलिए इस कंपनी का नाम रखा गया जार। डिजिटल जार इनसाइड अ स्मार्टफोन, एंड सो अमेजिंग यार। आई मीन बहुत ही प्यारा सा आइडिया और लिटरली बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। तो देखिए ऐसा भी होता है भैया, फिनटेक की बात कर रहे हैं, फिनटेक में इतनी ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, उसमें भी एक गैप नजर आ गया और उसको सोल्यूशन भी दे दिया, और लिटरली अच्छा भी कर रही है कंपनी। पावर ऑफ इनोवेशन। लेकिन एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

आई होप यू एंजॉयड दिस म्यूजिकल वाइब. फिलहाल इसे नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं. आज की कंपनी जार. जार के फाउंडर्स की बात करेंगे. दो फाउंडर हैं, एक है मिसबाह अशरफ, दूसरा है निश्चय एजी. मिसबाह अशरफ के हम यहाँ पर होम टाउन की बात करेंगे. बिहार से आते हैं, ठीक है. मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स देखे हैं जो हम सब मध्यवर्गीय लोगों ने देखे हुए हैं. आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे. अब यहाँ पर इनकी एजुकेशन की बात करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इनके एजुकेशन के रिगार्डिंग. बट बिफोर जार इन्होंने अच्छा खासा जो है एक एक्सपीरियंस गेन किया है, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड ग्रोथ रोल्स में इन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया है, स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है. एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मार्स प्ले, ठीक है. एंड कंज्यूमर इंटरनेट प्रोडक्ट्स में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिवली डीपली इन्वॉल्व थे, तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं. सो ये एक कोई स्ट्रेट स्टोरी नहीं हो सकती है. ये मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के, मुश्किलों के बाद, काफ़ी सारे हालातों के बाद जाकर के एक ऐसे मुकाम पर ये पहुंचे जिसके बाद इनको जो है फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में भी इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दिस कंपनी जार. तो ये कहानी है मिसबाह अशरफ की. सेकेंड को फाउंडर इज निश्चय जी, ठीक है. निश्चय ने एक कन्वेंशनल रूट फॉलो किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, देन बेंगलोर शिफ्ट हुए, उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट था उसके थ्रू. उसके बाद फिर कुछ सालों तक काम किया, उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, लेकिन उसके पहले मल्टीपल डोमेन्स इन्होंने जो है एक्सप्लोर किया, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है. प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें, आईटी एंड कंसल्टिंग में काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, ठीक है. लीडरशिप पोजीशंस पे रह चुके हैं स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है, जैसे कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया है. तो ये हैं जी दो लोग. एक है मिसबाह जो प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, स्टार्टअप ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने अनुभव लिया अच्छा खासा, अपने परिवार की दिक्कतों को भी देखा और फिर बाकी परिवारों की दिक्कतों को देख करके उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा. दूसरे हैं निश्चय, प्रोसेस फोकस्ड, ऑपरेशनल थिंकर. ऐसे करके ही कंपनी यहाँ तक पहुँची है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्टार्टअप है इतना पावरफुल बन पाया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक. आप बताइए आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर. 8017 8107 पे फिलहाल मजा लीजिए गानों का और जुड़ रही है हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए, शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितना आपने केस स्टडी सुनी है, जितना आपने पूरी इस कंपनी को समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है गोल्ड। बट अपनी जानकारी के लिए बता दें कि जार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल्ड नहीं है। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, माइक्रो सेविंग थ्रू ऑटोमेशन। अगर किसी इंसान ने 98 रुपीज पे किए हैं रिचार्ज के लिए, तो वहां पर जार ये कर सकता है कि 2 रुपए ऑटोमेटिकली काट ले, उस फिगर को राउंड अप कर दिया और 2 रुपए डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में डाल दिया। अब सोचिए कितना इजी आ रही है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर आपको किसी कंपनी का रिचार्ज करना है और आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, तो 2-3 रुपए तो वो भी अपनी फीस लेता है। एग्जैक्टली यहां पर एक कंपनी बोल रही है कि काम करो, 2 रुपए हमें दे दो, हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना ही ईजी है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है भाई, लेकिन बेयरली नोटिस होता है। बट कितना बड़ा, कितना इंटरेस्टिंग मूव है। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी। सो फार अबाउट दिस, आई मीन देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग यूएसपी आई हैव एवर हर्ड ऑफ। या मैंने कभी इस शो में बताई होगी कि ड्राइवर से थोड़ी बात करते हैं। इंडिया का इमोशनल कनेक्शन विद गोल्ड, आपको पता है बहुत अच्छे से, गोल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी प्लस कल्चर। हमारे परिवारों में इसलिए गोल्ड को ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि इंडियंस जो है गोल्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मोर देन एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जार को ये साइकोलॉजी समझ में आई। दूसरा, लो एंट्री बैरियर। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर 500 रुपए 1000 रुपए आपको लेकर के आने होते हैं। जार बोलता है 10 रुपए ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, लाओ भाई 10 रुपए लाओ, 15 रुपए लाओ। कितना इजी एंट्री पॉइंट मिल गया कंज्यूमर को। उसको थर्ड पॉइंट आता है यूपीआई इकोसिस्टम ग्रोथ। भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया, बट अगर वो ग्रो ना करता तो डेफिनेटली ये कंपनी स्ट्रगल कर रही होती, और इस कंपनी के साथ साथ और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही होती। लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यूपीआई ने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को पॉसिबल कर दिया विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिला डेफिनेटली। दैट इज अनदर की ड्राइवर ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

आई होप यू एंजॉयड द म्यूजिकल वाइब। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जार के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जार एक बहुत प्यारी सी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और किस तरीके से एक आदत को इन्होंने बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लेसन हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए कि इस कंपनी ने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बट लोगों को ऑलरेडी पता था कि उन्हें सेव करना चाहिए। जार ने सिंपली उस ऑब्स्टेकल को, उस फ्रिक्शन को हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया जो उनके अंदर था, जो उनको रोक रहा था। अगला पॉइंट है कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टार्टअप जो है वो हर बार उसको बड़ा बनाने के लिए नए बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम्स कुछ एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स को रीडिजाइन करना होता है। ऊबर ने टैक्सीज इन्वेंट नहीं करी थी, जोमैटो ने फूड इन्वेंट नहीं किया था, सिमिलरली जार ने सेविंग्स इन्वेंट नहीं करी, आदत बदली, बैरियर्स को हटाया, एक्सेसिबिलिटी दे दी, एंट्री बैरियर को हटा दिया। सो दीज आर द थिंग्स जिसका फल जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का नाम है जार। लेते एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। तो भी देखिए आज अब इस शो को हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे। जार की केस स्टडी हम आपके लिए लेकर के आए। हर स्टार्टअप को किसी बड़ी टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं करना होता है बाबू मोशाए, कभी कभी एक स्टार्टअप सिर्फ एक आदत को समझने से स्टार्ट हो सकता है। तो छोटा सा सवाल उठा कि लोग पैसे बचाना क्यों नहीं शुरू कर पाते। उस सवाल ने एक डिजिटल पिगी बैंक बना दिया जिसका नाम दिया गया जार। और शायद जिंदगी का भी यही फॉर्मूला है। बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन छोटी छोटी आदतों से एक दिन फर्क जरूर आता है। फर्क बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज में लागू होता है। थ्योरी है, आपको लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप एक दिन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बस आपको छोटी छोटी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाने की आदतें, सोने की आदतें, तो वो जो छोटी छोटी आदतें आपके अंदर चेंज ला रही होंगी ना, उसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी बन चुकी होगी जो भी आपने ख्वाब देखा है उस तरफ। तो ये है हमारी आज की कंपनी। आज आपको शो कैसा लगा मुझे बताइए जरा 8010781078 पर। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लूंगा, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कुछ स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, किसी बड़े मूवमेंट का वेट मत करिए, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए एंड सिंपल गो फॉर इट। चलता हूं, दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक बार फिर से प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका शब्द आपने शायद कभी कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल शायद आप नहीं जानते। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस चीज से सफर करते हैं या फिर उनके आसपास के लोग। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पैरों की तरफ नजर दौड़ाएं, खास तौर पर से अपनी काफ मसल्स या अपने पैरों की तरफ, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी नसें विजिबल होती हैं। जी हाँ, ये जो नसें होती हैं, ये वैसे तो हमें फिट रखने के लिए ही होती हैं, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही से इनसे चलता रहता है। लेकिन कई बार अगर ये ज्यादा विजिबल हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक ही बता सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत सारी बात वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई, कि आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या। तो आज हमारे कार्यक्रम ऑल इज वेल में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक लेजर और जनरल सर्जरीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
3: धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया
2: जी।
3: और आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक तो कर रहे थे पिछले 20 साल से, रिसेंटली 5 इयर्स बैक लेजर इंक्लूड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में
2: जी।
3: और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस के आ रहे हैं। तो आपने आज जो इंट्रोड्यूस किया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में
2: जी, तो
3: वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस में होता है, क्यों होता है और इसका क्या करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा प्रॉब्लम।
2: जी बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ये खांसी जुकाम की तरह नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। सो बेसिकली वेरिकोज वेन्स है क्या?
3: जैसे कि आपने कहा कि पैरों में नसें होती हैं, तो नसें तो चाहिए, आर्टरीज हैं जो आर्टरीज हैं जो ले जाते हैं खून को आगे दूर की तरफ, और उस तरफ से फिर रिटर्न के लिए जो नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू दिखते हैं आपको कई बार पैरों में
2: जी।
3: तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वॉल होती है और वॉल में कुछ वॉल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। तो कई कारणों से इनका बैक फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वेन्स डायलेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेन्स। तो फिर वो डायलेट होने से जो मोटे मोटे वेन्स दिखने लगते हैं लोगों को, या कई तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के हैं, और उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
2: जी। यानी ये जो नसें विजिबल हो जाती हैं, एक जाल की तरह हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाई जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स होने से प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर किन लोगों को हो सकती है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में ये खास जानकारी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ये सारी जानकारी वेरिकोज वेन से जुड़ी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वक्त है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में एक ऐसी समस्या है जो काफी आम नहीं है लेकिन फिर भी जिसको होती है वो ही इसकी तकलीफ समझ सकता है आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि जाने माने सर्जन हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करें वेरिकोज वेन से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवाल सर आपसे अब मैं जानना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में हम बात करें आपने बताया कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं वेन्स वापस लेकर आती हैं और इस वेन्स का जो एक जाल बन जाता है वो वेरिकोज वेन्स कहलाया जाता है लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किन लोगों को इफेक्ट कर सकता है किस एज में कर सकता है क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है यंगस्टर्स को हो सकता है
1: एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जैसे आपने बोला ना जाल हो जाते हैं तो कई तरह के वेरिकोज वेन्स के कई टाइप्स हैं
0: जी
1: जैसे कुछ वेरिकोज वेन्स जो स्पेसिफिक बोलते हैं उसमें जो खून की नसें डायलेट हो जाती हैं मोर देन 3 mm साइज अगर हो जाए
0: अच्छा।
1: तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: okay.
1: अगर 1 mm से कम है तो फिर वो टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं
0: okay.
1: और अगर उससे थोड़े बड़े हों 1 to 2.9 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स
0: okay.
1: जैसे आप बोलते हैं जाल इज रेटिकुलर
0: okay.
1: तो जाल की तरह होते हैं और वेरिकोज वेन जो 3 mm से बड़े होते हैं वो आप देखेंगे टॉर्सुअस हो जाते हैं और एकदम लंबे लंबे से सांप की तरह आपको पैर के ऊपर दिखेंगे
0: स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाते हैं
1: वो वेरिकोज वेन्स है बेसिकली 3 mm से बड़े साइज के तो ये होते हैं और उसका कारण क्या होता है मेनली कि सारे जगह वॉल्व्स होते हैं पैर में दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं टू डीप है और एक सुपरफिशियल है उस दोनों के बीच में वॉल्व होता है तो जब हम खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है मतलब मोर देन 100 mm ऑफ एचजी तक हो जाता है वेन में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हम रहते हैं खड़े तो उसको सस्टेन करने के लिए वॉल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है क्योंकि पैर से जब ब्लड निकलता है पैर में आपने सुना होगा एक पेरिफेरल हार्ट भी होता है सोलियस मसल होता है तो जब हम चलते हैं काफ मूव करता है तो फिर वो वेन ब्लड जो है ऊपर पंप होता है हार्ट की तरफ फिर और सांस भी लेते हैं लंबी तो वहाँ निगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में तो वेन ब्लड को सक करता है ऊपर तब ब्लड जो है पेरिफेरी से हार्ट में आता है तो इस तरह से उस प्रोसेस में हिंड्रेंस हो जाता है वाल्व खराब होने से बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का पुलिंग होने लगता है पैर में ब्लड जमा होने लगता है तो इसको इससे ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज ये हो जाता है कि हार्ट को कम ब्लड जाता है पैरों में ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है
0: यानी वो नसें जो है वो इतनी स्वेलिंग सी हो जाती है कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से हार्ट पर भी असर पड़ सकता है ये तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को अंदाजा ही नहीं है कि पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने से आपके दिल पे असर पड़ता है और डॉक्टर साहब उम्र क्या होती है जिसको ये इफेक्ट करता है क्या किसी बच्चे को क्योंकि बच्चे जनरली इतना ज्यादा
1: बच्चों में नॉर्मली ये नहीं होता है बहुत रेयर बहुत कम चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एजेनेसिस ऑफ वाल्व होता है वाल्व बनते ही नहीं है
0: अच्छा।
1: तो उनको अर्ली स्टेज में हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये एक्वायर्ड रहते हैं और जो यंग एज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में जब लेडीज जो यंग एज में प्रेगनेंसी है जैसे 20s-30s में शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से कई बार वाल्व खराब होते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी में थोड़े कॉमन होते हैं ये वेरिकोज वेन्स बनना शुरू हो जाता उसी समय से बट मैनिफेस्ट होते होते कई साल लग जाते हैं
0: यानी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बाद में और बुजुर्गों में काफी देखे गए
1: जैसे जैसे एज बढ़ता है वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है तो ये एज से रिलेटेड है कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होता है कुछ फैमिली में भी चलते हैं ये
0: अच्छा यानी हेरिडिटरी भी हो सकता है
1: फैमिलियल बोलते हैं तो ये हो जाता है और कुछ मोटापा हो वेट गेन हो गया लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो प्रोफेशन है उसमें भी होता है ये जैसे टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या फिर सर्जन जो लॉन्ग आवर ऑफ सर्जरी करते हैं तो उन लोगों में ये होने के चांसेस थोड़े रहते हैं
0: जी यानी अगर आप 6-7 घंटे के आसपास खड़े हो रहे हैं डेली नॉन स्टॉप जैसे मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर गार्ड्स बहुत सारे होते हैं
1: टीचर्स हैं उन लोगों में सबके चांसेस रहते हैं
0: सो अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं क्योंकि आप 6-7 घंटे-8 घंटे अगर खड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ तो एक अलग लेवल पर हो रही है बाकी चीजें भी आपकी बढ़ सकती हैं जैसे आपकी कमर में दर्द हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो सकता है आपके पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है लेकिन वेरिकोज वेन्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर की वजह से आपको परेशान कर सकती है तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और साथ ही जानेंगे कि पहचाने कैसे इस प्रॉब्लम को लेकिन अभी वक्त एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का इसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी तब तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप शायद उन्हें ना जानते हो या आपसे कभी उन्होंने डिस्कस ही ना किया हो, लेकिन अगर उनकी बहुत लंबे समय तक खड़े होने की जॉब है, जैसे बहुत सारे टीचर्स या फिर सर्जन या फिर गार्ड्स या फिर मॉल में खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में काफी परेशानी भी झेल रहे होते हैं क्योंकि वेरिकोज वेन्स उन तक पहुंच रही होती हैं। शुरुआत में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम कुमार, जाने माने सर्जन, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वेरिकोज वेन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब। सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिसेज में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे?
1: बहुत अच्छी बात है कि पहले तो प्रॉब्लम है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है वो जानना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है, पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, पैरों
1: मतलब जैसे आपने बोला बहुत से लोगों को, स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम में 50% लोगों को है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेनस डिजीज। तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आप देखते होंगे सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
0: एक दो साल का समय लग जाता है।
1: हाँ जी, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्चुअस हो जाता है।
0: जैसे आपने

0: स्नेक वाला वैसा देखने
1: टाइप के दिखेगा। तो ये सेकंड उसके बाद का स्टेज है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है।
0: ओके
1: जी, तो वो एक उसके बाद का स्टेज है जिसपे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ उसमें फैट डिपोजिट होने लगता है।
0: ओके,
1: और फिर उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा।
0: ओहो,
1: तो अच्छा। कई बार आप देखते होंगे लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ, पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता है,
0: दर्द बहुत होता है, खुजली बहुत होती है,
1: तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में, काफ में क्रैम्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको भी अभी इग्नोर करते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, कुछ केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर अल्सर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इचिंग के बाद छोटे छोटे घाव बनेंगे और वो ग्रेजुअली डीप हो जाते हैं और उनको वेनस अल्सर कहते हैं। ये फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है।
0: ओके,
1: एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हील, किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होता है। कुछ भी आप एंटीबायोटिक देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, उससे ठीक नहीं होगा जब तक कि हम उसके कॉज को खत्म नहीं करेंगे। लाइक जब तक वेरिकोज वेन को एबलेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं, ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक घाव बंद नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप सर्जन हों, चाहे आप गार्ड हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और आप खड़े बहुत देर तक रहते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, सो आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। पैरों में होने वाली स्वेलिंग, साथ ही पैरों में होने वाली इचिंग जो होती है, आपकी टांगों में अगर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और नसें जो हैं वो अब विजिबली दिखाई दे रही हैं, थोड़ी मोटी हो गई हैं और आपको तकलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर वेरिकोज वेन्स में तब्दील हो सकती है। ये अभी शुरुआत है, इसलिए ये सिम्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती है। इसलिए अभी अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फिलहाल बहुत सारी बातें और भी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं आप इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या जो आपकी टांगों में होने वाली प्रॉब्लम है, नसों का बहुत ज्यादा विजिबल होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होना, इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर में सिम्टम्स के तौर पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे ये घाव यानी चोट सी भी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये शुरुआती दौर के सिम्टम्स आपने समझ लिए तो फिर क्या इलाज होगा और डॉक्टर कैसे आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार से, जो कि जाने माने सर्जन है, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है और हमारे आज के एक्सपर्ट भी। सो डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब एक व्यक्ति है, कोई टीचर है सपोज, और 36-37 साल की उम्र है, उनको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके पैरों में वेरिकोज वेन्स की हल्की हल्की समस्या आने लगी है, जैसे आपने कहा कि वेट की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, सो अब उनको क्या ट्रीटमेंट आप दें?
1: बहुत अच्छी बात। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो कितना समस्या कितनी गहरी है, कितना कहां से शुरू है, ये पता करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो हम देख के आंख से और डिफरेंट मेथड से ये पता करें कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं
0: जी।
1: तो नॉर्मली पैर में ना दो वेन सिस्टम है, एक तो डीप और सुपरफिशियल बताया। सुपरफिशियल में भी एक ग्रेट सेफेनस वेन है, लंबी वाली, जो जांग के पास से थाइक्स के से शुरू होके और फुट तक जाती है।
0: ओके।
1: तो उसको ग्रेट सेफेनस वेन बोलते हैं। और एक नी के पीछे से
0: काफ मसल्स,
1: फुट, काफ मसल्स के थ्रू फुट में जाती है
0: जी।
1: उसको शॉर्ट सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं जिसमें वेरिकोज वेन्स होते हैं नॉर्मली। तो उनको हम लोग पहले इवेलुएट करते हैं, क्लिनिकल मेथड से देखते हैं कि किस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज होता है जो डॉपलर बोलते हैं।
0: ओके।
1: वेनस
0: कलर डॉपलर वगैरह,
1: कलर डॉपलर
0: जी जी।
1: तो वेन्स का भी करते हैं, आर्टरी का भी करते हैं। इसमें वेनस डॉपलर करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा रियल वाल्व कौन सा खराब है, किस लेवल पे खराब है, और फिर उसके नीचे डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो परफोरेटर है उसमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व कहाँ पे खराब है, तो जहां जहां होता है उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं स्किन पेंसिल से ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉपलर के टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं
0: जी। जी जी तो यानी पहले आप उस चीज को समझेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात मैं करूँ तो ट्रीटमेंट क्या खाली ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी या किसी तरीके की और कुछ आप चीजें करते हैं?
1: कई स्टेज है ट्रीटमेंट के, अगर बहुत अर्ली है तो मेडिसिन भी है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं, और उनको बड़े लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है विद मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे वेट लॉस करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे पेरिफेरल हार्ट, जो सोलियस मसल के अंदर जो पंप है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वेनस फ्लो को बढ़ा देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो स्टेसिस कम हो जाता है। तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉकिंग सुना होगा आपने, कंप्रेशन स्टॉकिंग होते हैं, तो उसमें कई टाइप के हैं, ग्रेड 1, 2, 3 करके, तो उस स्टॉकिंग को आप पहन सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब आप वॉक करते हैं या लॉन्ग खड़े रहते हैं तो उस समय आप पहन के उसको यूज करके अपने वेनस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इससे फायदा भी हो सकता है।
0: ओके, यानी चीजें बेटर हो सकती हैं सिर्फ ओरल मेडिकेशन से,
1: ओरल मेडिकेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जो बड़े सारे दिन खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पैर में सूजन आना शुरू हो गया तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना शुरू करना चाहिए।
0: जी जी। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से होती है? लेजर होती है या जैसे आप करते हैं नॉर्मल सर्जरीज वैसे होती है, और कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है इसमें?
1: शुरू में जब हम लोग पढ़े कॉलेज में थे तो उस समय तो ओपन सर्जरी ज्यादा होता था, स्ट्रिपिंग करते थे वेन के अंदर, एक तार डाल के उसको खींच के निकाल देते थे, थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी उसके होते थे, नर्व इंजरी वगैरह हो जाता था। धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट सा हो गया है, और आज के दिन में जैसे एडवांसमेंट हुआ सर्जरी में, बहुत सा चीज आ गए, तो लेजर के आने से एकदम से रिवोल्यूशनाइज हो गया। पिछले 10-15 साल से लेजर वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: जी। और उसमें बहुत कम तकलीफ होता है, बस एक नीडल प्रिक करते हैं वेन में और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और फिर एक सीथ डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर जाता है और ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ठंडा पानी या उसमें विथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, सो दैट की पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो. तो उसमें फिर लेजर फाइबर से मतलब 60 जूल पर सेंटीमीटर एनर्जी डिलीवर करते हैं, सो दैट कि वो बर्न हो जाए, कोलैप्स हो जाए वेन्स. फिर वेन धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, वो बंद होता जाता है.
0: जी, और इसमें रिकवरी कितने समय में हो जाती है? क्या व्यक्ति दोबारा वही जो जॉब है अपनी कर सकता है? सपोज कोई टीचर है तो वो टीचिंग प्रोफेशन वापस अपना शुरू कर सकती हैं?
1: कब से रिज्यूम करें अपना जी? तो मैं आपको ये बता था कि पहले तो एक लेजर था, फिर उसके बाद थोड़ा आरएफए आया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन बोलते हैं वो. फिर कुछ हाल के दिनों में कुछ ग्लू भी आए हैं, तो उससे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ज्यादा, बट और बिकम पेन और फास्टर रिकवरी जो आप बोलिए कब ज्वाइन कर सकता. तो नॉर्मली ये सारे जो भी कोई प्रोसीजर करते हैं हम लोग 24 आवर में सारे पेशेंट घर चले जाते हैं. मतलब कैन डू इन डे केयर आल्सो, बट एहतियातन उनको रख लेना, थोड़ा रेस्ट देना अच्छा रहता है. तो 24 घंटे में तो 99% लोग घर चले जाते हैं.
0: अच्छा, और उसके बाद 2-3 हफ्ते में काम शुरू कर सकते हैं?
1: मतलब 1 week के बाद भी अगर शॉर्ट स्टैंडिंग का काम है तो जा सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग पहनना बड़ा जरूरी रहता है. 1.5-2 महीने तक स्टॉकिंग दिन में पहनना चाहिए, रात को सोते वक्त में उतार
0: देना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वेरिकोज वेन्स की समस्या ये ट्रीटमेंट सारे होने के बाद दोबारा भी आ सकती है?
1: बड़ा इम्पोर्टेंट है और सब लोग ये पूछते हैं, जानना भी चाहिए कि रिकरेंस के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं. मतलब 5-10% लोगों को 5 years डाउन द लाइन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बॉडी में एक बड़ा मतलब फैंटास्टिक फीचर बोले कि हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, रिपेयर करते रहता है. तो जिस वेन को हम लोग बर्न कर देते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे रिकैनलाइज हो जाते हैं.
0: अच्छा,
1: जैसे कई बार आपने सुना होगा पैर के नसों में ब्लड जमा हो गया, थ्रोम्बस बन गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो 4-6 महीने में आप देखेंगे वो रिकैनलाइज हो जाते हैं, फिर से उसमें नए वेन्स पेटेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं. तो वैसे ही बॉडी अपने को रिपेयर करता है और वो वेन फिर से पैदा हो जाते हैं. और लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में, 5-10% बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो ऐसे लोगों को होने की संभावना है 5 years के बाद.
0: सो वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया है, सर्जरी से या फिर ओरल मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज से या फिर ग्लू से. जी हाँ, ग्लू से भी वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है. लेकिन आगे हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, रीअकरेंस ना हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी चीजें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं आज वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अक्सर आपने बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, पर बात करना जरूरी है। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप काफी घंटों तक नॉनस्टॉप खड़े रहते हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है और नसें जो हैं आपकी वो विजिबल हो रही हैं, थोड़ी मोटी दिख रही हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या आप क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स खतरनाक क्यों है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि भाई ये हार्ट पर भी असर डालती हैं। अगर नसों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सीधा दिल पर असर पड़ेगा, और दिल पर असर पड़ेगा तो आपकी पूरी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए वेरिकोज वेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लू हो या फिर सर्जरी हो या फिर ओरल मेडिकेशन, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने सर्जन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर साहब, अब जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, उसके लिए अपना ख्याल क्या रखें, क्या डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दिया जाता है।
1: मैडम, इसमें ना दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ चीजें जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एजेनेसिस ऑफ वाल्व है या फैमिलियल ट्रेट्स हैं, तो ये इतनी ग्रुप है, किसी किसी देश में किसी किसी रीजन में ज्यादा होता है, तो ये सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनको, लेकिन इनका रोल बहुत कम है
0: जी,
1: बहुत रेयर है ये सब, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं उस पर हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेट गेन को रोकना, तो उसमें आपको डाइटरी मोडिफिकेशंस और फिजिकली एक्टिव रहना, ताकि आपके जो पेरिफेरल हार्ट हैं, सोलियस मसल्स का मूवमेंट हो, काफ का मूवमेंट ज्यादा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वेन डेवलप नहीं होंगे। या जैसे आपका आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब हैं, तो वो भी बीच में थोड़ा ब्रेक लें और पैर को मजबूत रखें विद गुड एक्सरसाइज, वॉक करके बीच बीच में आप काफ को मूव करें, फुट को मूव करते रहें, सो दैट कि आपका काफ रिलैक्स रहे मसल्स को। जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो वो उसमें लिखा रहता है प्लेन में भी कि पंजे को चलाते रहें, बीच बीच में पैर को उठाएं ताकि आपका ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये एक्सरसाइज, ये मॉडिफिकेशंस आप अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में भी डाल सकते हैं जो आपके वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकता है।
0: ओके जी जी, यानी अपना जो है फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को लिमिटेड ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है अगर हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो वेरिकोज वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं, बस हमारा तात्पर्य या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना ख्याल रखें और फिट रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब कुछ कमा सकते हैं, बस सेहत नहीं कमा सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक नए टॉपिक से जुड़ी हुई बातचीत पर। तब तक मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। Feel good, feel live. This is Deeksha signing off.

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था और साथ ही PCOD, हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को

0: दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
1: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 kg तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
0: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
1: जी,
0: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
1: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपने हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 kg वेट गिर जाए
0: जी।
1: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
0: जी।
1: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
0: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
1: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4-4.5 साल।
0: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही है मतलब बहुत उम्दा मैं कहूंगी, आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या, कितना वेट था?
1: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे आज भी याद है कि 78 kg का वजन मैंने देखा था स्केल पर
0: जी।
1: और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी, क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई? तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूँगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी? और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे। तो वो 78 kg का मार्क मुझे याद है, और एट द एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 kg पे थी।
0: वाओ, सुपर सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफ़र, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ। सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
1: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी। जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया, अरे आप लिफ्ट मत कीजिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है। और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए। तो ये

0: और भी बड़ा एक रीजन बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है. तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गोंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज खराब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा. लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. अच्छा. तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक ज़िद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया 1.5 साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
1: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज के लिए भी उतनी जरूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
0: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरन ही देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें, मुझे लगता है, डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो, सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5-6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात, उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया, और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिटन हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं. ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है. अच्छा. तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं. तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं. अगर आप 20s-30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है. तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए. और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है. मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है. जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया. लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है. तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा. और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे. तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है. मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है. पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया. मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ. तो वुमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है. हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो, या योगा या जिम चले जाओ 1 घंटा. और वहाँ पे भी, जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग. सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की, चाहे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइव्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत जरूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सब की रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया। हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है, और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन
0: देखे हैं हमने, आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखे हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन कर रही हो, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 to 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है, और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है। सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं, तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोस भी होती हैं, तो वो वीडियोस के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल वाइज वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन. तो वहाँ प्लान्स होता है एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज में गुरु होना तो बहुत जरूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत जरूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो है NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज्यादा है. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर काम, उनके बच्चे और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप ते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमन के लिए क्यों इतनी जरूरी है, स्पेशली इंडिया में जहां मिथ्स बहुत ज्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपेनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%. या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा विमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ही इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारे विमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते
0: जी.
1: फिर भी वही है जो स्ट्रेंथ लूज कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए. रोज मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती. तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं. तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा. तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरिक रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि आप ट्रेन करें. ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की जरूरत है. अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहां फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी.
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं. जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे
1: जी,
0: में
1: जी,
0: बिल्कुल ही नहीं पता हमें. जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी.
1: धन्यवाद.
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसी जर्नी पर हैं। तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने 2.5 घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए या कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे 1-1.5 घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड है।
0: अच्छा
1: जी। और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है। यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो 5 चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलेड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा BMR अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन PCOD आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत है।
0: मतलब चीजें वही है, बस तरीका बदल गया,
1: स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो RDA रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है
0: जी,
1: ये सर्वाइवल नंबर है कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो आप बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
0: हाँ जी।
1: तो कैसे हम कहें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा? ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा या घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं। तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस, और PCOD एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है। अगर PCOD है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है, आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के,
0: थायराइड,
1: इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी PCOD के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए, यही लाइफस्टाइल, यही 5 चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज PCOD से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
0: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी RO लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का।
1: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं
0: जी। और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही ज़रूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
1: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएँ। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मेंटीज 120 मेंटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
0: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद ज़रूरी है।
1: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे 2 पे पहुँचे आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
0: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर और काफी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
1: थैंक यू गौरी।
0: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज़ भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकती है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
1: नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
0: जी।
1: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है। तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
0: जी।
1: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए। जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है। डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है।
0: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सो टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे। तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है। तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का। तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं। जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं
0: जी। मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
1: बच हैं। तो सकते हैं 100%। तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया। तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40 आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग। मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
0: जी।
1: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है। घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है आप ले रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
0: जी। और साथियों अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट ये डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ। लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका बीएमआर, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से बीएमआर थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैट्यू हिट करेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें।
0: जी, तो सिमरन, हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड।
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म।
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी।
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए।
0: नाइस। एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा।
0: वाओ, सुपर, थैंक यू सो मच। तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है। सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं। तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, जी, कि बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल।
0: जी,
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचेज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए, और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए। ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है। बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं।
0: जी, थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, आई एम ऑल देयर टू गाइड देम। एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा।
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच, एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे। सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: हाय, आई एम दिग्मांशु धूलिया, यू आर लिस्निंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
3: तुझे भी मैं करा दूं तमन चेपे डिस्को।
4: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे सागर आया हूँ लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। अब लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ये शो हमारा बहुत खास होता है, वो क्या है ना कि इस शो में हम लोग बात करते हैं एक्सपर्टीज की, इस शो में हम लोग बात करते हैं स्किल्स की, मोर ओवर यहाँ पर हम हर बार एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो किसी भी डोमेन से हो सकते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर इस शो के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें हम बता सके। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यम। सत्यम एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, साथ साथ उन्होंने हाल फिलहाल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है। तो सत्यम से हम लोग बात करेंगे थिएटर के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, मुंबई की कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सत्यम से आज जान रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे सत्यम का। सत्यम स्वागत है।
5: हेलो भैया, थैंक यू भैया मुझे बुलाने के लिए।
4: सत्यम, मैं सबसे पहले आपके डोमेन के बारे में जानना चाहूंगा, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं अपने शब्दों में, एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल क्या है।
5: ओके, सो अभी मैं 2024 में मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा था थिएटर आर्ट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद मैंने अपना नाटक करने के लिए एक थिएटर ग्रुप खोला है जिसका नाम है रंगरेज। तो उसमें मैं नाटक लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ और उनमें एक्टिंग भी करता हूँ। तो ये अभी फिलहाल और नए नए मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू किया, तो मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ।
4: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा ये अभिनय का कीड़ा, थिएटर का कीड़ा, ये उपजा कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
5: स्कूल में क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं तो वो थिएटर करते थे, जब मैं 10th में था तो वो कॉलेज आ गए थे मानव रचना से ही। तो उनको देख के कि उन्होंने थिएटर शुरू किया तो साथ में मुझे लगा कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। और ये वो टाइम है जब यूट्यूब और नेट काफी आ गया था, जियो रेवोल्यूशन जब हो रहा था, तो उस वजह से मैंने गुफ्तगू के एपिसोड देखे यूट्यूब पे, तो समझ में आया कि मंडी हाउस एक जगह होती है तो वहां पे जाके आप थिएटर कर सकते हो। तो बस वहीं से था, मैं 10th में था तो मुझे था कि किसी तरह मुझे पढ़ाई करके अच्छी सी मुझे डी यू में जाना ताकि मैं थिएटर कर सकूं। तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे और मैं डी यू जा सका, तो वहां से मैंने थिएटर शुरू कर दिया। फिर चीजें अपने आप धीरे धीरे खुलती गई।
4: बिल्कुल,
5: तो मैं मेनली भैया को देख के। हाँ सॉरी,
4: हाँ मैं ये अब जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये बताइए कि थिएटर ने आपके अंदर क्या बदलाव दिए, क्या चेंजेस आपके अंदर आए थिएटर करने के बाद जो आप खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली थिएटर से होता क्या है।
5: बिल्कुल, सो सबसे पहले मैं 17 साल का था जब मैं कॉलेज गया डी यू में, आचार्य देव करके कॉलेज है साउथ कैंपस में, वो क्या कहते हैं गोविंदपुरी में है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ की थिएटर सोसाइटी में मैंने अपने को एनरोल कर लिया, किससे मैंने ऑडिशन दिया और मेरा हो गया था ऑडिशन। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में और देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत ही इग्नोरेंट तरीके से मैं अपनी जिंदगी चला रहा था और मेरी लगभग 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं था मेरे को। तो जब मैं वहाँ गया और हम वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाटक भी होते थे, पॉलिटिकल नाटक भी होते थे, नाटकों की रीडिंग्स होती थी जो सीनियर्स लोग करते थे, तो वहाँ की सीटिंग में बैठ बैठ के मुझे काफ़ी अवेयरनेस हो, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया दुनिया के बारे में। और कहानियाँ हम पढ़ते थे बड़े बड़े राइटर्स की, मंटो की, भीष्म साहनी की, तो उससे बहुत कुछ समझ में आया जो मेरी लाइफ नहीं है उनके बारे में जानना। तो उससे वो एक फिर जर्नी शुरू होगी मेरी इस तरफ। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो हाँ थिएटर, हाँ या
4: ओके तो आपका आपकी सराउंडिंग के बारे में पता लगा एंड समाज में क्या चल रहा है, एक तरीके से आप एक जागरूक इंसान बन गए।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: वेलकम बैक गाइस, इस शो पर आपको मजा आ रहा है गानों के साथ साथ साथ आपको इस शो पसंद आ रहा है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सत्यम। यहाँ पर रंगमंच के एक अभिनेता हैं, अपना एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, और अभी तक हमने जाना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चेंजेस इनके अंदर थिएटर जो है वो लेकर के आए। आइए शो को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और सत्यम से बात करना चाहेंगे स्किल्स के बारे में। सत्यम, मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि थिएटर में कौन कौन सी स्किल्स की हमें जरूरत होती है, क्या वो स्किल्स हैं जिन्हें हमें चाहिए और कैसे उनको अपने अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है?
1: ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे हमने शुरू किया था तो या जो भी थिएटर की हिस्ट्री भी रही है, तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपको कम्युनिकेट करना, जो मतलब आपको एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन बेसिक नीड फॉर द थिएटर। तो वो आपने जब ऑब्जर्व किया होगा तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो सबसे बेसिक नीड है मुझे लगता है थिएटर की, वो ऑब्जर्वेशन है। आप जैसे जैसे आप आपकी लाइफ बढ़ती रहती है, आप चीज़ों को समझते रहते हो और पढ़ते हो, देखते हो, लाइफ में आप ग्रो करते हो, इवॉल्व होते हो, तो वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन भी और सटीक होती जाती है। बाकी सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, अपने आसपास को देखना, ऑब्जर्व करना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किल्स की भी बात करना चाहूंगा सत्यम, ऑब्जर्वेशन के अलावा कौन कौन से टूल्स एक एक्टर के पास होते हैं जो थिएटर में जाकर के पॉलिश करने होते हैं, या कोई प्रॉपर थिएटर में नहीं जा पा रहा है, अपने घर पर पॉलिश करना चाह रहा है, तो कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हमें जिनके ऊपर काम करना चाहिए
1: एक एक्टर को?
0: हाँ, एक एक्टर को
1: समझ गया मैं। टूल्स जैसे चार चीजों के बारे में बात होती है एक्टिंग में, तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो उसको अगर हम बेसिक डोमेन में कवर करने की कोशिश करें तो आप अपने बॉडी को फिट रखें, योगा जो भी आपको सही लगता है, और आपको वॉइस ट्रेनिंग के लिए आप अगर कुछ म्यूजिक करते हैं, आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने आप से भी कुछ नॉर्मल, आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, नॉर्मल सुर लगा सकते हैं ताकि आपकी वॉइस की क्लैरिटी सही रहे। और बाकी अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए आप हमेशा मतलब वो हमेशा ओपन है, आप कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। और कॉस्ट्यूम जैसे कि मैंने बात बोली थी पहले कि ऑब्जर्वेशन, तो फिजिकल अपीयरेंस हर कैरेक्टर का मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैसे कपड़े क्यों पहनता है, कहीं कहीं पे कपड़े फिक्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में आप धोती और कुर्ता नहीं पहन सकते, आपको वहां पे शर्ट और पैंट ही पहनना पड़ेगा। तो ये इसको आहार्य में आता है, ये फिजिकल अपीयरेंस में आता है। ये तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन ने, कुछ सोसाइटी ने बनाया और कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से, स्पेस के, एटमोसफेयर के। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन का कैसे कपड़े, कौन सा कैरेक्टर क्या कपड़े पहन रहा है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं। और सात्विक जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, वो ट्रेनिंग से आता है, वो जो हम ट्रुथ की बात करते हैं परफॉर्मेंस में ढूंढने की, वो समय के साथ आता है, इसमें काफ़ी समय देने के बाद आता है। तो ये चार चीजें पर अगर ध्यान दें तो मतलब एक जर्नी में आप जा सकते हो।
0: बिल्कुल, काफी सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग हैं जहां तक आपकी आवाज जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अभिनेता बनना होगा। जिसको अभिनेता बनना है उसकी शुरुआत कैसे की जाए अभिनेता बनने की, बिल्कुल बेसिक से रोड मैप क्या बना के आप देना चाहेंगे?
1: जैसे मैं कल ही इंटरव्यू देखा था प्रसन्ना साहब का, तो उसमें उन्होंने बहुत कमाल की बात बोली कि हम जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो आदमी बस देखता है कि जैसे जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं थिएटर देखने गया था, तो मैंने थिएटर देखा, फिर एक मन में एक सवाल आता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अभी आज भी का जमाना जैसा हो गया है, इंस्टाग्राम बूम जब से किया है तब से अब लोग रील्स देख रहे हैं, तो काफी कंफर्टेबल हो गया है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आपके फोन में आपको दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप देख के ही करने लग जाएंगे, करने के लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज जो है, अब और चीजें आसान हो गई आपके लिए, तो आप बस फोन उठाएं और करें। एक्टिंग में ही एक्ट एक शब्द है, तो एक्ट करना जरूरी है, आप बस करें, और चीजें वैसे ही इतनी ईजी हो गई हैं, तो बस आपको एक्शन लेना है। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, विजुअली बम्बार्डमेंट हो रखा है, तो बेस्ट ये है कि आप बस शुरू करें, बस एक स्टेप लें, फिर चीजें अपने आप हो जाएंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्यम ने अभी तक हमें बताया कि थिएटर की शुरुआत कैसे होती है, अभिनेता बनने की शुरुआत कैसे होती है, तो देखने से अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखिए, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, अच्छी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या अच्छा इसमें किया गया है, किन किन नुआंसेस को उठाया गया है, बॉडी, आवाज़, आहार, जो सत्यम ने भी बताया हमें कि चार भागों में इसको मेनली बांटा जाता है, तात्विक, वाचिक, आहारिक और आंकिक, उनको अलग से अगर आप डिकोड करके देख पाते हैं क्या अभिनेता क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, तो शायद आप अच्छे से टेक्निकल वे में उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक एक मैकेनिक की तरह हम इसको देख सकते हैं। जब एक गाड़ी मैकेनिक के पास जाती है तो वो कभी नहीं बोलता है कि ये गाड़ी खराब हो गई है, वो हमेशा एक पुर्जा देखता है, उसके लिए वो गाड़ी नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारे पुर्जों का एक जत्था है जिसमें टायर अलग है, इंजन अलग है, स्टेयरिंग अलग है। ठीक ऐसे ही एक अभिनेता होता है, एक कैरेक्टर में अगर आप ऐसे पार्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं कि इसका डायलेक्ट अलग है, आवाज अलग है, बॉडी पॉस्चर अलग है, बाल अलग है, सब कुछ अलग है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, तो एक accumulative way में एक character बनके तैयार होता है। This is the baseline of that thing. तो अगर कोई भी इंसान इस time actor बनना चाहता है और हमारी आवाज सुन पाया है हमारे interview के माध्यम से, तो ये चीजें observe करना शुरू करिए अपने आसपास के लोगों में, सवाल पूछने शुरू करिए।

आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद शो में हम आगे बात करेंगे. विल टॉक अबाउट एडिशंस, विल टॉक अबाउट कंटेंट, विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 7.0 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए तो 8010781078 हमारा नंबर है, बहुत ही इजी, इस पर अपनी बात हम लोगों तक जरूर पहुंचाइए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो का मागले करके चलेंगे। शो है वॉइस ऑफ यूथ, आज के हमारे मेहमान मिस्टर सत्यम, बात कर रहे हैं अभिनय की, बात कर रहे हैं अभिनेता की। आइए थोड़ा सा और आगे एक तरफ लेकर के चलते हैं सत्यम, क्योंकि आप मुंबई रह चुके हैं, आप मुंबई कल्चर को अच्छे से समझते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई काम कैसे करता है, और मुझे ये जरूर बताइए कि मुंबई में काम कैसे ढूंढा जाता है।
1: जी जी जी, मुंबई का एक जो बेसिक मोटो है वो ये है कि वहाँ जाते ही सब बहुत इंडिविजुअल हो जाते हैं, तो क्योंकि आपके दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, पर सबकी एक अपनी खुद की भी जर्नी है, सबको अपना खुद का भी नाम बनाना है, तो वहाँ पे समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सब भाग रहे होते हैं और सब अपने लिए भाग रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, इसलिए हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब भाग क्यों रहे हैं, सब एक मोशन में क्यों है, थोड़ा आराम से चीजें नहीं हो सकती क्या। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगा था, पर धीरे समझ में आता है कि नहीं, ये शहर ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, ये अगर ऐसे वर्क नहीं करेगा तो फिर कोलैप्स जाएगा, सिस्टम ही कोलैप्स जाएगा यहाँ का। तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आता है, एक साल लग के समझ आता है कि हाँ ये ऐसे ही वर्क करता है। दूसरा, काम मिलने का प्रोसेस जितना मुझे समझ में आया वो यही है कि चीजें अभी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऐसा लगा था कि कास्टिंग जब आ जाएगी, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ जाएंगे या कास्टिंग कंपनी आ जाएगी, तो चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, पर नहीं, उससे इतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, कहीं कहीं जगह है, कहीं कहीं जगह नहीं है। तो अभी भी फिजिकली आपको जाना पड़ता है डोर डोर ऑफिस में, और ऑनलाइन भी आपको प्रोफाइल भेजनी होती है। यूजली एक आ जाता है कि हर 4 हफ्ते में एक नया काम आता है, तो आप फिजिकली भी जाओ डोर डोर अपनी अपना शक्ल दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा, ये मेरा लुक है, अगर प्लीज मेरे लोग काम होता बताइए। दूसरा, ऑनलाइन तरीका है ही भेजने का, तो अगर कुछ क्रैक हो गया उन दोनों तरीके से तो हो गया। तो चीजें सिस्टम से बना रखी हैं, पर स्टिल अभी भी थोड़ा इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी भी आपको वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है जाके। तो यही तरीका है
0: जी। तो आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि कास्टिंग का अगर कोई तरीका है अभी हाल फिलहाल जितना आपने ऑब्जर्व किया है, काम कैसे ढूंढा जाता है?
1: ओके, जैसे जो बड़ी कास्टिंग, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ऑफिस हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बना रखा है कि आप वहाँ जाइए और इंट्रो दिए, इंट्रो वो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी काम उनके पास आएगा तो उस डाटा में गो थ्रू करते हैं, और अगर उसमें आपका प्रोफाइल उनको पसंद आया तो वो आपको ले लेंगे। तो ये एक बेसिक तरीका है, और इसमें ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं आते, आपको कॉल आते हैं। और दूसरा, जैसे मैं तरीका आपको बताया कि हर 4 हफ्ते में नया काम कॉल आता ही है, नया काम आता ही है कास्टिंग वालों के पास, तो अगर आप हर हफ्ते हर ऑफिस में जा रहे हैं या ऑनलाइन जो भी कास्टिंग इंटर्न से आपकी बातचीत हो रही है उनके उनके साथ कनेक्ट में रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ काम चल क्या रहा है, और आप ही को काम निकालना है। मतलब ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, पर ऐसे ही काम चल रहा है।
0: आप सही बोल रहे हैं कि काम आपको निकालने का तरीका कोई फिक्स सिस्टमैटिक नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कैसे काम ढूंढ सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, हाउ यू वांट टू रीच आउट टू दैट पार्ट। कुछ लोग कंटेंट के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ लोग ऑडिशंस के थ्रू काम ले रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस के थ्रू काम ले रहे हैं, तो काम करने के बहुत सारे लोगों ने वे ढूंढ लिए हैं अपने, इट्स जस्ट कि आप कहां पर फिट इन हो पा रहे हो, दैट शुड बी द थिंग। अब मैं बात करना चाहूंगा सत्यम कंटेंट की, कंटेंट और थिएटर में पहले मैं फर्क जानना चाहूंगा कि क्या फर्क है दो चीजों में, और कैसे आपने अडॉप्ट किया, कैसे होता है कंटेंट क्रिएशन।
1: मुझे जो मेजर फर्क लगा, क्योंकि मैंने थिएटर की पढ़ाई भी की है, मैंने 3 साल इन्वेस्ट भी किया थिएटर में, मास्टर्स किया, तो वहां पे हमने वर्ल्ड थिएटर के बारे में पढ़ा, हमने आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा और पेंटिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें टाइम लगी है, आज से 100 साल पहले जो पेंटिंग बनती थी या वैन गॉग ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें उन्होंने काफी टाइम लिया था, और अभी का जो जमाना हो गया वो उसमें कट आ गए हैं, मतलब बहुत स्पीड हो गया है। जैसे ऐसे बोलते भी हैं कि कंटेंट में अगर तू डायलॉग के बीच में पॉज ले रहा है भाई तो उसको कट कर दे तो ये बस ऐसे बोला जाता है। तो ये एक मेजर फर्क है, टाइम का मेजर फर्क है, क्योंकि अगर लोगों की उंगली पे है आपका कंटेंट, तो अगर आपने थोड़ा सा पॉज लिया और आपकी कुछ भी कह लो आपका उस फ्रेम में जो मिसऑन से उनको पसंद नहीं आया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आपको हटा देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। और थिएटर में एक सेटअप होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लोग अपने घर से निकल के जाते हैं नाटक देखने के लिए, और उस नाटक को बनाने में नाटक की आइडियोलॉजी को बनाने में टाइम लगा होता है। जैसे गिरीश कानार साहब के नाटक 10-10 साल लगे, 10-10 साल लेकर वो लिखते थे नाटकों को, उसके बाद भी लगता था कि इसमें भी थोड़ी आइडियोलॉजी की कमी है। तो वो एक टाइम का मुझे मेजर कमी लगती है। और क्या है, कंसिस्टेंसी एक गेम बन गया है कॉन्टेंट क्रिएशन में, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रोज एक वीडियो आ जाए या दो दिन में एक वीडियो आ जाए, रेदर देन क्वालिटी पे। ये एक मेजर फर्क है, जो कि समय का नीड भी है, तो कुछ गलत नहीं कह सकते इसमें, बस ये समय का कॉल है बस।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करना चाहूँ तो एक और प्रश्न है, बहुत सारे लोग क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आप कैसे ढूंढते हो कहानियां, कैसे आप वो ढूंढते हो, फिगर आउट करते हो कि ये मुझे बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, कैसे होता है वो पूरी इकोनॉमी काम कैसे करती है, थोड़ा बताइए।
1: ओके, तो मैं भी खुद ही शुरू कर रहा हूँ तो मेरे खुद ही अभी कम फॉलोअर्स हैं काफी, पर जैसे बहुत सारे हर फील्ड में पायनियर्स होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं आपको, जिन्हें टॉर्च बेयरर्स कहते हैं। तो जिन्होंने, जैसे अगर हिचकॉक ने जो टेक्निक बनाई, उसके बाद ही आगे के फिल्म मेकर नॉर फिल्म में, नॉर जॉनर में कुछ ना कुछ कर पाए। जैसे अगर मिर्च खटिकम नाटक कालिदास ने लिखा, तो उसके बाद जो मिडिवल एरा में जो लोग नाटक लिख पाया, उन्होंने वैसा नाटक लिखा। शेक्सपियर ने जैसे, तो उस सेंस, उसी सेंस में जिन लोगों ने इंस्टाग्राम के शुरुआती दिनों में अच्छा किया, तो उन्हीं को मैं देखता हूँ, उन्हीं को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है। और तन्मय भट्ट का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप सबसे पहले अपना नीश ढूंढें, आपको क्या करना अच्छा लगता है, जिसमें

0: को समय का पता नहीं चलता, और उसके बाद जो उस नीश में जो सबसे टॉप क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है। तो जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को देखता हूँ, बस उनको देखता रहता हूँ, और उनके मतलब वो कैप्शन क्या लिख रहे हैं, वो फ्रेम कैसे बना रहे हैं, वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी डिलीवरी कैसी है। और लकीली मेरे भाई भी उनमें से एक, तो उनको फॉलो करता रहता हूँ, उनका काम मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी देखता रहता हूँ मैं काफ़ी टाइम से, सागर भाई का काम भी मैं देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो यही है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ बस।
1: बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस भाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है उनका नाम है ऋषभ शुक्ला, जिनका हम इंटरव्यू यहाँ पर कर चुके हैं दो बार, और बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छे इंसान हैं, बहुत सुंदर कंटेंट वो बनाते हैं, और डेफिनेटली मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स में आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद शहर से सबसे पहले किसी इंसान ने अगर कॉन्टेंट बनाने का काम शुरू किया था, जिसने हम सबको भी आग दी और केवल आग नहीं मतलब सपोर्ट भी दिया, वो ऋषभ शुक्ला एक नाम मैं यहाँ पर जरूर मैंशन करना चाहूंगा। तो सत्यम के भाई हैं ऋषभ शुक्ला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सत्यम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सत्यम, मतलब मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं, कोई वैसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: अभी भी फिलहाल ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है।
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट।
0: थैंक यू सो मच भैया आपका, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू, एंड आई जेन्युइनली विश कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ये बहुत स्मूथ रहे और बहुत अच्छा रहे। तो जैसे आपने बाकी जगहों पर एक्सेल किया है, थिएटर में और मास्टर्स किया है, पढ़ाई किया है, स्टेज प्लेस किए हैं, ठीक वैसे ही आप कंटेंट को भी अपने आगे लेकर के जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।
0: थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
1: ऑलराइट दोस्तों, अब वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। सत्यम से आदमी ने बात करी, उन्होंने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताई। हर एक अभिनेता का, हर एक इंसान का अपना एक अनुभव होता है जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के बाद उन्हें टेक्निकलिटी समझ में आती है, तब जाकर के अपना एक रास्ता बनता है। सत्यम भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी लोगों ने बताने की कोशिश करी, कि आपको अपना खुद का रास्ता एक ढूंढना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, देयर इज नो एसओपी फॉर दैट पार्ट कि ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस आर्ट इज ऑल अबाउट फ्री फ्लोइंग, जितना आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, जैसे आप तरीके ढूंढ सकते हैं वो आप जरूर ढूंढेंगे। फिलहाल अपने शो को यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। आशा करता हूँ आज का शो आपके लिए मूल्यवान रहा होगा, फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: ये हुई ना बात।

जा ए काली घटा।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हींग के बारे में। भारत में हींग की खेती की पहल की अगर हम बात करें तो हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाहौल स्पीति के रिबलिंग स्थित सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड बायोलॉजी यानी CHAB में विशेष अनुसंधान किया जा रहा है। यहां बीजों से तैयार पौधों को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया गया है और अलग अलग स्थानों पर परीक्षण चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे और शुष्क क्षेत्रों को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। ये प्रयास देश में पहली बार हो रहा है किसान भाइयों, और इसके सफल होने पर न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। लेकिन अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं हींग का परिचय बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तो मैं उसने जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए, अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं, उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जुड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी,
यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंदी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंदी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंदी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो कोई झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा अखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई। अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाकर बेच जाओ। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने लगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए। इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो।

0: आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुए। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आए अकबर से कहा कि दुखी हैं लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर को कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है? ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए? ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए। बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दोगी तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाता। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा होले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाथे नहीं बन सकता,
1: कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चलाने, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है, मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ, मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा, तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो, तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है, तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया, आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी, श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी, तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो, ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता, असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती, जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है, और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध, नानक, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पर जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है, तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते हैं, तो ईसाइयत जज भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जज गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही। पूरब के तर्क जो जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है। इसलिए तुम्हें जज भी होगी बात, लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको। इसलिए अड़चन भी आ रही है। अब तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन
2: अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो न हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते हैं। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेशु अनुत्सुका उत्सुकेशु मनुष्येशु बेहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। साख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ। पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं, ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है। और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत,

तुमने देखा नहीं कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सासों से हो ही ना, इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्ष्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफ कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो, कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है, असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं।

इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी हूं। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, हां अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देख कर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर दिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है। और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड, बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है एक्चुअली, ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. Become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था.

0: आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है। और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं। वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है, तो सही परिपेक्ष क्या हो।
1: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का, उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें। और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना। जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव।
0: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
1: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो। तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो, देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो, आई एम द विक्टिम, यू नो, मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
0: मैं ही करूँ,
1: मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे, नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी। और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
0: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
1: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
0: पेन में हूँ,
1: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है, दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड, विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, यू नो, इवन नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियली, यू नो, विक्टिम्स ऑन सम बिग,
0: छोटे छोटे, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, यार, एट टाइम्स वी स्टार्ट शेयरिंग एक्चुअली इतना ज्यादा,
1: आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, एंड वो एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होता जाता है कि जहाँ जहाँ बैठे लोगों के साथ अपना, जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड। तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ तो वो कितनी बार हो जाता है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की, मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन। वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
0: रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज, इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस विक्टिमाइज्ड, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते।
1: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर, अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
0: वही हो रही होती है,
1: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
0: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
1: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. Just treat the person as normal. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं. You know? तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
0: I think somewhere, you know, why बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं? Because we also like the sense of power that, you know, we are able to help somebody.
1: True.
0: Because we don't, we would like to help somebody,
1: right? But we're not really helping.
0: Yes,
1: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we are saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवाकर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत